शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 6 जून सन 2026 प्रातः के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम का समय रहेगा 7:10 से, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 135 का वाचन। 7:20 पर होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे सुबह 8:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा बाबा खड़क सिंह की पुण्यतिथि पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज का विषय होगा रानी दुर्गावती के गौड़ राज्य का इतिहास। 9:00 कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:00, जिसमें आप सुनेंगे श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा। 10:00 केंद्रित रहेगा डॉक्टर बशीर बद्र, आपकी यादों की रोशनी हमेशा हमारे साथ बनी रहे, इस शीर्षक के साथ प्रसारण समय 9:30 से। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम में सुबह 10:00। 10:30 का समय होगा कार्यक्रम याद करो कुर्बानी का। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय की जयंती पर। दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसागर, जिसमें हम आपको आज सुनवाएंगे अनुषा शर्मा का भक्ति गायन। 11:30 का समय होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का। तो श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: एक संत के पास बड़ा ही विचित्र तोता था। वो मनुष्यों की भाषा में बातें करता था। तोता सबके मन की बात जान लेता था। यही नहीं, वो सबके विषय में सही बातें भी बता देता था। धीरे धीरे तोते की प्रसिद्धि बढ़ती गई। संत के पास अनेकों आदमियों की भीड़ लगी रहती। सभी तोते से अपने भविष्य के संबंध में कई प्रश्न करती। धीरे धीरे तोते को घमंड होने लगा। वो सोचने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। घमंड का फल ये हुआ कि उसे सभी लोग अपने से नीचे दिखाई देने लगे। अब तो वो तोता दूसरों के गुण कम दोष अधिक देखने लगा। उसे सब में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। एक बार राजा ने संत को बुलावा भेजा। संत अपने साथ तोता भी ले गए। वहां पहुंचकर संत ने राजा को अपने तोते का परिचय भी करवाया, उसकी विशेषताएं बताई। सभी को ये जानकर अचंभा हुआ कि तोता सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है। राजा ने सबसे पहले अपने बारे में पूछा तो तोता बोला, राजन, आप अपनी रानी से लड़ते भिड़ते रहते हैं। राजा चुप हो गया। फिर उन्होंने अपने दरबारियों के विषय में पूछा। एक एक के बारे में तोते से बताने को कहा। तोते का तो स्वभाव ही बन गया था दूसरों में पहले बुराई देखने का। तो वो किसी को राजा की बुराई करने वाला बताता, किसी को प्रजा को सताने वाला और किसी को धन चुराने वाला। राजा ने तोते की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें गुस्सा आया कि उनके मंत्री अच्छे नहीं हैं। राजा अपने सेनापति के बारे में तोते से जानना चाहता था, पर रात अधिक होने के कारण दरबार खत्म होने का समय था। राजा ने संत से ये विनती की कि आज वे राजा के अतिथि बने। संत खुशी खुशी रुक गए। रात में जब संत सोने चले गए तो सभी मंत्रियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने कहा, चुपके से इस तोते को मरवा देना चाहिए। ये तो जब से आया है हमारी बुराइयां ही कर रहा है। ये हम सबको राज्य से निकलवा देगा। तब प्रधानमंत्री ने एक सेवक को संत के कमरे में भेजा। वो गहरी नींद में सोए थे। नौकर ने चुपके से जाकर तोते को मार दिया। जब संत सुबह उठे तो उन्होंने तोते को मरा हुआ पाया। ये देखकर वो दुखी हुए। फिर उनकी समझ में आ गया कि तोते में सबके दोष देखने की आदत थी। कल रात को ही उसने सबकी बुराई की थी। जो दूसरों की बुराई करता है उसे कोई नहीं पसंद करता, इसी वजह से उसे मरवा दिया गया। दूसरों की निंदा करने वाला सबसे घृणा और तिरस्कार ही पाता है।
3: जीवन सौरभ।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं वायु और इंद्रवायु, छंद है अत्यष्टि और अष्टि।
5: स्तीर्णम बरहिरूप नो याहि वीतये सहस्रेण नियुता नियुत्वते शतिनी भिर नियुत्वते तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवाय ये मिरे प्रते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन मदाय कृत्वे अस्थिरन। हे वायुदेव, आपके लिए ही हमारे द्वारा कुश का आसन बिछाया गया है। आप सहस्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। शक्ति रूपी सैकड़ों अश्वों से युक्त वायुदेव के लिए ऋत्विजों ने यह सोमरस तैयार किया है। अभिषुत मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आनंद के लिए प्रस्तुत है। तुभ्यायम सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसानः परि कोशमर्षति शुक्रा वसानो अर्षति। तवायम भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते वह वायो नियुतो याह्यस्मर युर्जुषाणो याह्यस्मयुः। हे वायुदेव, पत्थरों द्वारा कूट कर शोधित किया हुआ तथा वांछित तेजस्विता को धारण किया हुआ सोमरस कलश में स्थित है। आप शुद्ध एवं कांतिमान सोम के हिस्से को सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम देव रूप में आपका ही आवाहन किया जाता है। हे वायुदेव, आप स्वयं ही अश्वों को प्रेरित कर हमारे पास आने की इच्छा करें। आ नो नियुद्भिः शतिनी भिरध्वरम सहस्रिणी भिरूप याहि वीतये वायो हव्यानि वीतये तवायम भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्ये सचा अध्वर्युभिर् भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत। हे वायुदेव, आप हमारे यज्ञ में सैकड़ों और हजारों अश्वों सहित सोमरस पीने के लिए पधारें। आपके निमित्त ही ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है। यह सोमरस सूर्य रश्मियों के संपर्क से सूर्य देव की तरह ही तेजस्विता को धारण किए हुए है। हे वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा यह सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलश पात्रों में भरकर रखा गया है। आवाम रथो नियुत्वान वक्ष दवसे भी प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये पिबतम मध्वो अंधसः पूर्वपेयम् हि वाम हितम् वायवा चंद्रेण राधसा गतमिंद्रश्च राधसा गतम्। हे वायुदेव, आप और इंद्रदेव दोनों घोड़ों से खींचे जा रहे रथ द्वारा भली प्रकार निष्पादित सोमरस रूपी हविष्यान्न को ग्रहण करने तथा हमारे संरक्षण के लिए यहाँ पधारे। यहाँ आकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस का पान करें। हे वायुदेव, आप इंद्रदेव के साथ आनंद प्रद ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। आवाम धियो ववृत्युरध्वराम उपे ममिंदुम मर मृजंत वाजिन माशुमत्यम न वाजिनम तेषाम पिबत मस्मयु आनो गंत मिहोत्या। इंद्रवायु सुताना मद्रिभिर युवम मदाय वाजदायुवम। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञीय कर्मों के साथ रहे। जैसे गतिशील घोड़े को चालक स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार बलवर्धक इस सोमरस को आपके लिए हम तैयार करते हैं। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधारकर सोमरसों का पान करें। पत्थरों द्वारा कूटकर अभिशुत शक्ति प्रदायक सोमरसों को आप दोनों आनंद प्राप्ति के लिए पिए। इमे वाम सोमा अप्स्वा सुता इहाध्वरियुभिर् भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत एते वामभ्य सृक्षत तिरह पवित्र माशवः युवा यवोति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्यव्यया। हे इंद्रदेव और वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा अभिषुत यह सोमरस यज्ञों में आप दोनों को प्राप्त हो। हे वायुदेव, दीप्तिमान और प्रवाहित होने वाला यह सोमरस आपके लिए तिरछी धारा से पात्र में डाला जाता है। इस प्रकार का सोमरस आपको प्राप्त हो। अखंडित रोम तंतुओं से छनकर सोमरस अति संरक्षक गुणों से संपन्न हो जाता है। अति वायो ससतो याहि शश्वतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतम गृहमिंद्रश्च गच्छतम विसूनृता ददृशे रीयते घृतमा पूर्णया नियुता याथो अध्वरमिंद्रश्च याथो अध्वरम। हे वायुदेव, आप सोए हुए आलसी मनुष्यों को त्याग कर आगे चले जाते हैं। आप दोनों हमेशा वहीं जाते हैं जहां सोम को पत्थरों द्वारा कूटने की ध्वनि होती है, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है और घृताहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। इंद्रदेव और आप दोनों ही प्राण ऊर्जा देने के लिए बलशाली घोड़ों के साथ उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अत्राह तद्वहे थे मध्व आहुतिम यमश्वत्थ मुपतिष्ठन्त जायवोस्मे ते संतु जायवः साकं गावः सुवते पच्यते यवो नते वाय उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति धेनवः। हे इंद्रदेव और वायुदेव, जो सोम पुरुषार्थी लोगों द्वारा पर्वतों से औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है, उस सोमरस को आप दोनों यहीं ले आए। इस सोम औषधि को पुरुषार्थी लोग प्राप्त करने में सफल हों। आपके लिए गौएं अमृत रूपी दूध प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भी आपके लिए ही सोमरस में डालने के लिए पकाए जाते हैं। हे वायुदेव, आपके लिए दुधारू गौएं कभी कम न हो, ऐसे किसी के द्वारा गौओं का अपहरण भी न हो। इमे ये ते सुवायो बाहवो जसोंतर नदी ते पतयन्त्युक्षणो बहिर्व्राधन्त उक्षणः धन्वञ्चिद्ये अनाशवो जीराश्चिदगिरौकसः सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः। हे श्रेष्ठ वायुदेव, आपके ये बहुत शक्तिशाली युवा अश्व आपको द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में सहज ही ले जाते हैं, जो मरुस्थलों में भी उतनी ही तेज गति से भागते हैं। उन अति वेगशील अश्वों का वाणी द्वारा वर्णन करना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों द्वारा रोकना सर्वथा असंभव है।
6: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
0: रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम।

हे मन, यह संसार एक घने वन की भांति है। जिस प्रकार सघन वन में जहरीले सर्प कीटादि निवास करते हैं, उसी प्रकार संसार में अनेक दुख द्वंद हैं। संसार के सभी विषय विकारों के फंदे त्याग कर, प्रभु के चरणों का भजन कर,

श्रोताओं, हम रोजाना की परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम सब अपने अनुसार चाहते हैं, किंतु यदि हम भगवान पर सब परिस्थितियाँ छोड़ दें तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत की आजादी की लड़ाई में यदि मेरी पीठ में गोली लगती है तो मुझे सच्चा सिख मत समझना और सिख परंपरा के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार भी मत करना। महान गुरुओं का महान शिष्य, एक आदर्श संत सिपाही छाती पर गोलियां झेलता है, गर्व से चेहरा सामने रखता है, पीठ नहीं दिखाता। हम सिख किसी विदेशी को अपनी मातृभूमि पर शासन नहीं करने देंगे और कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये गर्जना थी महान स्वाधीनता सेनानी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पहले अध्यक्ष बाबा खड़क सिंह की, जो उन्होंने लाहौर की एक जनसभा में की। सन 1868 को ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट में खड़क सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर सरदार हरि सिंह एक अमीर ठेकेदार और उद्योगपति थे। खड़क सिंह की आरंभिक शिक्षा दीक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। यहां मिशन स्कूल में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर मुरे कॉलेज से इंटरमीडिएट। आगे की पढ़ाई के लिए वे लाहौर गए और पंजाब विश्वविद्यालय के पहले स्नातक समूह के छात्र के रूप में उन्होंने बीए पास किया। कानून में रुचि के चलते खड़क सिंह इलाहाबाद चले गए और यहां लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। किंतु पिता और बड़े भाई के एक के बाद एक हुए अवसान से वे दुखी हो गए तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सियालकोट लौट आए। यहां उन्होंने पारिवारिक संपत्ति और व्यवसाय की देखभाल शुरू कर दी। सन 1912 में सियालकोट में सिख शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। खड़क सिंह इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1915 में तरन तारण में सम्मेलन हुआ। खड़क सिंह इसके अध्यक्ष चुने गए। परंपरा के अनुसार उन्हें 6 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर सम्मेलन स्थल तक पहुंचना था, किंतु उन्होंने पैदल ही यात्रा करके जाना पसंद किया और अपनी सादगी का परिचय दिया। जुलाई सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। हजारों सिख ब्रिटिश सेना की ओर से इसमें भाग ले रहे थे। सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें अंग्रेज सेना की विजय के लिए कामना की जानी थी। अध्यक्ष के रूप में खड़क सिंह ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट संकेत दिया कि हमारी मातृभूमि पर शासन करने वाले विदेशियों की हम अवज्ञा करेंगे, हमें इनसे मुक्ति पाना ही चाहिए।

खड़क सिंह अब सार्वजनिक जीवन से जुड़ चुके थे। उन्होंने सीधे सीधे समाज और देश हित में सोचना तथा काम करना शुरू किया। अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खड़क सिंह इस घटना से दुखी होकर सीधे राजनीति में उतर गए। स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय लिया। सन 1920 में लाहौर में सेंट्रल सिख लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अली बंधु और महात्मा गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। खड़क सिंह ने इसके अध्यक्ष के रूप में गांधी जी का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सन 1921 में ही देश भर में फैले गुरुद्वारों की देखरेख और प्रबंधन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ और खड़क सिंह इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग भी है। स्वर्ण मंदिर में एक तोशाखाना यानी खजाना है, जिसमें कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। सन 1849 से इसकी चाबियां पंजाब सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रखी जाती थीं, जो इसके देखरेख की जिम्मेदारी संभालता था। जब खड़क सिंह प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो नियमानुसार राजकोष की चाबियां उन्हें हस्तांतरित होना चाहिए थीं, किंतु उसे ब्रिटिश उपायुक्त ने जब्त कर लिया था। इसके विरोध में खड़क सिंह ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक आंदोलन आरंभ हो गया जो कीज मोर्चा यानी चाबियों के मोर्चे के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। पंजाब सरकार ने खड़क सिंह को गिरफ्तार कर लिया, पर जन आंदोलन इसके बाद भी जारी रहा। नवंबर सन 1921 को शुरू हुआ आंदोलन 2-3 महीने जारी रहा। जन विरोध को देखते हुए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 17 जनवरी सन 1922 को अकाल तख्त पर खड़क सिंह को सार्वजनिक रूप से स्वर्ण मंदिर के राजकोष की चाबियां सौंप दीं। इसके साथ ही हजारों राजनैतिक बंदियों को रिहा भी किया गया। अखबारों ने लिखा कि गर्वित सत्ताधारी को बाबा खड़क सिंह की कठोर इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा हुई। महात्मा गांधी ने इस अनोखे चाबियों के मोर्चे की जीत पर बाबा खड़क सिंह को तार में बधाई संदेश भेजते हुए लिखा, भारत की आजादी के लिए पहली निर्णायक लड़ाई जीत ली गई। अंग्रेज अधिकारी अब उन पर नजर रखने लगे। 4 अप्रैल सन 1922 को बाबा खड़क सिंह को किरपाण बनाने का कारखाना चलाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। किरपाण सिखों का धार्मिक प्रतीक है। एक साल की जेल में उन्हें सरकार विरोधी भाषण का हवाला देकर 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई। उन्हें दूर डेरा गाजी खां की जेल में भेज दिया गया। यहां जेलर ने राजनीतिक कैदियों को गांधी टोपी और काली पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी थी। विरोध स्वरूप खड़क सिंह ने सारे कपड़े छोड़ दिए और केवल नाम मात्र के कच्छे में नंगे पीठ 4 जून सन 1927 को रिहा होने तक वो सजा भुगतते रहे।

0: जाएंगे।
1: जेल में रहते हुए ही उन्हें सन 1925 में फिर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। सन 1930 में फिर नए चुनाव में उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, पर इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के काम में जुट गए। सन 1928 में साइमन कमीशन के लाहौर दौरे पर बाबा खड़क सिंह ने विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। उन दिनों भविष्य में संवैधानिक प्रस्तावों पर पार्टी काम कर रही थी। बाबा खड़क सिंह ने इसके निर्धारण में सिखों के हितों और उनकी सहमति को सम्मान देने के लिए समुचित कार्रवाई की। सन 1931 में फिर से सरकार विरोधी भाषणों का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। वो 6 महीने बाद रिहा किए गए, परंतु सन 1932 में फिर से गिरफ्तार कर 19 महीने के लिए कारावास में भेज दिए गए। कम्युनिटी अवार्ड का भी वे लगातार विरोध कर रहे थे और अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक नीतियों पर तीखा प्रहार करते रहे। सन 1935 में बाबा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में वे फिर से सक्रिय हो गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन सारी प्रताड़नाओं और बार बार की जेल यात्रा से उनकी निष्ठा और समर्पण में कोई अंतर नहीं आया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद सेना के बहादुर वीरों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, तो बाबा खड़क सिंह इसके विरोध में आवाज उठाने वाले अग्रणी नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि बदलती राजनीतिक धारा, जिसमें कई नेता बहकर बदल गए, अपना आधार छोड़ गए, ऐसे झंझावातों में भी बाबा खड़क सिंह एक अडिग चरित्र थे। अपने सिद्धांतों पर अविचल वे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति दृढ़ता से समर्पित थे और इसीलिए भारत का बंटवारा उन्हें रास नहीं आया। जब देश का विभाजन हुआ तो बाबा खड़क सिंह दिल्ली में ही बस गए। एक निरपेक्ष संत की भांति उन्होंने कोई भी पद नहीं स्वीकारा। वे बहुत अमीर खानदान से थे, पर पूरे स्वाधीनता के संघर्ष में उन्होंने सारी सुख सुविधा त्याग कर तपस्वी का जीवन जिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 10 जुलाई सन 1949 को उन्होंने कहा था, ये वास्तविक गर्व का विषय है कि भारत विदेशी प्रभुत्व से मुक्त हो गया है। मैं अपनी मातृभूमि की स्थायी समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। 6 अक्टूबर सन 1963 को बाबा खड़क सिंह हमसे विदा हो अनंत में लीन हो गए। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 11वीं कड़ी में पहुंच गए हैं। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। हमने इसकी 10वीं कड़ी यानी पिछली कड़ी में सुना था, सन 1564 ईस्वी में चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला। इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच हुए नरई युद्ध के उपरांत की संधि हुई। गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्रशाह को घोषित किया गया। चंद्रशाह राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर। स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: 11वीं कड़ी में भी हमारे श्रोता राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ।
1: रानी दुर्गावती के वीरांगना होने के बाद गढ़ा राज्य का इतिहास तो जैसे बदल ही गया। जैसा आपने कहा, उनके उत्तराधिकारी उनके देवर राजा चंद्रशाह हुए और मुगलों के बीच तो संधि हो ही चुकी थी
0: जी।
1: गढ़ा राज्य को अपने 10 गढ़ जो हैं मुगलों को देने पड़े। हालांकि बाद में अकबर ने वो 10 गढ़ गोंडों को ही वापस लौटा दिए। पर यहाँ गढ़ा में यानी जबलपुर में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि गोंड राजा चंद्रशाह का कुछ छोटा सा राज्य काल है और उसके बाद उनके उपरांत मधुकर शाह हुए और प्रेम शाह हुए, ये सभी गढ़ा के राजा रहे। यहाँ उल्लेखनीय राजा जो हैं वो हैं गढ़ा राज्य के गोंड राजा हृदय शाह। शायद आपने उनका नाम सुना होगा। हृदय शाह 1635 में सिंहासन पर बैठे
0: जी।
1: ये समय था रानी को वीरांगना हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके थे,
0: जी।
1: तो 1635 में जब हृदय शाह गद्दी पर बैठे, उनके लिए चौरागढ़ से शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
0: अच्छा।
1: कुछ यहाँ वहाँ से आक्रमण हो रहे थे और नरई के युद्ध के बाद अस्थिरता तो फैल ही गई थी
0: जी।
1: तो हृदय शाह ने एक नया निर्णय लिया और उन्होंने चौरागढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी।
0: अच्छा।
1: ये 1651 की बात है
0: जी।
1: और उन्होंने जो अपनी नई राजधानी चुनी वो थी मंडला में ही, और आजकल उसे हम रामनगर के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा।
1: तो रामनगर मंडला शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है
0: जी।
1: और आजकल ये ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है और पर्यटन का भी एक बड़ा जाना पहचाना केंद्र है
0: जी।
1: हम ये तो नहीं कह सकते कि रामनगर सामरिक दृष्टि से बहुत उचित स्थान था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है
0: जी।
1: यहाँ नर्मदा नदी कलकल करके बहती है
0: जी, जी।
1: और दूसरी ओर से बंजर नदी का संगम होता है, तो ये दोनों नदियां मिलकर इस स्थान को दो ओर से घेर लेती हैं। हृदय शाह ने इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक खाई बनवा दी
0: जी।
1: तो अब ये हुआ क्या कि ये जो यू शेप ये जगह थी
0: जी,
1: ये अब चारों ओर से पानी से घिर गई और एक टापू के समान बन गई।
0: वाह।
1: तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, आप कभी जाएं तो यहाँ पर जाकर आपका
0: मतलब ये
1: दिल
0: जगह हम अभी भी देख सकते हैं। जो आप बता रही कि जो हृदय शाह ने बनवाई वो टापू अभी भी है वहाँ पर।
1: बिल्कुल, वो टापू है। हृदय शाह ने जो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं
0: जी।
1: हम साधारणतः जिस तरीके के किलों की कल्पना करते हैं ये वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि हृदय शाह जो थे वो एक जाने माने कवि भी थे, तो उनका कवि हृदय रहा होगा
0: जी।
1: और उन्होंने जब स्थान का चुनाव किया तो वो कुछ वैसा ही था जैसे कोई कवि चुनता है। उन्होंने जो उसमें इमारतें बनवाई वो भी बहुत सुंदर है।
0: ये भी सुनते, जैसे आपने कहा कि हृदय शाह को कवि हृदय कहा जाता है, वो कविताएं करते थे, और इसके साथ ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था।
1: बिल्कुल, हृदय शाह को तो संगीत का ज्ञाता कहा जाता है, बल्कि हृदय शाह की गणना 17वीं सदी के अच्छे संगीतकारों में होती है।
0: वाह।
1: वह न केवल अच्छे गायक थे, वो एक अच्छे वादक भी थे, और बल्कि उन्होंने संगीत पर 2 पुस्तकें भी लिखी। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म विवेचना की गई है और ग्रंथों का नाम है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश।
0: तो लीजिए कितनी अच्छी बात निकल करके यहाँ पर सामने आई है पूजा जी, हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। हम बात तो कर रहे हैं गोंड राजवंश की, लेकिन उन्हीं के एक राजा जिन्हें आमतौर पर हृदय शाह कहा जाता है, खासतौर पर उस क्षेत्र विशेष में, उनका नाम था हृदय शाह। और वो ना सिर्फ कविताएं करते थे, संगीत के भी गाता थे, और उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इन दो पुस्तकों को लिखा था शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित हैं। और हमारे श्रोता उन पुस्तकों को यदि हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पूजा जी, कुछ स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया हृदय शाह?

0: मंदिर में एक शिलालेख भी लगवाया। इसी शिलालेख से हमको गढ़ा का जो गोंड राजवंश है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी वंशावली क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उन्होंने क्या विशेष कार्य किए। यहाँ तक कि नरई के युद्ध का जो वर्णन है वो भी रामनगर के शिलालेख में किया गया है।
1: अरे वाह।
0: रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में स्थापित था और अभिलेख में ये भी जानकारी है कि इस मंदिर के जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और भागीरथ।
1: अच्छा,
0: उनको भी इस अभिलेख में पूरा क्रेडिट दिया गया।
1: बहुत ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि इमारतें याद रह जाती हैं लेकिन शिल्पकारों का नाम कोई नहीं जानता।
0: अभी सुरक्षा की दृष्टि से इस अभिलेख को राम मंदिर से स्थानांतरित करके पास ही स्थित मोती महल में रख दिया गया है।
1: अच्छा।
0: इसे पर्यटक आज भी देख सकते हैं। जो ये विष्णु मंदिर है पांच देवताओं को समर्पित है
1: जी।
0: और इसमें शिव, गणेश, दुर्गा और सूर्य की प्रतिमाएं विष्णु के साथ में स्थापित थीं।
1: जी।
0: अब ये प्रतिमाएं मंदिर में नहीं है लेकिन इसका स्थापत्य जो है वो देखने लायक है। जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर की स्थापना रानी सुंदरी देवी ने कराई थी, तो सुंदरी देवी कौन थी वो भी हमको जनश्रुतियों में और इतिहास में उसका भी वर्णन मिलता है
1: जी।
0: तो एक बार राजा हृदय शाह का दिल्ली जाना हुआ
1: जी।
0: और वो मुगल दरबार में रुके। वहां पर एक गायिका थी सुंदरी देवी।
1: अच्छा।
0: तो हृदय शाह भी गायक थे,
1: बिल्कुल,
0: हम सब
1: बिल्कुल।
0: जानते हैं, और दोनों का आपस में मिलना हुआ होगा
1: जी।
0: और कुछ ही समय में दोनों के बीच में अनुराग हो गया
1: जी।
0: जनश्रुति के अनुसार हमें पता चलता है कि एक दिन हृदय शाह उन सुंदरी देवी को लेकर मंडला आ गए।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने फिर यहाँ आकर उनसे विवाह किया और सुंदरी देवी ने गोंड राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए, उसमें से एक है विष्णु मंदिर की स्थापना कराना।
1: तो इस प्रेम विवाह का जो आधार बना वो संगीत बना।
0: बिल्कुल, आधार इसका संगीत था और स्थापत्य में भी आप उसकी सुंदरता देख सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ये पंचायतन शैली का मंदिर है, जैसे हम पहले भी वर्णन करते आ रहे थे कि गोंड काल में पंचायतन शैली का विकास हुआ और उसमें खासियत ये थी कि पांच गर्भगृह होते हैं
1: जी।
0: हमने उसको पचमठा नाम भी दिया
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल।
0: जिसमें कि एक मुख्य गर्भगृह और पांच देवकुलिकाएं होती हैं
1: जी।
0: तो चारों कोनों पर छोटे छोटे गर्भगृह होते हैं, इसको देवकुलिका बोलते हैं और एक गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। तो इस विष्णु मंदिर में भी एक मुख्य देवकुलिका है
1: जी।
0: और उसके चारों ओर छोटी छोटी चार देवकुलिकाएं हैं
1: जी।
0: तो ये चारों देवकुलिकाएं आयताकार जो कक्ष है
1: जी।
0: उसके चारों कोनों पर स्थित हैं
1: जी।
0: तो जब आप इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा लेंगे तो इन चारों देवकुलिकाओं में जो स्थापित देवता थे उनके दर्शन किए जा सकते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं अब नहीं है।
1: अब नहीं है जी, जी।
0: जो मंदिर की छत है
1: जी।
0: वो गुंबजाकार है और छत के चारों तरफ से छज्जे निकले हुए हैं। तो छज्जों के नीचे जो तोड़े होते हैं यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर है इस मंदिर के। मंदिर के दरवाजे हैं वो मेहराबदार हैं और इस मंदिर का जो संरक्षण करता है वो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग है।
1: अच्छा पूजा जी, आपने एक महल का भी जिक्र किया था इसी एपिसोड में विष्णु मंदिर के पहले, तो उस महल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: विष्णु मंदिर की तरह ही रामनगर में मोती महल भी देखने लायक है
1: जी।
0: ये जो महल है वो राज परिवार का निवास हुआ करता था।
1: अरे वाह।
0: इसलिए इसको राजा महल के नाम से भी जानते हैं। पर इसके लिए एक स्थानीय किंवदंती है और वो बड़ी मजेदार है
1: जी।
0: जैसा जानते हैं कि हृदय शाह एक बहुत अच्छे गायक कवि भी थे
1: जी।
0: लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें कहते हैं कि हृदय शाह ने तंत्र विद्या से इस मोती महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन के अंदर कर लिया था। जो निर्माण के लिए पत्थर आए थे वो पास ही एक काला पहाड़ है वहां से उड़ उड़ कर आए थे।
1: ऐसी
0: जनश्रुति है
1: जी, जी।
0: असल में क्या है कि रामनगर के निकट जो काला पहाड़ है वहाँ के अगर आप पत्थर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तराशे हुए पत्थर हैं। मान लीजिए कि अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल खंबे किसी ने तराशे हों।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल एक से, और उन्हें बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया हो।

0: जी
1: पूरा पहाड़ ही बन गया हो
0: जी।
1: ऐसा दिखाई देता है ये काला पहाड़। लोगों का मानना है कि यहाँ जो अष्टकोणीय खंभे दिख रहे हैं वही उड़ उड़ कर यहाँ से गए और जल्दी से हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण कर दिया। पर अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अष्टकोणीय खंभों का होना एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल, क्योंकि वो जो मंडला घाटी नर्मदा घाटी जो है वहां पर भूगर्भीय हलचलें पहले भी होती थी और अभी भी हमेशा अंदेशा जो है वो मंडराता रहता है।
1: हाँ, ये जो अष्टपहलू पत्थर हैं ये प्राकृतिक हैं, इन्हें तराशा नहीं गया है। जब भूगर्भीय हलचल होती है और ज्वालामुखी से लावा बहकर किसी स्थान पर जमा हो जाता है और जरूरत से ज्यादा जल्दी यानी कि कम समय में ठंडा हो जाता है, तब उस लावा में दरारें पड़ जाती हैं।
0: अच्छा।
1: और अष्ट फलकीय पत्थर में वो तब्दील हो जाती है।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से दरारें पड़ती हैं कि अष्ट फलकीय संरचनाएं बन जाती हैं,
0: अपने आप ही प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती
1: बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे एक ऑक्टोगोनल खंभे एक के बाद एक के बाद एकदम सटाकर लगा दिए गए हों। तो पूरा की पूरा काला पहाड़ ही ऐसा है।
0: अच्छा।
1: और क्योंकि इसी काले पहाड़ के पत्थरों का उपयोग मोती महल और अन्य इमारतों को बनाने में किया गया था तो ये जनश्रुति प्रचलित हो गई।
0: जी।
1: तो मोती महल भी देखने में बड़ा सुंदर है। इसमें प्रवेश के लिए एक बड़ा सुंदर मेहराबदार द्वार है और आप जब अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा चौकोर प्रांगण है और इस प्रांगण के बीच में एक बड़ी सी हौज है जिसके अंदर पानी भरा रहता होगा, उसमें रंगीन मछलियां छोड़ते होंगे जो भी उस समय होता हो। और इस प्रांगण के चारों तरफ कई सारे कक्ष बने हुए हैं जो राजा रानी के निवास के लिए थे, उसी में दीवाने आम था, दीवाने खास था।
0: जी, जी।
1: और ये महल कई मंजिला है।
0: अच्छा।
1: अगर आप इसकी छत पर जाएंगे तो चारों कोनों पर चार ऐसे कक्ष हैं जिनकी छत गुंबजाकार है और इस पर जो चूने से स्टको वर्क किया गया है, जो अलंकरण किया है, वो भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और कई बार तो लोग इसे खरबूजा गुंबज भी कह देते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि इसका आकार कुछ अलंकरण के कारण खरबूजे जैसा धारीदार दिखने लगता है तो खरबूजा अलंकरण के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पास ही अस्तबल है, हाथीशाला भी रही होगी।
0: अच्छा।
1: और खेल का कुछ मैदान भी रहा होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मोती महल की छत पर से मंडला को देखते हैं, जो नर्मदा नदी दिखाई देती है, बंजारा नदी दिखाई देती है और दूर दूर तक जो जंगल दिखाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते होंगे। जब हृदय शाह यहाँ गाते होंगे, जब महफिलें जमती होंगी तो ये देखने लायक दृश्य होता होगा।
0: निश्चित रूप से वहाँ स्वयं हृदय शाह भी गाते होंगे, उनकी पत्नी भी गाती होंगी और संगीत की बहुत सारी महफिलें, बहुत सारी सभाएं भी वहाँ पर आयोजित की गई होंगी।
1: जी हाँ, सुंदरी देवी तो खुद गाने की शौकीन थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये महल क्या आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, जा सकते हैं?
1: बिल्कुल, ये राज्य पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश का संरक्षित स्मारक है।
0: जी।
1: तो इन सभी में, चाहे मोती महल हो, चाहे विष्णु महल हो, और इसके पास ही एक राय भगत की कोठी भी है। आपने स्टेशन भी सुना होगा, भगत की कोठी
0: सुना है। बिल्कुल। तो मैम, इस कोठी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मोती महल था वहाँ पे राज परिवार रहा करता था, तो राय भगत की कोठी इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन रहते थे?
1: राय भगत हृदय शाह के समय उनके खास मंत्री थे।
0: अच्छा।
1: और उन्हीं के एक विशाल महल है जिसको राय भगत की कोठी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: मोती महल से लगभग आधा किलोमीटर आप जाएं अगर पूर्व की तरफ तो एक रामनगर धंधरी सड़क पड़ती है और उसी पर एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, वहां पर ये महल है। और ये राय भगत का महल भी कहलाता है, राय भगत की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। राय भगत को भगत राय भी कहा जाता है।
0: जी जी।
1: और जब भी हृदय शाह के प्रिय मित्रों की बात आती है तो भगत राय की बात जरूर आती है। कई किस्से भी इन दोनों के आपस में बड़े लोग सुनाया करते हैं।
0: जी।
1: और ये जो राय भगत थे ये पठारी या प्रधान जाति के थे, इसलिए इनके किस्से बड़े प्रधानों में मशहूर हैं दोनों की दोस्ती के।
0: जी जी।
1: तो हृदय शाह के लिए ये राय भगत की कोठी बनाई गई।
0: जी।
1: ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बनी है और इसका भी जो प्रवेश द्वार है बड़ा ही भव्य है
0: जी।
1: बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोती महल से भी ज्यादा भव्य है।
0: अरे वाह।
1: और इसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर संगमरमर का उपयोग किया गया है जो इस काल में बहुत कम होता था, खासकर मध्य भारत में। और प्रवेश द्वार के ऊपर नौबत खाना बना है। नौबत खाना जहाँ पर जब राजा का आगमन होता है तब नगाड़े बजाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: फूलों की वर्षा होती थी
0: जी।
1: तो प्रवेश द्वार के दोनों ओर तीन तीन खिड़कियां भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी विशाल खिड़कियां हैं। और दीवार के ऊपर कंगूरे बने हुए हैं। तो ऐसा कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये महल है कि किला है। तो दोनों के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं दोनों को मिक्स किया है। और महल के जो कोने हैं वहां पर खासकर निकले हुए कक्ष भी बने हुए हैं जो बड़े आकर्षित लगते हैं अलंकरण के कारण। और इनकी छतें भी वैसी हैं जैसी मोती महल की गुंबजाकार छतें हैं, धारीदार छतें हैं, खरबूजे जैसी। इनके भी गुंबज वैसे ही हैं। और जो राय भगत की कोठी की खास बात है वो यहाँ के भित्ति चित्र है।
0: अच्छा।
1: मतलब कि छत पर दीवारों पर बहुत सारा चित्रण किया गया है। खासकर जब हम प्रवेश करते हैं महल के अंदर तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी जो छत है उस पर आज भी बड़ा सुंदर अलंकरण उस काल का देखा जा सकता है। इसमें लाल, हरा, नीला, पीला कई रंग यूज किए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि उस समय रंगों के लिए खनिज पत्थरों का उपयोग किया जाता था। खासकर ये पत्थर जो हैं वो भारत में नहीं मिलते, ये मध्य एशिया से बुलाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: और इन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था। जहाँ कहीं भी इस तरीके की चित्रकारी करनी होती थी तो वहां पर फिर बहुत चिकना चूने का प्लास्टर तैयार किया जाता था, एकदम सफेद, खूबसूरत, चिकना। और उसके बाद अलंकरण जैसा भी तैयार किया गया हो तो फिर इन खनिजों को तैयार करके इनका पाउडर बनाकर इसमें जो प्राकृतिक गोंद होती है उसको मिक्स किया करते थे, उससे मिक्स करके उसको बना दिया करते थे, रंग पक्के हो जाया करते थे। और फिर इनको छतों पर लगाया जाता था, सुंदर ज्यामिति अलंकरण या फूल पत्तियों का अलंकरण इसमें किया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि छत पर उल्टा ब्रश चलाना बड़ा मुश्किल है
0: जी।
1: लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रंगों का संयोजन है, जो चित्रकारी है, वो देखते ही बनती है।
0: श्रोताओं को तो हमारे लग ही रहा होगा कि बिल्कुल अब वो भागकर बिल्कुल रामनगर जाएं, मंडला जाएं। और पूजा जी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी हैं। ना सिर्फ ये इतिहास से संबंधित हैं, ना सिर्फ ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं, आज का तो हमारा एपिसोड बिल्कुल पर्यटन और संगीत के लिए भी बहुत विशेष रूप से खास रहा है। पूजा जी, इतने सारे जो आज आपने हमें चीजें बताई कि राजा हृदय शाह ने मंडला में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की, दूसरी जगह लेकर के आए जिसे आज हम रामनगर के नाम से जानते हैं, वहां पर विष्णु मंदिर, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का आपने जिक्र किया। लेकिन राजा हृदय शाह के बाद गढ़ा मंडला का क्या हुआ?
1: हृदय शाह का शासनकाल 1671 ईस्वी तक रहा।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया जिसमें छत्रशाह हुए, केसरी शाह, हरि सिंह, पडार सिंह, और इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने भी अपने लिए मंडला में ही एक नई राजधानी बनाई।
0: अच्छा।
1: अब उसके अवशेष ना के बराबर हैं, केवल एक बुर्ज रह गया है
0: जी।
1: पर नरेंद्र शाह के बाद भी बहुत से राजा हुए और फिर 1780 ईस्वी में गढ़ा का यह क्षेत्र सागर के जो मराठा शासक थे उनके अधीन हो गया। यहाँ से फिर गढ़ा मंडला का इतिहास बदल गया।
0: मतलब 1780 तक गढ़ा मंडला पर गोंड राजवंश का शासन रहा।
1: जी हाँ, संग्राम शाह से लेकर और हम देखते हैं कि सुमेर शाह तक गढ़ा मंडला पर लंबे समय तक गोंड राजवंश ने अपना योगदान दिया।
0: वाह। तो श्रोताओं, आज बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां मिली हैं राजवंश की। हम पिछले अपने इतने सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं, हमने कहानी देखी संग्राम शाह जी की, हमने बात की रानी दुर्गावती की जो कि गढ़ा राजवंश की सबसे मुख्य शासिका के रूप में भी जानी गई, बहुत सारे कार्य उनके हुए और मुगल दरबार तक उन्होंने हिला दिया था। उसके बाद हमने बात की हृदय शाह की और फिर उनके कुछ और उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया गढ़ा मंडला पर, जाकर के गोंड राजवंश का शासन समाप्त हुआ। पूजा जी ने हमें ये जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इतनी अमूल्य जानकारियों के लिए। आगे भी अपने अगले एपिसोड में आपसे कुछ और जानकारियां आपसे चाहेंगे, इतिहास के पन्ने हम खोलते रहेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे इजाजत लेता हूँ। इस एपिसोड का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से इतिहास

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, मनुष्य जीवन के माया जाल में फंसा हुआ है। वो निरंतर दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ संजो लेने के लिए, किंतु इस अनवरत दौड़ का अंत है कहाँ? इच्छाओं के इस अथाह सागर का किनारा कहाँ है? योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में आज हम सुनेंगे श्री राम के हृदय से निकली वो करुण पुकार, जिसमें वो तृष्णा के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। राज वैभव के मध्य रहते हुए भी युवराज श्री राम ने देखा कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी शांत होती है तो तीसरी मन के द्वार पर आ खड़ी होती है। तृष्णा मनुष्य को आशा और निराशा के झूलों में झुलाती रहती है। कभी वो स्वप्न दिखाती है तो कभी भय उत्पन्न करती है, कभी सुख का प्रलोभन देती है और कभी दुख के अंधकार में ढकेल देती है। वो मृग तृष्णा के समान है, दूर से जल का आभास देती है लेकिन निकट जाने पर केवल शुष्क मरुभूमि ही हाथ लगती है। भगवान श्री राम हमें बताते हैं कि जिस हृदय में तृष्णा का साम्राज्य है वहां शांति का निवास नहीं हो सकता है, और जहां संतोष का दीपक जल उठता है वहां संसार के समस्त वैभव भी फीके पड़ जाते हैं। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य चिंतन में और सुने श्री राम के वैराग्य की वो वाणी जो आज भी मनुष्य को भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने की प्रेरणा देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार।
0: आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा पर।
1: जी,
0: तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में तृष्णा का प्रभाव क्या होता है?
1: देखिए, तृष्णा का प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जो हृदय है ना, वो चंचल हो जाता है। जबकि आप देखें, हम लोग कहते हैं मन चंचल है
0: जी,
1: यहाँ पर बात यह है कि तृष्णा आपके हृदय को भी चंचल करती है, यानी आपके भाव दशा पर सीधे अपना प्रभाव छोड़ती है। इसी को भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहा है कि तृष्णा न जीर्णा व मैं जीर्णा, कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। अब ऐसे में तृष्णा कभी शांत नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य है, जो चिंता हमारे जीवन में आती है वो तृष्णा की वजह से आती है। तो तृष्णा का जीवन पर जो प्रभाव देखने को मिलता है उसके लिए बहुत सुंदर उपमा इसमें दिया गया है। योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उपमा के माध्यम से उन तत्वों पर प्रकाश डाला गया है जिससे आम जीवन में जीने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान हो सके कि वास्तव में योग क्या है। वैराग्य को लोग समझते हैं कि विषयों का त्याग है वैराग्य, विरक्ति है, या संसार से भागना वैराग्य है, उसको पलायन कई बार मैंने कहते हैं, जिसका संसार बहुत अच्छा नहीं रहा या जो संसार में फेलियर देखा, असफलता देखा तो उसने वो वैरागी हो गए, या वैरागी होने से माता पिता डरते हैं। वैराग्य आप समस्त सांसारिक कर्मों में पूरी कुशलता से रत होने के बाद भी वैरागी हो सकते हैं, क्योंकि वैराग्य सत्य का उद्घाटन है, सत्य का दर्शन है वैराग्य। शेक्सपियर ने ही शायद ये बात कही थी कि ये रंगशाला है जहां सारे लोग अपने पात्र भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए, तो उस पात्र से वैराग्य भी है और राग भी है। राग जब तक तभी तक है जब तक आप प्ले कर रहे हैं, जब तक उस पात्र का अभिनय कर रहे हैं तब तक उस पात्र को अपने जीवन में ऐसे उतारते हैं जैसे आपका जीवन ही वो हो। लेकिन जैसे ही वो पात्र पूरा होता है, वो पात्र आप भूल जाते हैं और फिर किसी और पात्र के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये बात एक वैरागी की ही बात की जा रही है। तो अभिनय जैसे है, ये जीवन भी अभिनय है, लेकिन अब कहा जाए तो अभिनय की तरह इसे कोई देखेगा नहीं, हर आदमी इसमें फंसा हुआ है। तो संसार में फंसा हुआ जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका चित्त तृष्णा से मुक्त न हो, जब तक उसका चित्त वैरागी न हो। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जैसे समुद्र के भीतर जो भंवर उठता है या जो लहरें उठती हैं वो भंवर और हलचल उत्पन्न करने के लिए उठती हैं, समुद्र की शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होती हैं। यद्यपि बाहरी प्रभाव है वो चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो तृष्णा है वो उसकी शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होता है लहरों की भांति। और जो आपने पूछा इसका क्या प्रभाव है, कहते हैं हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम और आकुलता पैदा करती है। अंतःकरण को कभी वो भ्रम से मुक्त नहीं करती, बेचैन करती है, और हम सोचते हैं कि हम शायद तृष्णा की वजह से शांत हो जाएंगे। वो शांति को हरने वाली है। तो तृष्णा का जीवन में कह सकते हैं प्रभाव यही है कि वो आपको अशांत कर देगी,
0: अशांत कर देगी, बिल्कुल। अच्छा, इसी ग्रंथ में पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा हुई है
1: जी,
0: तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के लिए आप बताएं कि पारमार्थिक स्वरूप से आशय क्या है व्यक्ति के पारमार्थिक स्वरूप से, और दूसरा ये कि व्यक्ति अपने पारमार्थिक स्वरूप को पाने में क्यों असमर्थ है।
1: क्या बात है। देखिए, ये जो ग्रंथ है ना, ये अद्वैत का ग्रंथ है, इसको अद्वैत ज्ञान कहा गया। अद्वैत ज्ञान का मतलब हुआ कि जहां फिर किसी दूसरे का ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे में जो आपने पूछा, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब एक सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापरः, कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, तो यहाँ पर मिथ्या को लोग झूठ समझ लेते हैं, झूठ नहीं है, झूठ जैसा जो लगे। तो उन्होंने तीन तरह के सत्ताओं की बात की
0: जी।
1: वेदांत में तीन तरह की सत्ता मानी जाती है। एक प्रातिभासिक सत्ता, जिसमें रज्जु और सर्प का उदाहरण लिया जाता है कि रस्सी अंधेरे में सांप जैसी दिखती है, होती नहीं,
0: होता नहीं,
1: होता नहीं है। तो ये हो गया एक प्रातिभासिक सत्ता, आभास हो रहा है, रस्सी में सर्प का आभास होना, ये तभी तक होगा जब तक आपको रस्सी का ज्ञान ना हो जाए। रस्सी का ज्ञान होते ही आप सर्प के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो वैसे ही संसार में जो विषयों के प्रति जो कामना है, इसका सत्य जब आपके सामने उद्घाटित होगा तो विषयों में जो आप वास करना चाहते हैं तो वो वास नहीं होगा, उसी को वास का न होना और वास का होना वासना कहलाता है।
0: अच्छा।
1: और जब विषयों में वास न हो तो उसको आप वैराग्य कह लें, तो वो स्थिति बनती है। तो ये हो गया आभासिक, जहां आभासिक ज्ञान हो रहा है। उसके बाद कहते हैं एक व्यवहारिक जगत है, कि व्यवहारिक जगत में दो के बीच व्यवहार होता है, जबकि दोनों एक ही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जब दो के बीच व्यवहार होगा तो इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जब उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं गोपियों के पास कि जहां जाइए इनको आप ब्रह्म ज्ञान दे के आइए, तो चूंकि ये प्रेम की भी कथा है तो ऐसे में देखें तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ब्रह्म ज्ञान आदमी को शुष्क बना देगा, ऐसा नहीं है। अब उद्धव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शुष्क हो गए थे, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए गोपियों के पास भेजा, और उन्होंने कहा किसके प्रेम में आप लोग इस तरह से विह्वल हैं, वो ब्रह्म आप ही में तो है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म ही वना पर, तो फिर गोपियों ने जो ज्ञान दिया कहा कि ब्रह्म और हम में कोई भेद नहीं है, तो आपके हमें इस ज्ञान की जरूरत क्या है, ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश कर रहे हो आप, हम तो अपने ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, हमारा कृष्ण जो है हमारा ही स्वरूप है, हमें किसी और के रूप में कोई आकर्षण नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में मस्त हैं। तो उद्धव ने कहा कि यह है व्यवहारिक सत्य, जहां पर रोना भी हो रहा है हंसना भी हो रहा है, कहते हम तो उस कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं, हमारे व्यवहार में वो है। तो व्यवहारिक सत्य हो गया। और पारमार्थिक सत्य में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उसमें समानार्थी बनाते हैं आप।
0: अच्छा।
1: और इसका प्रसंग मैं आपसे लूंगा, जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप मुझे किस रूप में जानते हैं, तो उन्होंने जब पारमार्थिक सत्य को उद्घाटित कहा, हनुमान जी ने कहा कि पारमार्थिक सत्ता में तो जो आप हैं वो मैं हूं, व्यवहारिक रूप में मैं आपका दास हूं, है ना। तो ये हुआ कि व्यवहार में आपको स्वामी और दास बनना पड़ेगा, माता और पुत्र बनना पड़ेगा, माता पिता बनना पड़ेगा, ये व्यवहार होगा इससे, लेकिन पारमार्थिक में तो एक ही सत्ता है, जिसके आप पिता हैं, जो पुत्र है वो भी वही है,
0: वही है। तो ये पारमार्थिक स्वरूप है व्यक्ति का,
1: व्यक्ति का। लेकिन आदमी इसको नहीं जान पाता, तो कहते हैं कि इसका कारण तृष्णा ही है। वाल्मीकि जी सुना रहे हैं भरद्वाज को, कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होने के लिए बहुत तरह का प्रयास करता है, लेकिन जैसे आधी सले गड़े तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकनी तृष्णा ने न जाने कहां से कहां किस अयोग्य अवस्था में हमें पहुंचा दिया। ये राम जी देख रहे हैं, तो राम जी की दृष्टि है, और जिसकी भी दृष्टि ऐसी हो जाए वो समझिए वो राम जी की दृष्टि में जा रहा है। राम उससे दूर नहीं है, राम से वो दूर नहीं है।
0: बहुत ही सुंदर। अच्छा, तृष्णा का जो स्वभाव है और इसका जो स्वरूप है, इसको किस तरह से व्याख्यायित करेंगे आप?
1: तृष्णा का स्वभाव ये है कि यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नर्क में गमनागमन कराती है। अब देखिए आदमी यहाँ क्या करता है, हम लोग जो सामाजिक अनुशासन की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना, ये करणीय है, ये निषिद्ध है, अकरणीय है, ये धर्म है, ये अधर्म है, इसको करने से नरक होगा, इसको करने से स्वर्ग होगा। तो ये व्यवहारिक जो जगत है वो इसी तृष्णा से गवर्न है, अनुशासित है।
0: जी, जी, जी।
1: कि ये कहते हैं कि तृष्णा जो है धर्म अधर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में गमनागमन कराती है, आगमन कराती है। तो अगर आप स्वर्ग के आकांक्षी हैं तो भी आप तृष्णा में हैं, और अगर आप नरक से भयभीत हैं तो भी आप तृष्णा में हैं। तो तृष्णा को जैसे ही आप जानेंगे, आप देखेंगे कि आपका चित्त स्वर्ग और नरक इन दोनों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य निर्वाण सत्कम में कहते हैं कि जब बंधन नहीं तो मोक्ष कहां। यानी मोक्ष और बंधन इन दोनों के चिंतन से जो मुक्ति दिलाए वो तृष्णा का सत्य उद्घाटन है, तृष्णा के सत्य का उद्घाटन है, कि जहां पर मोक्ष की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। ये है तृष्णा का स्वभाव कि आपको इस तरीके से फंसाएगी। जड़ और चेतन की ग्रंथि से जुड़ी रहती है हमेशा ही, जड़ पदार्थों से संबंध रखती है और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। इसका स्वभाव है कि हमेशा जड़ से ही जोड़ेगी आपको। स्वर्ग भी देखिए, आप कभी विचार करिए विभिन्न मान्यताओं में स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग में आपने उन्हीं श्रेष्ठतम भोगों को स्थापित कर रखा है जिन भोगों के साथ आप यहां होना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वहां भी जड़ पदार्थों की स्थापना हुई है। और नर्क में भी क्या आपने स्थापित कर रखा है, उन कष्टों का अपार विस्तार कर रखा है आपने, जिन कष्टों से आप अपने आप को यहां बचाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कह दिया ये नर्क है। और उसी आधार पर आप जीवन के व्यवहार को अनुशासित करते हैं। तो तृष्णा हमेशा जड़ पदार्थों से संबंध रखती है। राम जी कह रहे, राम जी का चिंतन तो देखिए कि उस उम्र में 12 साल की अवस्था में, क्योंकि ये ब्रह्म का वैराग्य है, कोई सामान्य नहीं है। तो इसलिए ये देखें तो ये ग्रंथ बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है, और इस पर तो बहुत कह सकते हैं गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। तो तृष्णा का ये स्वभाव है कि जड़ के साथ संबंध रखेगी और सदा आपको विक्षुब्ध रखेगी, कभी शांति नहीं देगी।
0: अच्छा शशिकांत जी, ये जो ग्रंथ है ये क्या बताता है कि प्राणियों के नाश का क्या कारण है?
1: प्राणियों के नाश का कारण क्या है? उन्होंने साफ साफ कहा, राम जी ने कहा कि जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि तृष्णा काली नागिन के समान है, जो सहस्त्र कुटिलताओं से भरी है, जिसमें विषय सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं वो, कि विषय का सुख जहां भी आपने कल्पित किया, ये समझने की वो तृष्णा है और वो आपका नाश कराएगी। कहते हैं विषमता रूपी विष को ही ये उगलती है, मतलब इसमें कभी भी आप समत्व तो नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, योग को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध है सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। उन्होंने कहा कि समत्व योग है अर्जुन। और आप कभी विचार करके देखिए तो बुद्धि क्या आपको समत्व में रहने देगी? बुद्धि हमेशा विषम भाव को खड़ा करती है, विषमता खड़ा करेगी। तो ये जो तृष्णा है ये विषमता रूपी विष ही उगलती है, और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेगी। जैसे आप विषमता रूपी विष के संपर्क में आए, आप कहीं ना कहीं जो करणीय है, जो धर्म है, उसके शिकार हो जाएंगे या अधर्म के शिकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये डसेगी विष का ही आपको। तो इस तरीके से ये प्राणियों का नाश ही करेगी, चाहे वो, आप इसे गंभीरता से अगर देखा जाए तो चाहे वो करणीय कर्म भी अगर आपकी वासना बन जाती है, आप किसी जड़ पदार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो आपका नाश करेगा, क्योंकि जड़ पदार्थ से आप चैतन्य से तो दूर होंगे ही ना।
0: जी। तो हम यही समझें कि जो तृष्णा है उससे दुख ही दुख है।
1: तृष्णा से दुख ही दुख है। मैंने पहले भी कहा था,
0: यही उसका फल कहा जाएगा।
1: वैराग्य जब हुआ भर्तृहरि जी को, तो उन्होंने यही तो कहा कि ये तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। है ना?
0: जी।
1: तृष्णा जीर्ण नहीं हुई।
0: हाँ। अच्छा, तो मोह से आच्छादित जो चित्त है
1: जी,
0: उसको किस तरह से शांत किया जाए?
1: जी, आपने सुंदर सवाल किया कि मोह से आच्छादित चित्त को कैसे शांत किया जाए। कहते हैं इस संसार रूपी जो ये विस्तार दिख रहा है ना, इसको इन्होंने विशाल वन कहा, और इसमें तृष्णा रूपी विष की बेल फैली हुई है। ये संसार में जो व्यवहार है वो तृष्णा से मुक्त व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवहारिक जगत में आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि आपका व्यवहार कहीं तृष्णा रूपी काली नागन के द्वारा प्रेरित तो नहीं है, जहां पर आप विषय वासनाओं के विष का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मोह से आच्छादित चित्त होगा, क्योंकि ये तृष्णा आपके अधोपतन और उपद्रव रूपी फल को ही उत्पन्न करेगी, तृष्णा से कभी आप ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे, अधोगामी बनाएगी
0: जी जी।
1: और आपके जीवन में उपद्रव उत्पन्न होगा
0: जी।
1: तो इसका एक उपाय है कि आप इस संसार के मोह से अपने को मुक्त रखें। संसार के मोह से मुक्त रहने के लिए पहले शरीर के मोह से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर पंचभूतों से निर्मित है तो पंचभूतों की तरफ यह आकर्षित भी होगा। लेकिन आप अगर वैराग्य का दीप जल रहा है आपके अंदर, विवेक है आपके पास, तो आप ये जाने कि यह तृष्णा का प्रभाव है जो हमें अधोपतन या हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न करेगी और हमारा अधोपतन और चित्त को उपद्रव में ही ले जाएगी, चित्त को कभी शांत नहीं करेगी। तब जाके आप इस पर विजय पा सकते हैं या इसको समझ सकते हैं।
0: अच्छा, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि तृष्णा कैसे आती और जाती है, क्या कारण है इसका?
1: अब इसको कहा है इन्होंने कि ये तृष्णा कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, देख कितनी बड़ी बात है कि कुहरे के समान है जहां आपको दिखेगा नहीं और मोह के आवरण से ढकी है। इसी को हम लोग कहते हैं माया। माया जब कहते हैं, माया का दो काम है, वो आवरण और विक्षेप उत्पन्न करना। विक्षेप का मतलब साफ साफ न देख पाना, सच न देख पाना, और आवरण का मतलब ढक लेना। तो ऐसे में तृष्णा मोह उत्पन्न करती है और ये जो है विवेक का प्रकाश आपके न मिलने पाए, ऐसा इसका होगा कि विवेक के प्रकाश से आप वंचित होकर के इसके अंधकार में, जैसे कोहरे के अंधकार में आप सत्य को नहीं देख पाते, ऐसे ही आप कोहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है और विवेक का प्रकाश छा जाने पर ही शांत होती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। ये तृष्णा इतनी इतनी प्रबल है कि जो साध्य नहीं है उसको भी ये आपका साधन बना देगी और उसमें चित्त को उलझा देगी और आप जीवन भर दुख के सिवाय, जैसे कहते हैं ना कि सुख को हम साध्य मानते हैं कि हमारे जीवन का साध्य सुख है,
0: जी जी,
1: तो ऐसे में तृष्णा के कुहरे के नाते हम सुख के स्वरूप, जो हमारा स्वरूप ही है, अविनाशी जो स्वरूप है, वो सुख का सुख राशि है, जो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सुंदर और सत्य है वो शिव है, लेकिन वो शिव एक तृष्णा के नाते आच्छादित है वो आपका, और आप मोह के शरीर के मोह में फंसकर संसार के विषय वासनाओं में ही शिव को खोजते रहते हैं। और आप विचार करके देखिए कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की शरण में भी अगर जाते हैं तो संसार ही लेके जाते हैं, भगवान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यानी वही भगवान हमें प्रिय है जो हमारे सांसारिक जड़ कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हो। तो अंततः हम तृष्णा के ही तो शिकार हुए ना, क्योंकि तृष्णा हमेशा जड़ के साथ आपको जोड़ेगी।
0: कौन मीरा की तरह जाता है, सभी कामना लेकर जाते हैं,
1: सब जाते हैं कामना लेकर के, और कामना हमेशा संसार की ही होगी, शरीर को तो संसार की ही कामना होगी, क्योंकि ये भी जड़ है। चेतना के बिना शरीर क्या है, जड़ है, और तृष्णा कभी चेतना के प्रति आपको चैतन्य होने नहीं देगी, हमेशा जड़ के साथ आपका संबंध जोड़ेगी। तो ऐसे में हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जब हम अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं तो उस समय हमारा साध्य संसार है कि आराध्य है, तो तृष्णा क्या कर रही है, असाध्य को साधने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, जो संसार कभी सदा किसी का नहीं।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: संसार आज तक का आप इतिहास उठा करके देखें, चूंकि ये दृष्टि राम जी की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को विवेक की दृष्टि है, विवेक से उत्पन्न वैराग्य है। देखिए, एक बात मैं अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कई बार हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन की असफलता से प्रभावित होकर के लोग वैराग्य की तरफ बढ़ पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, अक्सर देखने में यही आता
1: देखने में यही आता है कि उनको संसार दुखद दिखा या उनके आसपास के लोगों को संसार में उन्होंने दुखद देखा, तो ऐसे में उन्होंने संसार से पलायन कर लिया, जबकि वैराग्य बिल्कुल ये नहीं है। वैराग्य एक सत्य उद्घाटित होने के बाद
0: हाँ।
1: संसार में किया जाने वाला व्यवहार है जिसके लिए राम जी को उपदेश हो रहा है कि तुम जीवन मुक्त की तरह व्यवहार करो। राम जी भी व्यवहार से भाग रहे हैं,
0: जी जी जी,
1: सांसारिक व्यवहार से राम जी हट रहे हैं और
0: हाँ।
1: हट गए हैं, तभी ये गुरु उपदेश कर रहे हैं उनको,
0: हाँ।
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: और वो अपने चित्त की बात कर रहे हैं, उस वैराग्य को प्रकट कर रहे हैं और गुरु उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप इस संसार में जब तक हैं, जब तक ये शरीर है तब तक आप कर्म के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अब कर्म आप ऐसा करने लगो जिसमें न समाज की भलाई हो न बताने योग्य हो, तो ऐसा कर्म तो आपने उसी दिन अपने आप को मार दिया। एक ऐसा आदमी जिसका कर्म संसार में प्रकाशित होने योग्य न हो, आप क्या समझते हैं वो आदमी जिंदा कब था? किसी ने कहा भी था कि हम मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए देर से जाते हैं।
0: जी,
1: तो ऐसा अगर हमने कोई कर्म नहीं किया जिस कर्म को प्रकाशित न किया जा सके, बताया न जा सके, तो निश्चित ही हमारे जीवन पर सवाल उठना चाहिए कि वास्तव में हमने, प्रकृति ने तो हमें वो सब कुछ दिया जो सबको देती है, तभी तो हम जिंदा रहे, लेकिन हमने क्या दिया?
0: बिल्कुल,
1: हमने तो जीवन के विपरीत व्यवहार किया ना।
0: जी जी,
1: तो इसीलिए विष्णु पालन हार हैं और इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो,
0: जीने दो,
1: बिल्कुल। यही राम जी को सिखाया जा रहा है।
0: हाँ।
1: ये तो लोग नहीं समझते, इसलिए समझते हैं कि ये तो अलग बात है, ये अलग बात है, अन्यथा देखें कहते हैं कि राम पहले जो वैराग्य आपका हुआ है उससे आप तो जीना सीखो, क्योंकि आप तो जीने से भागने लगे
0: अच्छा,
1: हो ना।
0: ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब भी संसार की निस्सारता का ज्ञान भीतर उतरता है तो इंसान फिर कर्म से छूटता है, है ना, और उनको फिर से इस ज्ञान के साथ कर्म में रत करने के लिए सारा उपदेश, और यही हमें भी सीखना है।
1: मैं आपसे सुनीता जी कहूं, मनोविज्ञान आज जो तमाम मानसिक बीमारियों का अध्ययन कर रहा है, वो मानसिक बीमारियां व्यक्ति के कर्म न करने से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है करना वो कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है उसे चाहता नहीं है। फिर वो अंदर के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में इतना उलझ गया है कि वो अपने चित्त के साथ शांत नहीं रह पाता, अपने आप को जवाब नहीं दे पाता। कहते ना कि आप अपनी नजर में गिरने लगते हैं, फिर आपको संभाले कौन? तो ऐसे में फिर वैराग्य की आवश्यकता है, और वो वैराग्य जो असफलता से नहीं, विवेक से उत्पन्न हो, सत्य के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वैराग्य।
0: ज्ञान है, बिल्कुल,
1: वैराग्य ज्ञान है।
0: जी, अब चूंकि समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि दो सवालों का जवाब आप दे दें कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक दुख क्यों होता है, और तृष्णा की हमने बात की है तो तृष्णा के निवारण का क्या मंत्र है?
1: व्यक्ति को दीर्घ काल तक दुख क्यों होता है? क्या आपने सुंदर प्रश्न किया कि व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है, संसार में जितने दोष हैं उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है, राम जी ने कहा।
0: जी,
1: अब
0: जी,
1: सवाल आप देखिए कि संसार में जब आप देखेंगे कि जब अभी हमने बात की कि तृष्णा हमेशा जड़ चीजों से आपको जोड़ती है, तो स्वर्ग की कामना, क्या ये भी तो तृष्णा का ही हिस्सा है? तो अंत में हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना लेके बैठा है। तो राम जी की दृष्टि में तृष्णा ऐसी है, लेकिन हमारी तृष्णा तो स्वर्ग तक हमें ले जाती है। आप देखिए, हमारे लिए ये बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शास्त्र बहुत दुर्लभ और अद्वैत ज्ञान की बात करता है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए, जो आपके प्रश्नों से के साथ हम बढ़ भी रहे हैं और हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में भी आ रही होगी कि ये तृष्णा जो है यही जो है व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है।
0: दूसरा इसके निवारण का मंत्र,
1: जी इसके निवारण का कहते हैं मंत्र ये है कि इसके लिए कहते हैं ना कि सत्संग करें, तो कहते हैं ये जो संतों का संग है या इस तरह का जो चिंतन है, महर्षि राम जी कह रहे हैं, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान सूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यों को भी यह तृष्णा एक मात्र पल भर का याचक बनाकर रख देती है। सोचिए आप, यानी आप एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति याचक क्यों बना हुआ है?
0: हाँ।
1: जब हम ब्रह्म हैं, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, अपने यहाँ हर जगह पंडित पूजन में बोलते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इतना गहरा घोष कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण से कुछ भी घटाओ वो पूर्ण ही रहेगा, जो शेष बचेगा वो भी पूर्ण होगा, तो फिर ऐसे में व्यक्ति याचक क्यों है, क्यों मंदिर जा रहा है?
0: बड़ा प्रश्न है,
1: बड़ा प्रश्न है। तो ये इसलिए है कि वो तृष्णा का शिकार है। तृष्णा कुछ है नहीं, एक प्रकार की अज्ञानता है, जड़ पदार्थों से हमारा योग होने के नाते हम तृष्णा से ग्रस्त हैं। अगर हम चैतन्य का चिंतन करें, जो राम जी ने अपने वैराग्य दशा में तृष्णा की जो निंदा की है वो इसलिए की है, मतलब वो बता सकें लोगों को कि देखो ये तृष्णा किस तरीके से तुम्हें पकड़े हुए है और इस जाल में तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कर्म से सुखी नहीं हो, क्योंकि राम जी के वैराग्य का यही कारण था।
0: जी, जी,
1: उन्होंने वैराग्य किसी विषाद से नहीं लिया था।
0: हाँ।
1: जबकि गीता में अर्जुन को विषाद से वैराग्य होता है, यहाँ राम जी ने कर्म करते हुए लोगों को जब देखा तो कहा कि किसी भी कर्म से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो फिर उनके चित्त में ये अनुसंधान, ये प्रश्न फूटा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। उन्होंने कर्म का ही त्याग कर दिया। तो कर्म का त्याग किया तो तब गुरु वशिष्ठ ने, जो गुरु वशिष्ठ मतलब उसके पहले भी शिक्षा दिए हैं चारों भाइयों को,
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन अब जो योग के अंतरतम रहस्यों को जो श्री राम जी के सामने विश्वामित्र जी के मांगने पर जो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी को दिया है, तब दिया है जब उनके अंदर ये विवेक से उत्पन्न वैराग्य हुआ है।
0: तो मुझे ऐसा लगता है शशिकांत जी कि इस संसार में कोई भी ज्ञान
1: जी
0: हम नहीं जानते हैं, जिस बात को एक बार बताया जाता है तो वो ज्ञान हमें सांसारिक ज्ञान हो जाता है
1: जी।
0: फिर दोबारा उसे जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती
1: जी।
0: लेकिन ये जो ज्ञान है
1: जी,
0: ये अभ्यास मांगता है,
1: अभ्यास मांगता
0: है ना, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो ये सत्संग हमारा आपका बना रहेगा
1: जी, जी।
0: अगले अंक में भी आज आप उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में आपने सुना श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा विषय पर चर्चा। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आपके साथ मैं हूं फराज। श्रोताओं, आज बात होगी उस शायर की जिसके ना मालूम कितने शेर हमारे जहन में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। वो रचनाकार कौन हो सकता है सिवाय डॉक्टर बशीर बद्र के।
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
1: परखना मत,
2: परखने में कोई अपना नहीं,
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना।
2: वाह।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए।
0: बशीर बद्र एक ऐसा नाम जिन्हें पीढ़ियां सुनती चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही मोहब्बत से लोग उनको याद करते हैं जितना पहले के जमाने में किया करते थे।
1: और मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ।
2: वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत कहाँ
0: बशीर बद्र को अगर याद किया जाए तो एक लफ्ज काफी है और वो है मोहब्बत। मोहब्बतों का शायर बशीर बद्र।
1: अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।
2: वाह वाह, अच्छा अच्छा। वाह
0: वाह। बशीर साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को हुआ और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कभी ना रुकने वाले, कभी ना थकने वाले सफर का। बचपन में उनके पिता इस दुनिया फानी को जल्दी ही छोड़कर चले गए और उसके बाद बशीर साहब पर जिम्मेदारियां आईं जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया और फिर सफ़र तय किया पढ़ाई का, तालीम का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ अरसे पढ़ाया और वो जब अलीगढ़ में पढ़ते थे उसी दौरान उनकी गज़लें, उनकी शायरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। अब इतना मकबूल और इतना मशहूर कौन हो सकता है कि जो खुद पढ़ रहा हो उसकी गजलें पढ़ाई जाती हों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।
1: खता

0: उसके बाद बशीर बद्र साहब ने रुख किया मेरठ का और फिर वहाँ कॉलेज में पढ़ाने लगे। फिर सिलसिला चलता रहा और वक्त उन्हें भोपाल ले आया और फिर भोपाल में ही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी शाम देखी।
1: मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है।
0: बशीर बद्र को बशीर बद्र बनने में यकीनन जिस तरह से लोगों को कामयाब होने में सालों लगते हैं, उनको भी कई सालों का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता चला गया और बाद में न जाने कितने लोगों ने उनकी शागिर्दी में शायरी को सीखा और उसे आगे बढ़ाया।
1: मुखालफत से मेरी शख्सियत समरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता
2: हूं। वाह वाह वाह, फिर दे बजुर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह।
0: कितने ही उनके शेर हैं जो लोगों को याद हैं, खास करके युवाओं को। मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूं, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूं, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। या उनका मशहूर शेर जिसने पूरी दुनिया में उन्हें मकबूल कर दिया, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये इतना मशहूर हुआ कि जब वो बहुत यंग थे तो मीना कुमारी जो मशहूर एक्ट्रेस रहीं, उन्होंने एक मैगजीन में इस शेर को लिखा था और ये कहा था कि इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता, उसकी जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं, कभी उरूज तो कभी जवाल। उस वक्त मीना जी को यह नहीं मालूम था कि यह शेर बशीर बद्र साहब का है और बाद में इस शेर को कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनके कई शेर ऐसे हैं जो लोगों को जुबानी याद हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात

0: आया हुई कुलियत, बशीर बद्र, आस और बहुत सी। इसके अलावा ये हम जानते हैं कि कई गज़ल सिंगर्स ने उनकी गज़लें गाईं, चाहे वो जगदीश सिंह हों, तलत अज़ीज़ हों। किसी भी महफिल में लोग जाते तो फरमाइश करते कि हमें डॉक्टर बशीर बद्र का कोई कलाम सुना दीजिए।
1: कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई।
2: वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है।
0: जब बात डॉक्टर बशीर बद्र साहब की हो तो उनके बारे में हम सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए हमने बात की वरिष्ठ साहित्यकार स्कॉलर जनाब डॉक्टर नोमान खान साहब से। उन्होंने अपनी यादों में कुछ इस तरह से याद किया डॉक्टर बशीर बद्र साहब को।
3: बशीर बद्र साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेशनल लेवल की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त शायर और अदीब थे, साहित्यकार भी थे, और उनकी अपनी शायरी एक आम डगर से हटकर थी। एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था उर्दू गज़ल का, और वो ट्रेंड ये था कि वो गालिब और मीर और इकबाल की तरह का ट्रेंड नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा था अमीर खुसरो, यानी कहते थे अमीर, कबीर, नज़ीर और बशीर, ये उन्होंने अपना एक सिलसिला जोड़ा था। अच्छा, ये चारों जो हैं बहुत बड़े शायर भी हैं और बहुत बड़े अवामी शायर भी हैं। तो बशीर बद्र साहब के साथ एक ख़ास बात ये थी उनकी पॉपुलरिटी की, उनकी शोहरत की, उनकी मकबूलियत की और उनकी आम पसंदीदगी की वजह ये थी कि वो आम आदमी के शायर थे, वो इंसानियत के शायर थे, वो मोहब्बत के शायर थे, वो आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो दिनचर्या जिसे हम कहते हैं उसमें जो रोज़मर्रा छोटे छोटे वाक़यात, हादसात और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको ग्रिप करते थे और अपने शेर में ढालते थे। वो जैसे मासूम और भोले और सादा मिजाज इंसान थे वैसे ही उनकी शायरी भी थी, और उसमें वो बड़े, यानी बड़ी से बड़ी बात जो है वो बड़े आसान लफ्ज़ों में और आसान उसलूब में या स्टाइल में वो अपने बयान कर देते थे। तो इसी वजह से उनकी बात उनके दिल से निकलती थी और उनके श्रोताओं या पढ़ने वालों, पाठकों के दिल में उतर जाती थी, क्योंकि उसमें वो अपनी ज़िंदगी का अक्स या छवि देखते थे कि अरे ये तो मेरे दिल की बात है, अरे ये तो मेरे इसे तो मैं रोज़ देखता हूँ, भुगत रहा हूँ, भोग रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा कवि तो वो कह रहा है जो मेरे दिल में, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, इसे कह दिया।
4: जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है।
3: तो इस वजह से शायरी तो बड़ी शायरी वही होती है, अच्छा शेर उसी को कहते हैं कि जो कि सुनते ही दिल में उतर जाए। तो एक बड़ी खूबी ये थी बशीर बद्र साहब की कि वो उनके अशार बड़े सीधे सादे होते थे। इसमें उर्दू शायरी में इस खूबी को कहते हैं सहले मुमतना। सहले मुमतना के माने होते हैं कि ऐसा अंदाज, इतना आसान अंदाज कि जैसे कि पद और गद दो होते हैं ना, नसर और नज़्म, तो जैसे कि नसर या पद गद जो है वो सीधे सादे अंदाज में जुमलों में होते हैं, सीधी सादी बात कह दी जाती है। शायरी में थोड़ा सा वजन का भी ख्याल रखना पड़ता है, फ़न का, तकनीक का, और उसके अपने दायरे और उसकी अपनी खसूसियात है, उस हिसाब से वो चलते हैं। तो शायरी में जब बात कही जाती है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर कही जाती है। हर आदमी, वरना तो हर आदमी शायर बन जाए, हर आदमी शायर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो मौजू तबा नहीं होता, या उसका वो मुशाहिदा ऑब्ज़रवेशन वो नहीं होता, या उसका तजर्बा ऑब्ज़रवेशन नहीं बन पाता, या वो महसूस तो सब करते हैं, देख हम भी रहे हैं, आँखें हमारे पास भी है, सोच हम भी रहे हैं, अक्ल हमारे पास भी है, और ऐसा नहीं है, डिक्शन भी हमारे पास है, अल्फाज भी हमारे पास है, और हम जान समझ रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो यही तो फ़र्क है शायर और गैर शायर में, कि अगर वो शायरी के औसाफ से, उनकी फ़नी नज़ाकतों से वाकिफ़ है और उसके अंदर एक दिल गुदाख्ता जिसे कहते हैं नर्म दिल, हसास दिल, दिल सबके पास है, लेकिन शायर का दिल बड़ा नर्म होता है, उसकी सोच भी बड़ी गहरी होती है, उसके देखने का अंदाज़ और सोचने का अंदाज़ भी अलग होता है। तो जाहिर है कि इसी वजह से वो जब शेर में उन चीज़ों को ढालता है, अपनी रचनाओं में ढालता है तो वो एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो शक्ल ऐसी होती है कि कोई अनजान शक्ल नहीं होती, कोई ऐसी नहीं होती जिससे हम वाकिफ नहीं हों, लेकिन वो हमें सुनने में या पढ़ने में अच्छी मालूम होती है, हमारा मन मोह लेती है, हमारे दिल को मुतासर करती है, हमारे जहन की खिड़कियों को रोशन करती है, खोलती है, और हमें फिक्र पर आमादा करती है, और एक जिसको कहते हैं आनंदित करती है, हमें महसूस करती है, और हमारी जो अंदर के एहसास है उसको जगाती है, और हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सारी बातें इनके अंदर यानी बशीर बद्र साहब के कलाम में थीं, और उन्होंने कोशिश ये की कि हमारी उर्दू शायरी जो एक ख़ास डगर से चल रही थी, जिसको हम कहते हैं रवायती शायरी दो किस्म की, एक तो रवायती है क्लासिकल और एक है जदीद मॉडर्न। तो उनके साथ ये था कि उन्होंने रवायत से भी रिश्ता तोड़ा नहीं, जो परंपरा शायरी की है उसको भी बरकरार रखा, लेकिन जो नई डगर है, जो नए तकाजे हैं, जो नई ज़िंदगी है, जो नई अप्रोच है, जो नई सोच है आज के इंसान की, हमारे पूर्वज का युग जो है वो दूसरा युग था, उनको इतनी सब ये टेक्नोलॉजी और ये सब सहूलतें कहाँ मुहैया थी। आज तो यह है कि एक सेकंड के अंदर मीडिया जो है वो कहाँ से कहाँ, हमें सब पूरी दुनिया का हाल हमें मालूम हो जाता है। तो ऐसे जाहिर है कि आज के का जो श्रोता है या आज का जो पाठक है उसको आपको सामने रखकर उसी के मिजाज और माहौल और उसकी पसंद और उसकी फिक्र और उसकी ज़िंदगी को सामने रखकर अगर आप शेर कहेंगे तभी आप बशीर बद्र बन सकेंगे, वरना शायर तो बहुत हैं, एक नहीं हज़ारों हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन हर शायर मकबूल क्यों नहीं होता, हर शायर का डंका क्यों नहीं पिटता, हर शायर जो है वो मुशायरा क्यों नहीं लूटता, हर शायर की किताबें जो हैं वो उसके ट्रांसलेशन क्यों नहीं होते, हर शायर का उर्दू, वो तो उर्दू के शायर थे, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, दूसरी जबानों में भी हो रहा है, हर जगह बुलाए जा रहे हैं। वो तो बेसिकली देखा जाए तो वो उन्होंने अपने कैरियर का आगाज मेरठ कॉलेज में एक उस्ताद की हैसियत से किया था, फिर वो शायरी की तरफ आए, फिर वो शेर कहने लगे, फिर वो शेर भी उन्होंने यही हुआ कि आम डगर से हटकर शेर कहे। तो एक ताजगी, एक नयापन, एक नया लबो लहजा, एक मुनफरिद लबो लहजा उनके यहाँ हमें नज़र आता है। उनका अपना डिक्शन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, या ये कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। और भी बहुत से अशार हैं कि जो कि ऐसे हैं कि जो जिनको के हम कह सकते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गज़ल है। अब डिक्शन देखिए और अंदाज देखिए, गज़ल किसे कहते हैं ये उसकी डेफिनेशन देखिए कि तितली के नज़ाकत क्या है गज़ल की, कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गज़ल है, लफ्ज़ों की मीनाकारी को इल्हामी अशार न जानो। ये जो लफ्ज़ों की मीनाकारी है, पच्चीकारी है, जो उसका बनावट है, जो सजावट है, ये इसको इल्हामी मत समझो, इल्हामी माने आसमानी ऊपर से उतरी मत समझो, ये जो है ये शायर के अपनी फिक्र और दिलो दिमाग और उसकी सलाहियतों का इजहार है। दूसरी कहते हैं कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। अब आप देखिए अंग्रेजी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है, हिंदी के भी कर रहे हैं, उर्दू के भी कर रहे हैं, और भी मतलब उनके यहाँ, और वो लबो ले जाए जो आम इंसानों का लबो ले जाए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। या इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। या कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता, हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। या हमारा बदन धूप का बाग है, यहाँ चांदनी और शबनम कहाँ। या वो शेर जो अब बिल्कुल चरितार्थ हो गया, उन्हीं के ऊपर चस्पा हो गया, वो जो है ना कि न जाने किस गली में उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये शेर मैंने ट्रकों के पीछे भी लिखा देखा, ऑटो रिक्शा के पीछे भी लिखा देखा, सत्ता के गलियारों में भी गूंजता हुआ देखा, और इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों में भी इसको दोहराया गया, और होटलों में और आम लोगों के ज़बान पर भी। तो उनके अशार की या उनके रचनाओं की खूबी ये थी, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ज़रबुल मसल, ज़रबुल मसल मतलब जो मुहावरा बन जाए, कहावत बन जाए, जैसे कि मुहावरे का अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक पसमंजर होता है, कोई ना कोई कहानी, कोई वाकया उसके पीछे होता है, उसी का वो मुहावरा बनता है, कहावत का भी है ये। तो जो अब हम कभी कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत, अब इसके पीछे एक पूरी कहानी है। हम कह देते हैं, सुनने वाला सुन लेता है, समझने वाला समझ भी लेता है। तो इसी तरह उनके अशार जो हैं वो उन्होंने किस बैकग्राउंड में कहे हों, हो सकता है उनका जो है पसमंजर या बैकग्राउंड दूसरा हो, पृष्ठभूमि दूसरी हो, लेकिन वो उसमें इतनी खासियत खूबी है कि मुहावरे की तरह वो लगता है वो हमारा तजर्बा है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो हमारी ज़िंदगी की कहानी है, वो हमारे सामने का वाकया है। तो ये जब खूबी किसी फनकार में पैदा हो जाती है तो फनकार बड़ा हो जाता है।

0: मिला कर
1: कुछ आपकी आखिरी याद उनके साथ हो, कोई किस्सा हो अगर आप शेयर करना चाहें।
2: यादें तो बहुत सी हैं, अब आपने क्योंकि सवाल कर लिया है तो मैं आपको बताऊं कि असल में मेरी पहली मुलाकात उनकी उस वक्त हुई जब मैं सेफिया कॉलेज में एमए कर रहा था, 75 की बात। हमारे यहाँ सालाना मुशायरा होता था स्टूडेंट यूनियन का, उसमें शोरा को बुलाते थे, इनको पहली बार 75 में बुलाया और ये पहली बार ही इन्होंने ऐसा नक्श कायम किया कि हर साल बुलाए जाने लगे। अब स्टूडेंट यूनियन के ये जो स्टूडेंट्स होते नहीं साहब उन्हें तो ज़रूर बुलाए, आप किसी को बुलाइए उन्हें ज़रूर, तो एक बात तो ये, तो मुलाकातें होती रहती थी। फिर जब वो यहाँ भोपाल में सेटल हो गए और यहीं शादी हो गई, यहीं सेटल भी हो गई, मकान भी बना लिया, तो एक बार उनका फ़ोन आया कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, अपने इशरत कादरी साहब का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, बशीर बद्र साहब। कहा कि मुझ पर एक नंबर आ रहा है बहुत बड़ा, 500-600 सफ़े तो हो चुके हैं उसके, और मैंने उसको अभी रुकवा दिया है कि अभी 2 दिन और रुक जाइए, अब आप सब बहुत बड़े बड़े लोगों के मज़मून शामिल है, मैं चाहता हूँ आपका मज़मून भी इसमें शामिल हो, आपका आर्टिकल भी मुझ पर। तो मैंने कहा मेरे पास तो आपके मजमू है ही नहीं सिवाय एक आमद के, तो उन्होंने अपना बैग खोला और सारे मजमू मेरे सामने रख दिए और कहा यही कि बस जल्दी करना है, इसको 2 दिन की मोहलत दी। खैर मैं बैठा, मैंने दिन रात एक करके उसको किया और जाके उनके घर दे आया मैं। 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि आज आप डिनर हमारे साथ, आपकी फैमिली विद फैमिली आप हमारे साथ। अरे भाई क्यों, नहीं बस इनकार मत कीजिए, बहुत खुश। फिर वहाँ उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की, कहा कि बहुत अच्छा मज़मून आपने लिखा, इतने कम वक्त शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा मज़मून लिखना, 20 पेज का मज़मून है। खैर छप गया। उसके बाद फिर एक बार फ़ोन उनका आया कि मुझ पर एक साहब PhD करना चाहते हैं, मैं सेफिया कॉलेज में HOD था, और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कौन हम कि गाइड किसको बनाए, तो मैंने कहा नौमान खान को, मैंने वादा उनसे कर लिया है, वो मैं बात कर लूँगा ये भी कहा, तो आपको बनना है। अब तो हुक्म था, बन गए, वो PhD हुई, अवार्ड हुई, वो काम हुआ। उसके अलावा उनकी जो मिसेज हैं राहत बदर, वो मेरी स्टूडेंट रही हैं, मैं मेरे अंडर में किया, डिसर्टेशन में लिखा। जब वो PhD करने लगी तो मैं तो दिल्ली चला गया था, मुझसे कहा कि आप कब आ रहे हैं, तो मैंने बताया कि फला छुट्टी में आऊँ, हाँ तो मुझे आपके 1/2 घंटा चाहिए। मैं आया चला गया कि ये आपकी जो है शागिर्दा, ये मेरी मिसेज, ये PhD करना चाहती हैं जदीद गज़ल पे, और इसकी इनकी सिनॉप्सिस आपको बनाना है। मैंने फ़ौरन उनकी सिनॉप्सिस बनाई, 10 मिनट में बना ली, उनको भी अवार्ड हुई। तो मतलब ये कि वो कदरदान थे, वो समझते थे किससे क्या काम लेना है, कि कौन किस उसका है सलाहियत का, ये भी उनको अंदाज़ा था, और ताल्लुकात उनके बहुत वसी थे, क्योंकि उनके चाहने वाले हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ उर्दू है और जहाँ जहाँ उर्दू बोली या समझी जाती, सभी जगह उनको मानते और जानते थे और पसंद करते थे, और डिमांड पर वो बुलाए जाते थे, क्योंकि वो मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत थे। जिस मुशायरे को वो अटेंड कर लेते थे, मुशायरा कामयाब हो जाता था। एक बात और भी थी कि वो कम लोग शायद जानते हों कि वो बहुत अच्छे नाज़िम भी थे, कंपेयर भी थे, बहुत अच्छे मुशायरा कंडक्ट करते थे, जैसे कि मलिकज़ादा मंजूर साहब, एक छाप थी मुशायरे कंडक्ट करने की, निज़ामत की, ऐसी जब वो भी करते थे तो बहुत अच्छे अंदाज में, पढ़े लिखे आलिमाना अंदाज में करते थे। बांसुरी की सी सुरीलापन था कि जो बिल्कुल दिलों को खींच लेता था अपनी तरफ, और फिर उनके पढ़ने का अंदाज खास अंदाज से पढ़ते थे। हाँ तहत हो चाहे तरन्नुम, वो पहले तहत में ही पढ़ते थे, फिर आवाज़ आती थी अरे साहब तरन्नुम में भी होगी, तो वो गायक वाला नहीं था, वो अलग ओरिजिनल तरन्नुम था, उनका अलग अंदाज होता, उनका भी अपना ओरिजिनल तरन्नुम था।
0: तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई।
3: वाह वाह वाह,
2: बड़े फनकारों की कमी बहुत वैसे ही महसूस की जाती रही है और की जा रही है। एक ये भी थे और एक अरसे से बीमार भी थे, तो बिल्कुल इनएक्टिव भी थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें सामने भी नहीं आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो जितना कंट्रीब्यूट कर गए हैं, जो कुछ हमें दे गए हैं, वो ऐसा है कि वो हमारी अपनी धरोहर भी है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है, हमारे अदब के लिए, हमारी ज़बान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और इसी के साथ साथ ख़ुद उनके लिए भी कि वो अपनी जगह भी महफूज कर गए कि जब भी उर्दू गज़ल की बात चलेगी, जब भी उर्दू शायरी की बात होगी, और जब उसमें ये होगा कि भाई चंद नुमाया या अहम नाम कौन कौन से हैं उर्दू गज़ल के, तो जाहिर है कि उसमें, उस लिस्ट में बशीर बद्र का नाम भी आप
4: जरूर आएगा,
2: जरूर शामिल करने पर
4: नहीं पड़ेगा।

श्रोताओं, बशीर बद्र जैसे लोग कभी दुनिया से नहीं जाते। कहते हैं ना कि कलाकार, साहित्यकार, अदीब अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं। वही बात बशीर साहब पर भी बिल्कुल फिट है। उनके काम के जरिए, उनके शेरों के जरिए वो सदियों तक हमारे जहनों में, हमारे दिलों में बसे रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। श्रोताओं, भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आप सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा में। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। आइए सबसे पहले चलते हैं भारत भवन में, जहां कल 3 दिनों के नृत्य समारोह भावानुभाव की शुरुआत हुई। पहला दिन भक्ति, सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभूति के नाम रहा। शास्त्रीय नृत्य की दो अलग अलग शैलियां, कथक और भरतनाट्यम में श्री कृष्ण के अलग अलग रूप देखने को मिले। बाल लीलाओं से लेकर गीता का ज्ञान देते जगत गुरु तक कृष्ण का हर रूप इन प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों तक पहुंचा। प्रसिद्ध कथा कलाकार करण गंगानी ने साथी कलाकारों के साथ वंदे कृष्ण जगत गुरु की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की शुरुआत सूरदास के पद नाचत सुधंग श्री नंदनंदन के साथ हुई। इसमें बालकृष्ण की चंचलता और अलौकिक आकर्षण कथक की पारंपरिक शैली में नजर आया। इसके बाद 3 ताल में शुद्ध कथक पेश किया, जिसकी लय, ताल और नृत्य की बारीकियां सीधे दर्शकों तक पहुंची। भाव पक्ष में आते ही करण ने पंडित भीमसेन जोशी का लोकप्रिय भजन बाजे रे मुरलिया बाजे पर कृष्ण की माधुरी लीला को सजीव किया। कथक प्रस्तुति का समापन श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य के साथ हुआ, जिसने श्री कृष्ण धर्म संस्थापक और जगत गुरु के स्वरूप में नजर आए। शाम के दूसरे पहर में भरतनाट्यम नृत्यांगना श्वेता देवेंद्र और पद्मरंग नृत्य अकादमी की 30 नृत्यांगनाओं ने नृत्य नाटिका माधव दर्शनम प्रस्तुत किया। ये प्रस्तुति कृष्ण के बाल और किशोर जीवन की लीलाओं का भावपूर्ण प्रदर्शन था। नृत्य नाटिका का शुभारंभ वात्सल्य से सराबोर बंदिश यशोदा हरि पालने झुलावे से हुआ, जिसमें माँ की प्रेम अभिव्यक्ति देखने को मिली। माता यशोदा और बालकृष्ण के स्नेहपूर्ण संबंधों के दर्शन इसमें दिखाए गए। इसके बाद कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ उनके चंचल प्रसंग और माखन चोरी की घटनाओं को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया। गोपियों के द्वारा माखन मथने, कृष्ण और सखाओं द्वारा माखन चुराने और शिकायत को लेकर यशोदा के पास पहुंचने का हर दृश्य दर्शकों के बीच खास आकर्षण रहा। प्रस्तुति में कालिया नाग दमन प्रसंग ने वीर रस का प्रभावशाली चित्रण किया, जहां कृष्ण अधर्म और भय पर विजय के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आए। नृत्य नाटिका का समापन महाराज के दिव्य दृश्य के साथ हुआ। राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक एकत्व को दिखाती ये प्रस्तुति दर्शकों के लिए अलौकिक अनुभूति बन गई। पिछले एक दशक से हो रहा भावानुभाव नृत्य समारोह इस वर्ष संस्कृति के अग्रदूत और महानायक श्री कृष्ण पर केंद्रित है। इस बार केवल एक कला की प्रस्तुति नहीं, बल्कि कृष्ण चरित्र को विशुद्ध शास्त्रीय स्वरूप में प्रस्तुत करने का ये अनूठा प्रयास भारत भवन में चल रहा है। प्रायः श्री कृष्ण की लीलाओं को ठुमरी जैसी उपशास्त्रीय विधाओं में देखा जाता है, किंतु यहाँ उन्हें शास्त्रों के आधार पर पूर्णतः शास्त्रीय रूप में देखा जा रहा है। समारोह की सबसे बड़ी विशेषता 3 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, उत्तर भारत का कथक, पूर्व की ओडिसी और दक्षिण भारत का भरतनाट्यम। एक अभिनव प्रयोग जयदेव रचित गीत गोविंदम को लेकर भी हुआ है। आमतौर पर ओडिसी में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार ये कथक शैली में पिरोया गया है। वहीं 3 दिवसीय समारोह में श्रोताओं, आज शाम 7 बजे ओडिसी नृत्य शैली में कृत्य नरसिंह राणा साथियों के साथ गीत गोविंदम की प्रस्तुति होगी। इसके बाद कथक नृत्यांगना क्षमा मालवीय साथियों के साथ अष्टपदी और नवरस प्रस्तुत करेंगी।

इधर दूसरी तरफ बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कलात्मक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से लिखनदरा कला समिति द्वारा 2 दिवसीय चिल्ड्रन आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन शनिवार को रविंद्र भवन की ललित आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। आयोजन में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 100 बच्चे देश के विभिन्न शहरों से भाग लेंगे। आयोजित इस समारोह में बच्चे अपनी भावनाओं, यादों और अनुभवों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। प्रदर्शनी में नानी का घर की यादें, 90 का दौर, AI और टेक्नोलॉजी, सशक्त भारत का अभ्युदय, मध्य प्रदेश जैसी थीम्स पर बच्चों की कलात्मक सोच देखने को मिलेगी। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे थे भोपाल शहर की भूतकाल की, वर्तमान और आगामी शहर की सांस्कृतिक गतिविधियां। परिक्रमा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: याद करो कुर्बानी। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, आज हम लेकर उपस्थित है कार्यक्रम और आज बातें होंगी क्रांतिकारी उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय की। कलकत्ता की अदालत में क्रांतिकारी उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय के बयान चल रहे थे। उन्होंने कुछ इस प्रकार अपना बयान दिया।
1: मेरा नाम उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय है और मेरे पिताजी का नाम रामनाथ बनर्जी है। मैं सन 1871 की 6 जून को चंदन नगर में पैदा हुआ हूँ और इस समय कलकत्ता में रह रहा हूँ। मैं जब तक कलकत्ता में रहता हूँ, लड़कों को अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की शिक्षा दिया करता हूँ। मैं उन्हें यह भी बताता हूँ कि देश की स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है और उसकी दशा कैसे सुधारी जा सकती है।
0: तो श्रोताओं, इसके बाद प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चलता रहा। किस तरह के प्रश्न किए गए उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी से, यह हम जानेंगे एक देशभक्ति गीत के बाद।

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आज बात हो रही है क्रांतिकारी उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की। श्रोताओं, हमने आपको बताया कि उपेंद्रनाथ ने अपना बयान दिया, उसके बाद प्रश्न और उत्तर का सिलसिला जारी रहा। प्रश्न आया कि स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, क्या आप इस बात की भी शिक्षा देते हैं?
1: जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसकी भी शिक्षा देता हूँ।
0: स्वतंत्रता प्राप्ति के उपाय आप क्या बताते हैं?
1: मैं यही कहता हूँ कि अंग्रेजों से युद्ध करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह भी बताता हूँ कि देश भर में हमें गुप्त समितियां स्थापित करनी होंगी, हथियार जुटाने होंगे और अवसर मिलते ही विद्रोह का बिगुल बजाकर युद्ध की घोषणा करनी होगी।
0: ये सब स्वीकार करते हुए क्या आप अपने दल का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं?
1: नहीं, मैं दल का भला ही कर रहा हूँ। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको ज्ञात हैं ही। मेरी स्वीकारोक्ति से निर्दोष लोग कष्ट पाने से बच जाएंगे। यदि मैं यह सब स्वीकार नहीं करूं तो न जाने आप कितने कितने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उन्हें न जाने कितनी कितनी तरह की यातनाएं देंगे।
0: अदालत ने उपेंद्रनाथ की बात सुनी, समझी और उसकी छानबीन की। कुछ दिन न्याय का नाटक चला और अंत में सन 1908 में अलीपुर बम केस में आजन्म द्वीपांतरवास का दंड सुना दिया। श्रोताओं, उपेंद्रनाथ की चर्चा आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक देश

0: श्रोताओं, उपेंद्र नाथ को समाज सेवी और राजनीतिक जीवन की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से मिली। उन्होंने स्वामी जी का साहित्य पढ़ा था और एक बार स्वामी जी से उन्होंने भेंट भी की थी। विचारों का जो आदान प्रदान दोनों के बीच हुआ था वो इस प्रकार का था।
1: स्वामी जी, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि राष्ट्र की सेवा किस प्रकार करूँ। आप ही कृपा करके मुझे राष्ट्र सेवा का कोई मार्ग सुझाएं।
0: उपेंद्र की ये बात सुनकर स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा, राष्ट्र सेवा का संकल्प भी राष्ट्र सेवा ही है। राष्ट्र सेवा के लिए साधन संपन्न होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। साधनों के अंतर्गत बाह्य उपकरण भी आते हैं और शारीरिक तथा आत्मिक बल भी। श्रोताओं, स्वामी जी की ये बात सुनकर उपेंद्र फिर बोले,
1: बल संवर्धन की बात तो आपने ठीक कही है, पर क्या बल प्रयोग अनुचित नहीं माना जाएगा?
0: श्रोताओं, इस पर स्वामी जी ने कहा कि सोद्देश्य के लिए बल प्रयोग अनुचित नहीं होता। राष्ट्र की मुक्ति के प्रयास सोद्देश्य के अंतर्गत ही तो आते हैं। फिर उपेंद्र का प्रश्न था,
1: राष्ट्र की मुक्ति के लिए आप हम नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: तब स्वामी जी ने कहा, नौजवानों से मेरा तो यही कहना है कि वो उपाधियां जुटाने के स्थान पर शक्ति का अर्जन करें।

और कार्य क्षेत्र में कूद पड़े। नौजवानों को चाहिए कि वो वादों और विवादों को छोड़कर भारत माता को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करें। उन्हें काम करते जाना है, फल तो अंततो गत्वा मिलेगा ही। श्रोताओं, उपेंद्र के लिए स्वामी विवेकानंद का यह प्रेरणा मंत्र पर्याप्त था। हम जानेंगे कि इस मंत्र को पाकर उपेंद्र स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चले या नहीं, परंतु एक देशभक्ति गीत के बाद।

श्रोताओं, उपेंद्रनाथ कर्म में जुट गए। चंद्रनगर के एक विद्यालय में वो अध्यापक का कार्य करने लगे और युवा विद्यार्थियों के दिलों में क्रांति और विद्रोह का बीज बोने लगे। उपेंद्रनाथ ने देशाटन भी किया। वो जहां भी जाते, युवकों में उग्र राष्ट्रीय चेतना भरने का प्रयत्न करते और युवाओं पर उनकी वाणी का प्रभाव भी पड़ता था। कुछ दिन पश्चात अध्यापन का कार्य छोड़कर उपेंद्र कलकत्ता जा पहुंचे। वहां श्री अरविंद के पत्र वंदे मातरम का संपादन कार्य भी किया उन्होंने। वारींद्र कुमार घोष के पत्र युगांतर का संपादन भार भी उन्होंने कुछ समय तक संभाला। श्रोताओं, उपेंद्रनाथ की लेखनी में बहुत बल था। अब वो क्रांतिकारी दल की एक नियमित सदस्य बन गए थे। कलकत्ता के मानिकतल्ला में अरविंद घोष का पैतृक मकान था। वही क्रांतिकारियों का अड्डा भी हुआ करता था। अपने उस जीवन की एक झलक उपेंद्रनाथ ने कुछ शब्दों में लिखी है और वो शब्द क्या है हम जानेंगे एक देशभक्ति गीत के बाद।

दोनों समय मुट्ठी भर भात तो मिलना ही चाहिए। हम लोगों के खाने में ज्यादा खर्च भी नहीं होता था। दाल में ही दो चार आलू डालकर सब्जी की कमी पूरी कर ली जाती थी। सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि वारिंद्र उस समय ब्रह्मचारी थे और मछली या प्याज का छिलका तक बगीचे में घुस नहीं सकता था। मिर्च और मसाले खाने की तो मनाही थी। तो श्रोताओं, जाना आपने कि किस तरह से उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने अपना जीवन व्यतीत किया? ये जीवन था उपेंद्र और उनके क्रांतिकारी साथियों का। देश की मुक्ति के लिए वो त्याग और तपस्या का पथ अपनाए हुए थे। अपने दल के साथ उपेंद्रनाथ ने क्रांति के क्षेत्र में बहुत सक्रिय योगदान दिया। आखिर एक दिन उन्हें पुलिस के शिकंजे में फंसना ही पड़ा। अलीपुर बम केस के नाम से फिर से न्याय का नाटक रच गया, जिसमें बयान देते हुए उपेंद्र ने स्पष्ट स्वीकारोक्ति की। फलस्वरूप आजीवन द्वीपांतरवास का दंड उपेंद्र को प्राप्त हुआ। 12 वर्ष काले पानी का द्वीपांतरवास भुगतने के पश्चात फरवरी सन 1920 में छूटकर उपेंद्र अपने घर पहुंचे।

0: श्रोताओं, उपेंद्र की लेखनी ने देश को प्रेरक और स्थायी साहित्य दिया है। आपने जाना आज उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी के बारे में।
1: याद करो कुर्बानी।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुरसागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप आनंद लेंगे भक्ति संगीत का। कलाकार हैं अनुषा शर्मा। ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संत वाणी समारोह के तहत।
1: इस मंच पर पधारी श्री अनुषा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है अनुषा जी आपका। आपके साथी कलाकारों का भी परिचय आपसे हम करा दें। तबले पर श्री आशीष उपाध्याय, हारमोनियम पर श्री निखिल बाकरे, वायलिन पर श्री मनोज बमरेले और मजीरे पर श्री भावेश अनिराम। तो हम आग्रह करते हैं अनुषा जी से अपने भक्ति पद गायन का आरंभ करें।
2: नमस्कार। आज की प्रस्तुति में संत कबीर तुलसीदास जी एवं संत एकनाथ सूरदास जी, ऐसे सभी संतों की एक एक प्रस्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी।

अगली प्रस्तुति में मैं कबीरदास जी का एक भजन गाने जा रही हूँ। इसके बोल हमारे जीवन को बहुत ही बड़ा एक संदेश देते हैं। भजन बिना, हरि नाम बिना, जल जइयो ऐसो जीवन। जो जीवन हरि के नाम के बिना हो, भजन के बिना हो, वो जीवन जीवन ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से कबीरदास जी की पंक्तियाँ।

संत वाणी हो और तुलसीदास जी का पढ़ना हो, तुलसीदास जी की रचना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अंतिम प्रस्तुति में मैं श्री राम स्तुति

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री अनुषा शर्मा जी।
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे भक्ति गायन, कलाकार थी अनुषा शर्मा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारतीय नारी ने चिरकाल से जिस आदर्श पर चलने का प्रयास किया है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार बड़ी उद्दीप्त भाषा में उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि संन्यास जीवन के समान ही नारी जीवन भी बाह्य अभिव्यक्ति की वस्तु नहीं है, इसका मूल लक्ष्य है आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाना। और भारतीय नारी ने त्याग, पवित्रता, धैर्य, दया, संतोष तथा सेवा आदि सद्गुणों का विकास करके राष्ट्र की सांस्कृतिक उदात्तता और आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को अक्षुण्य बनाए रखा है।
1: परंतु वर्तमान कालखंड में भारतीय नारी एक दुराहे पर खड़ी है। उसके सामने आज दो विपरीत आदर्श उपस्थित हैं, एक तो परंपरागत आदर्श और दूसरा आधुनिक नागरिक आदर्श। प्रत्येक सामाजिक विकास के पीछे उसका आदर्श ही उसे सक्रिय बनाता है और हर विकास की प्रक्रिया उसके आदर्श को सबल बनाते हैं। यदि भारतीय नारी को अन्य सभी देश की नारियों के साथ आगे बढ़ना है, एक अभिनव समाज गढ़ने का सपना देखना है, तो उसे ये निर्णय लेना होगा कि इनमें से कौन सा आदर्श अपनाया जाए।
0: स्वामी विवेकानंद की विविध उक्तियाँ इन दो तरह के आदर्शों पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने कहा है,
2: भारतवर्ष में प्राचीन काल में परिवार आदि का ही प्राबल्य रहा है। परिवार यद्यपि समाज की लघुतम इकाई है, परंतु भारतीय जीवन पद्धति में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को गढ़ने वाली सभी मार्गदर्शक एवं नियामक प्रेरणाएं परिवार से ही आती प्रतीत होती हैं। जाति की शुद्धता, विवाह बंधन की पवित्रता, मातृत्व आदि सभी विचारों का लक्ष्य है परिवार के संगठन को सुरक्षित रखना।
1: उन्होंने हमारे विवाह व्रत और मातृत्व के आदर्शों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अन्य जातियों तथा राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में वे भारत का अनुसरण करें।
2: मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए और वो विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से ही हो सकती है।
0: वे अमेरिकन स्त्रियों की स्वच्छंदता देखकर अवाक हो गए थे, परंतु उनमें मातृत्व भाव की कमी देखकर उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: माता के रूप में अमेरिकन स्त्री कहाँ है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का जिसने हमें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है?

0: देश में नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
1: मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी और व्रत रखा था कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। अमेरिका की माताओं, इस पर जरा विचार कीजिए। हृदय के अंतःस्थल में जरा सोचिए कि क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं। इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं, किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के मिथ्या गर्व का स्थान नहीं। आप सबसे आज रात मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हैं? क्या आप माता होने के लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप ये समझती हैं कि मातृत्व प्राप्त करके आप पवित्र गौरव को प्राप्त करती हैं? आप अपना हृदय टटोलें और पूछें, यदि नहीं तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व मिथ्या है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है। और यदि आपके बच्चे प्रार्थना के बिना जन्म लेते हैं तो वे संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे।
2: जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वे वहां की शिक्षित, साहसी और दयालु महिलाओं को पक्षियों के समान स्वाधीन देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां की स्त्रियां बड़े आत्मसम्मान के साथ अपने समुदाय के नागरिक जीवन में हिस्सेदारी निभाती हैं। विस्मय एवं प्रशंसा के साथ उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को लिखा था,
1: मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएं यहां देखी वैसी कभी कहीं नहीं देखी। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परंतु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से कहीं और दिखाई देंगी। मैंने यहां हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल हैं। आहा, वे कैसी स्वतंत्र होती हैं, सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं। यहां लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं और इसलिए ये लोग इतने सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं, और हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय एवं अपवित्र कहते हैं। फल हुआ हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए।
0: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी ने दोनों आदर्शों की ही प्रशंसा की है, परंतु दोनों के प्रति उनकी समालोचना भी उतनी ही कठोर है। भारतीय स्त्रियों की हालत के बारे में उन्होंने एक बार कहा था,
1: अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है।
2: दूसरी ओर उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन महिलाओं को सुस्पष्ट और कठोरता पूर्वक कहा,
1: मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वो चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही पा सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों से ढककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूं। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है, नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विद्वान नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं।
0: इस प्रकार अपने देश से बिल्कुल ही अलग आदर्श पर चलने वाली महिलाओं के एक वर्ग के संपर्क में आने के बाद इन दोनों आदर्शों तथा दोनों समाजों में महिलाओं की दशा का भेद उनके सामने उजागर हुआ। कालांतर में जब उनके मन में अपने देश की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने की तीव्र आकांक्षा हुई तो स्वाभाविक रूप से ही उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भारतीय नारी किस हद तक अपने आदर्शों से समझौता करते अन्य देशीय आदर्शों को अपना सकती है। इस विषय पर स्वामी जी ने हमें जो गहन और सर्वांगीण विचार दिए हैं, वे शत वर्षों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी प्रासंगिक हैं।
2: उनका मत था कि संशोधित उपयोग दोनों ही आदर्शों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु निर्माण करेगा। उनके इस विचार को और भी स्पष्ट करते हुए उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
3: वे भविष्य की भारतीय नारी को ध्यान की प्राचीन शक्ति से अलग करके कल्पना तक नहीं कर पाते थे। महिलाएं आधुनिक विज्ञान अवश्य सीखे पर प्राचीन आध्यात्मिकता को त्याग कर नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि वही शिक्षा आदर्श होगी जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष परिवर्तन को कम से कम प्रभावित करेगी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक महिला अतीत भारत की समस्त नारियों की महानता को अपने आप में पूर्ण रूपेण मिला लेने में समर्थ होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
0: स्वामी विवेकानंद जब कभी भारतीय नारी तथा उसकी समस्याओं के बारे में बोलते थे, तब वे एक तीसरे आदर्श के बारे में भी सचेत रहते थे और वो था आध्यात्मिक आदर्श। भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता इतनी ओतप्रोत है कि इसे एक अलग आदर्श के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अतः हम अपने राष्ट्र के सामाजिक धार्मिक इतिहास में सन्यासी एवं गृही दोनों ही प्रकार के अनेक महान विभूतियों का उल्लेख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की इस महानता को भली भांति पहचाना। उन्होंने कहा था,
1: राष्ट्र की आध्यात्मिकता के इस उच्च स्तर को बनाए रखने में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समकक्ष ही रहा है। अति प्राचीन वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं ने अपने ढंग से इस आदर्श को जीवंत रखा है। मैत्रेयी से लेकर श्री शारदा देवी तक ये सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संसार त्याग कर वन में जाने से पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी संपत्ति का एक अंश उन्हें देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर मैत्रेयी ने कहा था, जो संपदा मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी। इस पर याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। श्री रामकृष्ण ने जब शारदा देवी से पूछा कि क्या तुम पत्नी के रूप में अपने अधिकार का दावा करने आई हो, तो उन्होंने उत्तर दिया था, तुम्हें संसार में खींचने को नहीं, तुम्हारे धर्म पथ में सहायता करने आई हूं। उसी समय से वे श्री रामकृष्ण की प्रमुख शिष्या के रूप में स्वीकृत हुई।
2: स्वामी विवेकानंद के सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्त्रियों की उन्नति या स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में बराबर का स्थान दिलाना, उन्हें समर्थ बनाना, ये विचार हमेशा उनके मन में रहता। उन्होंने निवेदिता से कहा था, कभी मत भूलो पहले स्त्रियां और फिर बाद में और लोग। इन शब्दों को हमेशा याद रखना।
0: स्वामी जी के व्याख्यान संभाषण हमेशा स्त्री उन्नति विषयक उद्गारों से भरे रहते थे। वे कहा करते थे,
1: भारत में दो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। पहली तो स्त्रियों का उत्पीड़न या पैरों तले कुचलना और दूसरा गरीबों का शोषण यानी उनका दमन। सर्वप्रथम स्त्रियों का उद्धार करना होगा। सामान्य जन में इस बाबत जागृति लानी होगी, तभी अपने देश भारत की उन्नति हो सकेगी, उसका भविष्यकाल उज्जवल हो सकेगा। जिस देश में या जिस घर में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, वे कष्ट में हैं, जहां उन्हें सम्मान न मिलता हो, उनका कोई उचित स्थान नहीं है, उस परिवार की या उस देश की उन्नति की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए सर्वप्रथम स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाओ, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें समर्थ बनाओ, उनमें आत्मविश्वास जगाओ, उन्हें सम्मान दो। इस कार्य के लिए शिक्षित स्त्रियों के एक आदर्श मठ की शुरुआत करनी होगी। सामाजिक उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।
2: विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप गए, वहां की उच्च शिक्षित स्त्रियों से मिले, उनके ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति से वे प्रभावित हुए। वहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, सभी को अपना मत प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। स्त्रियां अकेले कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थीं। सभी सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर भागीदारी करती थीं। ये सब देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनका मन हमेशा भारतीय नारी की दयनीय दशा को याद कर रोता रहता था। उनके मन में भारतीय नारी को उनकी सही जगह दिलवाने की इच्छा थी।
0: उन्होंने इसका एकमात्र उपाय सोचा, स्त्री शिक्षा। शिक्षा ही भारतीय नारी की बेड़ी को तोड़ेगी। शिक्षा ही उनकी आंखों के सामने विशाल आकाश और पाश्चात्य जगत के आलोकित स्वरूप का विराट रूप खोल देगी। उन्हें लगता था शिक्षा ही वो पंख है जिसके सहारे भारतीय नारी उड़ पाएगी। स्वतंत्र विचार और भय रहित स्वतंत्र जीवन, यही सपना देखा था स्वामी जी ने उनके लिए। इसलिए उन्होंने कहा,
1: पहले स्त्रियों को उचित शिक्षा दो, फिर उन्हें इतनी स्वतंत्रता दो कि वे अपने जीवन संबंधी निर्णय खुद ले सकें। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दो, फिर वे तुम्हें खुद ही बताएंगी कि उनकी उन्नति के लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। वे अपनी उन्नति का मार्ग खुद ही प्रशस्त करेंगी। ये भी जान लो कि आज की दुखद स्थिति को खत्म करने के लिए स्त्रियों और सामान्य जनता की स्थिति सुधारना जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है स्त्रियों और सामान्य जनता को शिक्षित करना। शिक्षा के महत्व को वे खुद समझें तथा शिक्षा प्राप्ति हेतु खुद ही आगे आएं, अन्यथा समाज का पतन निश्चित है और किसी भी मार्ग से समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती। स्त्रियों की समस्याएं अनेक हैं और उनमें से कुछ समस्याएं तो गंभीर भी हैं, ये बात सत्य है, पर फिर भी सारी समस्याओं के निराकरण हेतु सिर्फ एक ही जादुई शब्द शिक्षा काफी होगा। शिक्षा के जादू से वे अपनी सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सकती हैं।
2: भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का भार स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को दिया था। निवेदिता भी अपने गुरु के आज्ञानुसार इसी मार्ग पर चल पड़ी थी। पथ आसान नहीं था, पर इस दुर्गम पथ पर वे अपने कुछ साथियों के साथ अग्रसर हो चली थी। उन्होंने स्वयं इस बारे में कहा है,
3: स्वामी जी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज की उन्नति संभव ही नहीं। उनकी दृष्टि में अनेक विचारों में ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सिर्फ एक ही है, और वो है स्त्रियों को शिक्षित करने हेतु महिला शिक्षा शास्त्रियों की एक ऐसी सेना तैयार करना जो स्त्रियों की समस्याओं को समझेंगी, उनका निराकरण करेंगी। इसके अलावा उनका कार्य ही उनका घर होगा। धर्म के अलावा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। देश, जनता, गुरु और अपना कार्य, यही उनके लिए सब कुछ होगा।
2: ये कार्य उतना आसान नहीं था, पर स्कूल की शुरुआत हो ही गई।
0: स्त्रियों के लिए एक मठ की स्थापना करने की स्वामी जी की कल्पना उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एक असाध्य कल्पना भले ही लगती हो, पर राष्ट्रीय आदर्शों के प्रेरित स्त्रियों के लिए एक शिक्षा संस्था का शुरू होना यानी बुरी शुरुआत नहीं थी। और यही कारण था कि स्वामी जी को निवेदिता के छोटे से स्कूल में अगाध रुचि थी, आस्था थी। वो स्कूल अर्थात उन्हें अपने सपने साकार करने का एक साधन लगता। स्कूल, स्त्री शिक्षा और पाठशाला में होने वाले कार्यों की योजना के संबंध में वे घंटों निवेदिता के साथ विचार विमर्श करते। भारतीय स्त्रियां और उनकी शिक्षा, इस विषय पर निवेदिता के जो विचार थे, इस विषय पर वो जो भी लेखन कार्य करती थीं, उन सब पर स्वामी जी के विचारों और उनकी कल्पनाओं की छाप से दीख पड़ती है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दे इजाजत, नमस्कार। सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब हमारा साथ ज्ञात अल्पज्ञात और गुमनाम नायकों की गाथाएं और उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनिए रेडियो आजाद हिंद में। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, स्पॉटिफाई पर, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल 1 के सूक्त 135 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा 5:10 पर। बाबा खड़क सिंह की पुण्यतिथि पर आधारित है आज का वतन करा कार्यक्रम जो पेश किया जाएगा शाम 6 बजे। 6:30 पर सुनिए इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम रानी दुर्गावती के गौंड राज्य का इतिहास। योग संवाद कार्यक्रम में सुनेंगे आप श्रीराम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा भाग 73 का प्रसारण 7 बजे। 7:30 पर विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा डॉक्टर बशीर बद्र आपकी यादों की रोशनी हमेशा हमारे साथ बनी रहे। रेडियो रिपोर्ट पेश की जाएगी 8 बजे। 8:30 पर याद करो कुर्बानी कार्यक्रम होगा जो केंद्रित है उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय पर। भक्ति गायन अनुषा शर्मा का सुर सागर कार्यक्रम में सुनिए 9 बजे और 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद भाग 65 का वाचन। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: वेद पुराण ऋचाएं हमारी भारतीय संस्कृति की अक्षुण्य धरोहर हैं। वैदिक ऋचाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुनिए अक्षय निधि।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
5: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं वायु और इंद्रवायु, छंद है अत्यष्टि और अष्टि।
6: स्तीर्णम बर्हि रूप नो याही वीतये सहस्रेण नियुता नियुत्वते शतिनी भिर नियुत्वते तुभ्यम ही पूर्व पीतये देवा देवाय ये मिरे प्रते सुतासो मधुमंतो अस्थिरन मदाय कृत्वे अस्थिरन। हे वायुदेव, आपके लिए ही हमारे द्वारा कुश का आसन बिछाया गया है। आप सहस्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए यहाँ आए शक्ति रूपी सैकड़ों अश्वों से युक्त वायुदेव के लिए ऋत्विजों ने यह सोमरस तैयार किया है। अभिषुत मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आनंद के लिए प्रस्तुत है। तुभ्यायम् सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसानः परि कोशमर्षति शुक्रा वसानो अर्षति तवायम् भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते वह वायो नियुतो याह्यस्मर युर्जुषाणो याह्यस्मयुः। हे वायुदेव, पत्थरों द्वारा कूट कर शोधित किया हुआ तथा वांछित तेजस्विता को धारण किया हुआ सोमरस कलश में स्थित है। आप शुद्ध एवं कांतिमान सोम के हिस्से को सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम देव रूप में आपका ही आवाहन किया जाता है। हे वायुदेव, आप स्वयं ही अश्वों को प्रेरित कर हमारे पास आने की इच्छा करें। आ नो नियुद्भिहि शतिनी भिरध्वरम सहस्रिणी भिरूप याहि वीतये वायो हव्यानि वीतये तवायम् भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्ये सचा अध्वर्युभिर् भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत। हे वायुदेव, आप हमारे यज्ञ में सैकड़ों और हजारों अश्वों सहित सोमरस पीने के लिए पधारें। आपके निमित्त ही ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है। यह सोमरस सूर्य रश्मियों के संपर्क से सूर्य देव की तरह ही तेजस्विता को धारण किए हुए है। हे वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा यह सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलश पात्रों में भर कर रखा गया है। आवाम रथो नियुत्वान वक्ष दवसे भी प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये पिबतम मध्वो अंधसः पूर्वपेयम् हि वाम हितम् वायवा चंद्रेण राधसा गतमिंद्रश्च राधसा गतम्। हे वायुदेव, आप और इंद्रदेव दोनों घोड़ों से खींचे जा रहे रथ द्वारा भली प्रकार निष्पादित सोमरस रूपी हविष्यान्न को ग्रहण करने तथा हमारे संरक्षण के लिए यहाँ पधारें। यहाँ आकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस का पान करें। हे वायुदेव, आप इंद्रदेव के साथ आनंद प्रद ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। आवाम धियो ववृत्युरध्वराम उपे ममिंदुम मर मृजंत वाजिन माशुमत्यम न वाजिनम तेषां पिबत मस्मयु आ नो गंतमिहोत्या इंद्रवायु सुताना मद्रिभिर् युवम मदाय वाजदायुवम। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञीय कर्मों के साथ रहे। जैसे गतिशील घोड़े को चालक स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार बलवर्धक इस सोमरस को आपके लिए हम तैयार करते हैं। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधारकर सोम रसों का पान करें। पत्थरों द्वारा कूटकर अभिशुत शक्ति प्रदायक सोम रसों को आप दोनों आनंद प्राप्ति के लिए पिए। इमे वाम सोमा अप्सवा सुता इहाध्वरियुभिर् भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत एते वामभ्य सृक्षत तिरह पवित्र माशवः युवा यवोति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्यव्यया। हे इंद्रदेव और वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा अभिषुत यह सोमरस यज्ञों में आप दोनों को प्राप्त हो। हे वायुदेव, दीप्तिमान और प्रवाहित होने वाला यह सोमरस आपके लिए तिरछी धारा से पात्र में डाला जाता है। इस प्रकार का सोमरस आपको प्राप्त हो। अखंडित रोम तंतुओं से छनकर सोमरस अति संरक्षक गुणों से संपन्न हो जाता है। अति वायो ससतो याहि शश्वतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतम गृहमिन्द्रश्च गच्छतम विसूनृता ददृशे रीयते घृतमा पूर्णया नियुता याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम। हे वायुदेव, आप सोए हुए आलसी मनुष्यों को त्याग कर आगे चले जाते हैं। आप दोनों हमेशा वहीं जाते हैं जहां सोम को पत्थरों द्वारा कूटने की ध्वनि होती है, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है और घृताहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। इंद्रदेव और आप दोनों ही प्राण ऊर्जा देने के लिए बलशाली घोड़ों के साथ उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अत्राह तद्वहेथे मध्व आहुतिम यमश्वत्थ मुपतिष्ठन्त जायवोस्मे ते संतु जायवः साकं गावः सुवते पच्यते यवो नते वाय उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति धेनवः। हे इंद्रदेव और वायुदेव, जो सोम पुरुषार्थी लोगों द्वारा पर्वतों से औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है, उस सोमरस को आप दोनों यहीं ले आएं। इस सोम औषधि को पुरुषार्थी लोग प्राप्त करने में सफल हों। आपके लिए गौएं अमृत रूपी दूध प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भी आपके लिए ही सोमरस में डालने के लिए पकाए जाते हैं। हे वायुदेव, आपके लिए दुधारू गौएं कभी कम न हों, ऐसे किसी के द्वारा गौओं का अपहरण भी न हो। इमे ये ते सुवायो बाहवो जसोंतर नदी ते पतयन्त्युक्षणो बहिर्व्राधन्त उक्षणः धन्वञ्चिद्ये अनाशवो जीराश्चिदगिरौकसः सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः। हे श्रेष्ठ वायुदेव, आपके ये बहुत शक्तिशाली युवा अश्व आपको द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में सहज ही ले जाते हैं, जो मरुस्थलों में भी उतनी ही तेज गति से भागते हैं। उन अति वेगशील अश्वों का वाणी द्वारा वर्णन करना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों द्वारा रोकना सर्वथा असंभव है।
5: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 135वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भारती। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनने का। भगवत आराधना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

0: एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत की आजादी की लड़ाई में यदि मेरी पीठ में गोली लगती है तो मुझे सच्चा सिख मत समझना और सिख परंपरा के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार भी मत करना। महान गुरुओं का महान शिष्य, एक आदर्श संत सिपाही छाती पर गोलियां झेलता है, गर्व से चेहरा सामने रखता है, पीठ नहीं दिखाता। हम सिख किसी विदेशी को अपनी मातृभूमि पर शासन नहीं करने देंगे और कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये गर्जना थी महान स्वाधीनता सेनानी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पहले अध्यक्ष बाबा खड़क सिंह की, जो उन्होंने लाहौर की एक जनसभा में की। सन 1868 को ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट में खड़क सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर सरदार हरि सिंह एक अमीर ठेकेदार और उद्योगपति थे। खड़क सिंह की आरंभिक शिक्षा दीक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। यहां मिशन स्कूल में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर मुरे कॉलेज से इंटरमीडिएट। आगे की पढ़ाई के लिए वे लाहौर गए और पंजाब विश्वविद्यालय के पहले स्नातक समूह के छात्र के रूप में उन्होंने बीए पास किया। कानून में रुचि के चलते खड़क सिंह इलाहाबाद चले गए और यहां लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। किंतु पिता और बड़े भाई के एक के बाद एक हुए अवसान से वे दुखी हो गए तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सियालकोट लौट आए। यहां उन्होंने पारिवारिक संपत्ति और व्यवसाय की देखभाल शुरू कर दी। सन 1912 में सियालकोट में सिख शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। खड़क सिंह इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1915 में तरन तारण में सम्मेलन हुआ। खड़क सिंह इसके अध्यक्ष चुने गए। परंपरा के अनुसार उन्हें 6 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर सम्मेलन स्थल तक पहुंचना था, किंतु उन्होंने पैदल ही यात्रा करके जाना पसंद किया और अपनी सादगी का परिचय दिया। जुलाई सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। हजारों सिख ब्रिटिश सेना की ओर से इसमें भाग ले रहे थे। सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें अंग्रेज सेना की विजय के लिए कामना की जानी थी। अध्यक्ष के रूप में खड़क सिंह ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट संकेत दिया कि हमारी मातृभूमि पर शासन करने वाले विदेशियों की हम अवज्ञा करेंगे, हमें इनसे मुक्ति पाना ही चाहिए।

खड़क सिंह अब सार्वजनिक जीवन से जुड़ चुके थे। उन्होंने सीधे सीधे समाज और देश हित में सोचना तथा काम करना शुरू किया। अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खड़क सिंह इस घटना से दुखी होकर सीधे राजनीति में उतर गए। स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय लिया। सन 1920 में लाहौर में सेंट्रल सिख लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अली बंधु और महात्मा गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। खड़क सिंह ने इसके अध्यक्ष के रूप में गांधी जी का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सन 1921 में ही देश भर में फैले गुरुद्वारों की देखरेख और प्रबंधन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ और खड़क सिंह इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग भी है। स्वर्ण मंदिर में एक तोशाखाना यानी खजाना है, जिसमें कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। सन 1849 से इसकी चाबियां पंजाब सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रखी जाती थीं, जो इसके देखरेख की जिम्मेदारी संभालता था। जब खड़क सिंह प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो नियमानुसार राजकोष की चाबियां उन्हें हस्तांतरित होना चाहिए थीं, किंतु उसे ब्रिटिश उपायुक्त ने जब्त कर लिया था। इसके विरोध में खड़क सिंह ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक आंदोलन आरंभ हो गया जो कीज मोर्चा यानी चाबियों के मोर्चे के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। पंजाब सरकार ने खड़क सिंह को गिरफ्तार कर लिया, पर जन आंदोलन इसके बाद भी जारी रहा। नवंबर सन 1921 को शुरू हुआ आंदोलन 2-3 महीने जारी रहा। जन विरोध को देखते हुए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 17 जनवरी सन 1922 को अकाल तख्त पर खड़क सिंह को सार्वजनिक रूप से स्वर्ण मंदिर के राजकोष की चाबियां सौंप दीं। इसके साथ ही हजारों राजनैतिक बंदियों को रिहा भी किया गया। अखबारों ने लिखा कि गर्वित सत्ताधारी को बाबा खड़क सिंह की कठोर इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा हुई। महात्मा गांधी ने इस अनोखे चाबियों के मोर्चे की जीत पर बाबा खड़क सिंह को तार में बधाई संदेश भेजते हुए लिखा, भारत की आजादी के लिए पहली निर्णायक लड़ाई जीत ली गई। अंग्रेज अधिकारी अब उन पर नजर रखने लगे। 4 अप्रैल सन 1922 को बाबा खड़क सिंह को किरपाण बनाने का कारखाना चलाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। किरपाण सिखों का धार्मिक प्रतीक है। एक साल की जेल में उन्हें सरकार विरोधी भाषण का हवाला देकर 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई। उन्हें दूर डेरा गाजी खां की जेल में भेज दिया गया। यहां जेलर ने राजनीतिक कैदियों को गांधी टोपी और काली पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी थी। विरोध स्वरूप खड़क सिंह ने सारे कपड़े छोड़ दिए और केवल नाम मात्र के कच्छे में नंगे पीठ 4 जून सन 1927 को रिहा होने तक वो सजा भुगतते रहे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 11वीं कड़ी में पहुंच गए हैं।

0: हमने इसकी 10वीं कड़ी यानी पिछली कड़ी में सुना था। सन 1564 ईस्वी में चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला। इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच हुए नरई युद्ध के उपरांत की संधि हुई। गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर। स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: 11वीं कड़ी में भी हमारे श्रोता राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ।
1: रानी दुर्गावती के वीरांगना होने के बाद गढ़ा राज्य का इतिहास तो जैसे बदल ही गया। जैसा आपने कहा, उनके उत्तराधिकारी उनके देवर राजा चंद्र शाह हुए, और मुगलों के बीच तो संधि हो ही चुकी थी। गढ़ा राज्य को अपने 10 गढ़ जो हैं मुगलों को देने पड़े। हालांकि बाद में अकबर ने वो 10 गढ़ गोंडों को ही वापस लौटा दिए। पर यहाँ गढ़ा में यानी जबलपुर में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि गोंड राजा चंद्रशाह का कुछ छोटा सा राज्य काल है, और उसके बाद उनके उपरांत मधुकर शाह हुए और प्रेम शाह हुए, ये सभी गढ़ा के राजा रहे। यहाँ उल्लेखनीय राजा जो हैं वो हैं गढ़ा राज्य के गोंड राजा हृदय शाह। शायद आपने उनका नाम सुना होगा। हृदय शाह 1635 में सिंहासन पर बैठे। ये समय था रानी को वीरांगना हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके थे। तो 1635 में जब हृदय शाह गद्दी पर बैठे, उनके लिए चौरागढ़ से शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कुछ यहाँ वहाँ से आक्रमण हो रहे थे, और नरई के युद्ध के बाद अस्थिरता तो फैल ही गई थी। तो हृदय शाह ने एक नया निर्णय लिया, और उन्होंने चौरागढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी।
0: अच्छा।
1: ये 1651 की बात है
0: जी।
1: और उन्होंने जो अपनी नई राजधानी चुनी वो थी मंडला में ही, और आजकल उसे हम रामनगर के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा।
1: तो रामनगर मंडला शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है
0: जी।
1: और आजकल ये ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, और पर्यटन का भी एक बड़ा जाना पहचाना केंद्र है
0: जी।
1: हम ये तो नहीं कह सकते कि रामनगर सामरिक दृष्टि से बहुत उचित स्थान था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है
0: जी।
1: यहाँ नर्मदा नदी कलकल करके बहती है
0: जी, जी।
1: और दूसरी ओर से बंजर नदी का संगम होता है, तो ये दोनों नदियां मिलकर इस स्थान को दो ओर से घेर लेती हैं। हृदय शाह ने इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक खाई बनवा दी
0: जी।
1: तो अब ये हुआ क्या कि ये जो यू शेप ये जगह थी
0: जी,
1: ये अब चारों ओर से पानी से घिर गई और एक टापू के समान बन गई।
0: वाह।
1: तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। आप कभी जाएं तो यहाँ पर जाकर आपका
0: दिल। ये जगह हम अभी भी देख सकते हैं जो आप बता रही हैं कि जो हृदय शाह ने बनवाई, वो टापू अभी भी है वहाँ पर।
1: बिल्कुल, वो टापू है। हृदय शाह ने जो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई, वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं
0: जी।
1: हम साधारणतः जिस तरीके के किलों की कल्पना करते हैं, ये वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि हृदय शाह जो थे वो एक जाने माने कवि भी थे, तो उनका कवि हृदय रहा होगा
0: जी।
1: और उन्होंने जब स्थान का चुनाव किया तो वो कुछ वैसा ही था जैसे कोई कवि चुनता है। उन्होंने जो उसमें इमारतें बनवाई वो भी बहुत सुंदर हैं।
0: ये भी सुनते, जैसे आपने कहा कि हृदय शाह को कवि हृदय कहा जाता है, वो कविताएं करते थे, और इसके साथ ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था।
1: बिल्कुल, हृदय शाह को तो संगीत का ज्ञाता कहा जाता है, बल्कि हृदय शाह की गणना 17वीं सदी के अच्छे संगीतकारों में होती है।
0: वाह।
1: वह न केवल अच्छे गायक थे, वो एक अच्छे वादक भी थे, और बल्कि उन्होंने संगीत पर 2 पुस्तकें भी लिखी। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म विवेचना की गई है, और ग्रंथों का नाम है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश।
0: तो लीजिए, कितनी अच्छी बात निकल करके यहाँ पर सामने आई है। पूजा जी हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। हम बात तो कर रहे हैं गोंड राजवंश की, लेकिन उन्हीं के एक राजा जिन्हें आमतौर पर हृदय शाह कहा जाता है, खासतौर पर उस क्षेत्र विशेष में, उनका नाम था हृदय शाह। और वो ना सिर्फ कविताएं करते थे, संगीत के भी गाते थे, और उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इन दो पुस्तकों को लिखा था शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित हैं, और हमारे श्रोता उन पुस्तकों को यदि हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पूजा जी, कुछ स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया हृदय शाह ने, ये जानना चाहेंगे।
1: रामनगर को राजधानी बनाते हुए उन्होंने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। जैसे रामनगर का विष्णु मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है।
0: अच्छा।
1: ये गोंड कला का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ एक मोती महल है, एक राय भगत की कोठी है और एक रानी महल है
0: जी।
1: तो अगर कभी मंडला जाएं और रामनगर का विष्णु मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर मंदिर है और गोंड कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको हृदय शाह की रानी थी सुंदरी देवी, उन्होंने बनाया था सन 1667 में।
0: अच्छा।
1: और मंदिर जब पूरा हो गया तो रानी ने उस मंदिर में एक शिलालेख भी लगवाया। इसी शिलालेख से हमको गढ़ा का जो गोंड राजवंश है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी वंशावली क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उन्होंने क्या विशेष कार्य किए। यहाँ तक कि नरई के युद्ध का जो वर्णन है वो भी रामनगर के शिलालेख में किया गया है।
0: अरे वाह।
1: रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में स्थापित था और अभिलेख में ये भी जानकारी है कि इस मंदिर के जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और भागीरथ।
0: अच्छा।
1: उनको भी इस अभिलेख में पूरा क्रेडिट दिया गया
0: है। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि इमारतें याद रह जाती हैं लेकिन शिल्पकारों का नाम कोई नहीं जानता।
1: अभी सुरक्षा की दृष्टि से इस अभिलेख को राम मंदिर से स्थानांतरित करके पास ही स्थित मोती महल में रख दिया गया है।
0: अच्छा।
1: इसे पर्यटक आज भी देख सकते हैं। जो ये विष्णु मंदिर है पांच देवताओं को समर्पित है
0: जी।
1: और इसमें शिव, गणेश, दुर्गा और सूर्य की प्रतिमाएं विष्णु के साथ में स्थापित थीं। अब ये प्रतिमाएं मंदिर में नहीं है लेकिन इसका स्थापत्य जो है वो देखने लायक है। जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर की स्थापना रानी सुंदरी देवी ने कराई थी, तो सुंदरी देवी कौन थी वो भी हमको जनश्रुतियों में और इतिहास में उसका भी वर्णन मिलता है
0: जी।
1: तो एक बार राजा हृदय शाह का दिल्ली जाना हुआ
0: जी।
1: और वो मुगल दरबार में रुके, वहां पर एक गायिका थी सुंदरी देवी।
0: अच्छा।
1: तो हृदय शाह भी गायक थे,
0: बिल्कुल,
1: हम सब
0: बिल्कुल
1: जानते हैं, और दोनों का आपस में मिलना हुआ होगा
0: जी।
1: और कुछ ही समय में दोनों के बीच में अनुराग हो गया
0: जी।
1: जनश्रुति के अनुसार हमें पता चलता है कि एक दिन हृदय शाह उन सुंदरी देवी को लेकर मंडला आ गए।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने फिर यहाँ आकर उनसे विवाह किया और सुंदरी देवी ने गोंड राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए, उसमें से एक है विष्णु मंदिर की स्थापना कराना।
0: तो इस प्रेम विवाह का जो आधार बना वो संगीत बना।
1: बिल्कुल, आधार इसका संगीत था और स्थापत्य में भी आप उसकी सुंदरता देख सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये पंचायतन शैली का मंदिर है, जैसे हम पहले भी वर्णन करते आ रहे थे कि गोंड काल में पंचायतन शैली का विकास हुआ और उसमें खासियत ये थी कि पांच गर्भगृह होते हैं
0: जी।
1: हमने उसको पचमठा नाम भी दिया
0: बिल्कुल,
1: था
0: बिल्कुल।
1: जिसमें कि एक मुख्य गर्भगृह और पांच देव कुलकाएं होती हैं
0: जी।
1: तो चारों कोनों पर छोटे छोटे गर्भगृह होते हैं, इसको देवकुलिका बोलते हैं और एक गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणापथ होता है। तो इस विष्णु मंदिर में भी एक मुख्य देवकुलिका है
0: जी।
1: और उसके चारों ओर छोटी छोटी चार देवकुलिकाएं हैं
0: जी।
1: तो ये चारों देवकुलिकाएं आयताकार जो कक्ष है
0: जी।
1: उसके चारों कोनों पर स्थित हैं। तो जब आप इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा लेंगे तो इन चारों देवकुलिकाओं में जो स्थापित देवता थे उनके दर्शन किए जा सकते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं अब नहीं है,
0: अब नहीं है जी, जी।
1: जो मंदिर की छत है
0: जी।
1: वो गुंबजाकार है और छत के चारों तरफ से छज्जे निकले हुए हैं। तो छज्जों के नीचे जो तोड़े होते हैं यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर है इस मंदिर के। मंदिर के दरवाजे हैं वो मेहराबदार हैं और इस मंदिर का जो संरक्षण करता है वो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग है।
0: अच्छा। पूजा जी, आपने एक महल का भी जिक्र किया था इस एपिसोड में विष्णु मंदिर के पहले, तो उस महल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
1: विष्णु मंदिर की तरह ही रामनगर में मोती महल भी देखने लायक है
0: जी।
1: ये जो महल है वो राज परिवार का निवास हुआ करता था।
0: अरे वाह।
1: इसलिए इसको राजा महल के नाम से भी जानते हैं। पर इसके लिए एक स्थानीय किंवदंती है और वो बड़ी मजेदार है
0: जी।
1: जैसा जानते हैं कि हृदय शाह एक बहुत अच्छे गायक कवि भी थे
0: जी।
1: लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें कहते हैं कि हृदय शाह ने तंत्र विद्या से इस मोती महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन के अंदर कर लिया था। जो निर्माण के लिए पत्थर आए थे वो पास ही एक काला पहाड़ है, वहां से उड़ उड़ कर आए थे।
0: ऐसी
1: जनश्रुति है।
0: जी, जी।
1: असल में क्या है कि रामनगर के निकट जो काला पहाड़ है वहाँ के अगर आप पत्थर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तराशे हुए पत्थर हैं। मान लीजिए कि अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल खंबे किसी ने तराशे हों,
0: अच्छा।
1: और बिल्कुल एक से, और उन्हें बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया हो, पूरा पहाड़ ही बन गया हो, ऐसा दिखाई देता है ये काला पहाड़। लोगों का मानना है कि यहाँ जो अष्टकोणीय खंबे दिख रहे हैं वही उड़ उड़ कर यहाँ से गए और जल्दी से हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण कर दिया। पर अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अष्टकोणीय खंबों का होना एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम है।
0: बिल्कुल, क्योंकि वो जो मंडला घाटी, नर्मदा घाटी जो है वहां पर भूगर्भीय हलचलें पहले भी होती थी और अभी भी हमेशा अंदेशा जो है वो मंडराता रहता है।
1: हाँ, ये जो अष्टपहलू पत्थर हैं ये प्राकृतिक हैं, इन्हें तराशा नहीं गया है। जब भूगर्भीय हलचल होती है और ज्वालामुखी से लावा बहकर किसी स्थान पर जमा हो जाता है और जरूरत से ज्यादा जल्दी यानी कि कम समय में ठंडा हो जाता है, तब उस लावा में दरारें पड़ जाती हैं।
0: अच्छा।
1: और अष्ट फलकीय पत्थर में वो तब्दील हो जाती है।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से दरारें पड़ती हैं कि अष्ट फलकीय संरचनाएं बन जाती
0: हैं, अपने आप ही प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती
1: बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोगोनल खंबे एक के बाद एकदम सटाकर लगा दिए गए हों, तो पूरा की पूरा काला पहाड़ ही ऐसा है।
0: अच्छा।
1: और क्योंकि इसी काले पहाड़ के पत्थरों का उपयोग मोती महल और अन्य इमारतों को बनाने में किया गया था तो ये जनश्रुति प्रचलित हो गई।
0: जी।
1: तो मोती महल भी देखने में बड़ा सुंदर है। इसमें प्रवेश के लिए एक बड़ा सुंदर मेहराबदार द्वार है और आप जब अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा चौकोर प्रांगण है और इस प्रांगण के बीच में एक बड़ी सी हौज है जिसके अंदर पानी भरा रहता होगा, उसमें रंगीन मछलियां छोड़ते होंगे जो भी उस समय होता हो। और इस प्रांगण के चारों तरफ कई सारे कक्ष बने हुए हैं जो राजा रानी के निवास के लिए थे, उसी में दीवाने आम था, दीवाने खास था।
0: जी, जी।
1: और ये महल कई मंजिला है।
0: अच्छा।
1: अगर आप इसकी छत पर जाएंगे तो चारों कोनों पर चार ऐसे कक्ष हैं जिनकी छत गुंबजाकार है और इस पर जो चूने से स्टको वर्क किया गया है, जो अलंकरण किया है वो भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है और कई बार तो लोग इसे खरबूजा गुंबज भी कह देते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि इसका आकार कुछ अलंकरण के कारण खरबूजे जैसा धारीदार दिखने लगता है तो खरबूजा अलंकरण के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पास ही अस्तबल है, हाथीशाला भी रही होगी।
0: अच्छा।
1: और खेल का कुछ मैदान भी रहा होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मोती महल की छत पर से मंडला को देखते हैं, जो नर्मदा नदी दिखाई देती है, बंजारा नदी दिखाई देती है और दूर दूर तक जो जंगल दिखाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते होंगे। जब हृदय शाह यहाँ गाते होंगे, जब महफिलें जमती होंगी तो ये देखने लायक दृश्य होता होगा।
0: निश्चित रूप से वहाँ स्वयं हृदय शाह भी गाते होंगे, उनकी पत्नी भी गाती होंगी और संगीत की बहुत सारी महफिलें, बहुत सारी सभाएं भी वहाँ पर आयोजित की गई होंगी।
1: जी हाँ, सुंदरी देवी तो खुद गाने की शौकीन थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये महल क्या आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, जा सकते हैं?
1: बिल्कुल, ये राज्य पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश का संरक्षित स्मारक है।
0: जी।
1: तो इन सभी में, चाहे मोती महल हो, चाहे विष्णु महल हो, और इसके पास ही एक राय भगत की कोठी भी है।
0: अरे वाह,
1: आपने स्टेशन भी सुना होगा, भगत की कोठी।
0: भगत की कोठी सुना है, बिल्कुल। तो मैम, इस कोठी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मोती महल था वहाँ पे राज परिवार रहा करता था, तो राय भगत की कोठी इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन रहते थे?
1: राय भगत हृदय शाह के समय उनके खास मंत्री थे।
0: अच्छा।
1: और उन्हीं के एक विशाल महल है
0: जी।
1: जिसको राय भगत की कोठी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: मोती महल से लगभग आधा किलोमीटर आप जाएं अगर पूर्व की तरफ तो एक रामनगर धंधरी सड़क पड़ती है
0: जी।
1: और उसी पर एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, वहां पर ये महल है और ये राय भगत का महल भी कहलाता है, राय भगत की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। राय भगत को भगत राय भी कहा जाता है
0: जी जी।
1: और जब भी हृदय शाह के प्रिय मित्रों की बात आती है तो भगत राय की बात जरूर आती है। कई किस्से भी इन दोनों के आपस में
0: जी।
1: बड़े लोग सुनाया करते हैं
0: जी।
1: और ये जो राय भगत थे ये पठारी या प्रधान जाति के थे, इसलिए इनके किस्से बड़े प्रधानों में मशहूर हैं दोनों की दोस्ती के
0: जी जी।
1: तो हृदय शाह के लिए ये राय भगत की कोठी बनाई गई
0: जी।
1: ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बनी है और इसका भी जो प्रवेश द्वार है बड़ा ही भव्य है
0: जी।
1: बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोती महल से भी ज्यादा भव्य है।
0: अरे वाह।
1: और इसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर संगमरमर का उपयोग किया गया है जो इस काल में बहुत कम होता था, खासकर मध्य भारत में। और प्रवेश द्वार के ऊपर नौबत खाना बना है, नौबत खाना जहां पर जब राजा का आगमन होता है तब नगाड़े बजाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: फूलों की वर्षा होती थी
0: जी।
1: तो प्रवेश द्वार के दोनों ओर तीन तीन खिड़कियां भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी विशाल खिड़कियां हैं और दीवार के ऊपर कंगूरे बने हुए हैं। तो ऐसा कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये महल है कि किला है, तो दोनों के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं दोनों को मिक्स किया है। और महल के जो कोने हैं वहां पर खासकर निकले हुए कक्ष भी बने हुए हैं जो बड़े आकर्षित लगते हैं अलंकरण के कारण। और इनकी छतें भी वैसी हैं जैसी मोती महल की गुंबजाकार छतें हैं, धारीदार छतें हैं, खरबूजे
0: अच्छा,
1: जैसी इनके भी गुंबज वैसे ही हैं। और जो राय भगत की कोठी की खास बात है वो यहाँ के भित्ति चित्र हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब कि छत पर दीवारों पर बहुत सारा चित्रण किया गया है, खासकर जब हम प्रवेश करते हैं महल के अंदर तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी जो छत है उस पर आज भी बड़ा सुंदर अलंकरण उस काल का देखा जा सकता है। इसमें लाल, हरा, नीला, पीला कई रंग यूज किए हैं
0: जी।
1: और जैसा हम जानते हैं कि उस समय रंगों के लिए खनिज पत्थरों का उपयोग किया जाता था, खासकर ये पत्थर जो हैं वो भारत में नहीं मिलते, ये मध्य एशिया से बुलाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: और इन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था। जहां कहीं भी इस तरीके की चित्रकारी करनी होती थी तो वहां पर फिर बहुत चिकना चूने का प्लास्टर तैयार किया जाता था, एकदम सफेद खूबसूरत चिकना, और उसके बाद अलंकरण जैसा भी तैयार किया गया हो तो फिर इन खनिजों को तैयार करके इनका पाउडर बनाकर इसमें जो प्राकृतिक गोंद होती है उसको मिक्स किया करते थे, उससे मिक्स करके उसको बना लिया करते थे, रंग पक्के हो जाया करते थे और फिर इनको छतों पर लगाया जाता था। सुंदर ज्यामिति अलंकरण या फूल पत्तियों का अलंकरण इसमें किया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि छत पर उल्टा ब्रश चलाना बड़ा मुश्किल है
0: जी।
1: लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रंगों का संयोजन है
0: जी।
1: जो चित्रकारी है वो देखते ही बनती है।
0: श्रोताओं को तो हमारे लग ही रहा होगा कि बिल्कुल अब वो भागकर बिल्कुल रामनगर जाएं, मंडला जाएं। और पूजा जी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी हैं, ना सिर्फ ये इतिहास से संबंधित हैं, ना सिर्फ ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं, आज का तो हमारा एपिसोड बिल्कुल पर्यटन और संगीत के लिए भी बहुत विशेष रूप से खास रहा है। पूजा जी, इतने सारे जो आज आपने हमें चीज़ें बताई कि राजा हृदय शाह ने मंडला में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की, दूसरी जगह लेकर के आए जिसे आज हम रामनगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विष्णु मंदिर, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का आपने जिक्र किया, लेकिन राजा हृदय शाह के बाद गढ़ा मंडला का क्या हुआ?
1: हृदय शाह का शासनकाल 1671 ईस्वी तक रहा।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया जिसमें छत्रशाह हुए, केसरी शाह, हरि सिंह, पड़ार सिंह और इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने भी अपने लिए मंडला में ही एक नई राजधानी बनाई।
0: अच्छा।
1: अब उसके अवशेष ना के बराबर हैं, केवल एक बुर्ज रह गया है
0: जी।
1: पर नरेंद्र शाह के बाद भी बहुत से राजा हुए और फिर 1780 ईस्वी में गढ़ा का यह क्षेत्र सागर के जो मराठा शासक थे उनके अधीन हो गया। यहाँ से फिर गढ़ा मंडला का इतिहास बदल गया।
0: मतलब 1780 तक गढ़ा मंडला पर गोंड राजवंश का शासन रहा।
1: जी हाँ, संग्राम शाह से लेकर और हम देखते हैं कि सुमेर शाह तक गढ़ा मंडला पर लंबे समय तक गोंड राजवंश ने अपना योगदान दिया
0: वाह। तो श्रोताओं, आज बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां मिली हैं। राजवंश की हम पिछले अपने इतने सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं। हमने कहानी देखी संग्राम शाह जी की, हमने बात की रानी दुर्गावती की, जो कि गढ़ा राजवंश की सबसे मुख्य शासिका के रूप में भी जानी गई। बहुत सारे कार्य उनके हुए और मुगल दरबार तक उन्होंने हिला दिया था। उसके बाद हमने बात की हृदय शाह की, और फिर उनके कुछ और उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया, गढ़ा मंडला पर जाकर के गोंड राजवंश का शासन समाप्त हुआ। पूजा जी ने हमें ये जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इतनी अमूल्य जानकारियों के लिए। आगे भी अपने अगले एपिसोड में आपसे कुछ और जानकारियां आपसे चाहेंगे। इतिहास के पन्ने हम खोलते रहेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में। अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। इस एपिसोड का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा, बस एक अंतराल के बाद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर ना

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन, मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, मनुष्य जीवन के माया जाल में फंसा हुआ है। वो निरंतर दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कुछ संजो लेने के लिए, किंतु इस अनवरत दौड़ का अंत है कहाँ? इच्छाओं के इस अथाह सागर का किनारा कहाँ है? योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में आज हम सुनेंगे श्री राम के हृदय से निकली वो करुण पुकार जिसमें वो तृष्णा के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। राज वैभव के मध्य रहते हुए भी युवराज श्री राम ने देखा कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी शांत होती है तो तीसरी मन के द्वार पर आ खड़ी होती है। तृष्णा मनुष्य को आशा और निराशा के झूलों में झुलाती रहती है। कभी वो स्वप्न दिखाती है तो कभी भय उत्पन्न करती है, कभी सुख का प्रलोभन देती है और कभी दुख के अंधकार में ढकेल देती है। वो मृग तृष्णा के समान है, दूर से जल का आभास देती है लेकिन निकट जाने पर केवल शुष्क मरुभूमि ही हाथ लगती है। भगवान श्री राम हमें बताते हैं कि जिस हृदय में तृष्णा का साम्राज्य है वहां शांति का निवास नहीं हो सकता है, और जहां संतोष का दीपक जल उठता है वहां संसार के समस्त वैभव भी फीके पड़ जाते हैं। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य चिंतन में और सुने श्री राम के वैराग्य की वो वाणी जो आज भी मनुष्य को भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने की प्रेरणा देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार।
1: आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा पर।
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में तृष्णा का प्रभाव क्या होता है?
2: देखिए, तृष्णा का प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जो हृदय है ना वो चंचल हो जाता है, जबकि आप देखें हम लोग कहते हैं मन चंचल है।
1: जी,
2: यहाँ पर बात यह है कि तृष्णा आपके हृदय को भी चंचल करती है, यानी आपके भाव दशा पर सीधे अपना प्रभाव छोड़ती है। इसी को भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहा है कि तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्णा, कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। अब ऐसे में तृष्णा कभी शांत नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य है, जो चिंता हमारे जीवन में आती है वो तृष्णा की वजह से आती है। तो तृष्णा का जीवन पर जो प्रभाव देखने को मिलता है उसके लिए बहुत सुंदर उपमा इसमें दिया गया है। योग वासिष्ठ जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उपमा के माध्यम से उन तत्वों पर प्रकाश डाला गया है जिससे आम जीवन में जीने वाले लोगों को इस बात का ज्ञान हो सके कि वास्तव में योग क्या है। वैराग्य को लोग समझते हैं कि विषयों का त्याग है वैराग्य, विरक्ति है, या संसार से भागना वैराग्य है, उसको पलायन कई बार मैंने कहते हैं जिसका संसार बहुत अच्छा नहीं रहा, या जो संसार में फेलियर देखा, असफलता देखा तो उसने वो वैरागी हो गए, या वैरागी होने से माता पिता डरते हैं। वैराग्य आप समस्त सांसारिक कर्मों में पूरी कुशलता से रत होने के बाद भी वैरागी हो सकते हैं, क्योंकि वैराग्य सत्य का उद्घाटन है, सत्य का दर्शन है वैराग्य। शेक्सपियर ने ही शायद ये बात कही थी कि ये रंगशाला है जहां सारे लोग अपने पात्र भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए तो उस पात्र से वैराग्य भी है और राग भी है। राग जब तक तभी तक है जब तक आप प्ले कर रहे हैं, जब तक उस पात्र का अभिनय कर रहे हैं तब तक उस पात्र को अपने जीवन में ऐसे उतारते हैं जैसे आपका जीवन ही वो हो। लेकिन जैसे ही वो पात्र पूरा होता है वो पात्र आप भूल जाते हैं और फिर किसी और पात्र के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये बात एक वैरागी की ही बात की जा रही है। तो अभिनय जैसे है, ये जीवन भी अभिनय है, लेकिन अब कहा जाए तो अभिनय की तरह इसे कोई देखेगा नहीं, हर आदमी इसमें फंसा हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: तो संसार में फंसा हुआ जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका चित्त तृष्णा से मुक्त न हो, जब तक उसका चित्त वैरागी न हो। इसके लिए उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं जैसे समुद्र के भीतर जो भंवर उठता है या जो लहरें उठती हैं, वो भंवर और हलचल उत्पन्न करने के लिए उठती हैं, समुद्र की शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होती हैं। यद्यपि बाहरी प्रभाव है वो चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो तृष्णा है वो उसकी शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होता है लहरों की भांति। और जो आपने पूछा इसका क्या प्रभाव है, कहते हैं हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम और आकुलता पैदा करती है। अंतःकरण को कभी वो भ्रम से मुक्त नहीं करती, बेचैन करती है। और हम सोचते हैं कि हम शायद तृष्णा की वजह से शांत हो जाएंगे, वो शांति को हरने वाली है। तो तृष्णा का जीवन में कह सकते हैं प्रभाव यही है कि वो आपको अशांत कर देगी,
1: अशांत कर देगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी ग्रंथ में पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा हुई है
2: जी,
1: तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों के लिए आप बताएं कि पारमार्थिक स्वरूप से आशय क्या है व्यक्ति के पारमार्थिक स्वरूप से, और दूसरा ये कि व्यक्ति अपने पारमार्थिक स्वरूप को पाने में क्यों असमर्थ है।
2: क्या बात है। देखिए, ये जो ग्रंथ है ना, ये अद्वैत का ग्रंथ है, इसको अद्वैत ज्ञान कहा गया। अद्वैत ज्ञान का मतलब हुआ कि जहां फिर किसी दूसरे का ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे में जो आपने पूछा, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब एक सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापर, कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, तो यहां पर मिथ्या को लोग झूठ समझ लेते हैं, झूठ नहीं है, झूठ जैसा जो लगे। तो उन्होंने तीन तरह के सत्ताओं की बात की
1: जी।
2: वेदांत में तीन तरह की सत्ता मानी जाती है, एक प्रातिभासिक सत्ता जिसमें रज्जू और सर्प का उदाहरण लिया जाता है कि रस्सी अंधेरे में सांप जैसी दिखती है, होती नहीं, होता नहीं है। तो ये हो गया एक प्रातिभासिक सत्ता, आभास हो रहा है, रस्सी में सर्प का आभास होना, ये तभी तक होगा जब तक आपको रस्सी का ज्ञान ना हो जाए। रस्सी का ज्ञान होते ही आप सर्प के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो वैसे ही संसार में जो विषयों के प्रति जो कामना है, इसका सत्य जब आपके सामने उद्घाटित होगा तो विषयों में जो आप वास करना चाहते हैं तो वो वास नहीं होगा, उसी को वास का न होना और वास का होना वासना कहलाता है।
1: अच्छा।
2: और जब विषयों में वास न हो तो उसको आप वैराग्य कह लें, तो वो स्थिति बनती है। तो ये हो गया आभासिक, जहां आभासिक ज्ञान हो रहा है। उसके बाद कहते हैं एक व्यवहारिक जगत है, कि व्यवहारिक जगत में दो के बीच व्यवहार होता है, जबकि दोनों एक ही हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जब दो के बीच व्यवहार होगा तो इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जब उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं गोपियों के पास कि जा जाइए इनको आप ब्रह्म ज्ञान दे के आइए, तो चूंकि ये प्रेम की भी कथा है तो ऐसे में देखें तो कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ब्रह्म ज्ञान आदमी को शुष्क बना देगा, ऐसा नहीं है। अब उद्धव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शुष्क हो गए थे, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए गोपियों के पास भेजा, और उन्होंने कहा किसके प्रेम में आप लोग इस तरह से बेहवल हैं, वो ब्रह्म आप ही में तो है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म ही वना पर, तो फिर गोपियों ने जो ज्ञान दिया कहा कि ब्रह्म और हम में कोई भेद नहीं है, तो आपके हमें इस ज्ञान की जरूरत क्या है, ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश कर रहे हो आप, हम तो अपने ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, हमारा कृष्ण जो है हमारा ही स्वरूप है, हमें किसी और के रूप में कोई आकर्षण नहीं है, हम तो अपने स्वरूप में मस्त है। तो उद्धव ने कहा कि यह है व्यवहारिक सत्य, जहां पर रोना भी हो रहा है हंसना भी हो रहा है, कहते हम तो उस कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं, हमारे व्यवहार में वो है। तो व्यवहारिक सत्य हो गया, और पारमार्थिक सत्य में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उसमें समानार्थी हो जाते हैं आप।
1: अच्छा।
2: और इसका प्रसंग मैं आपसे लूंगा, जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप मुझे किस रूप में जानते हैं, तो उन्होंने जब पारमार्थिक सत्य को उद्घाटित कहा, हनुमान जी ने कहा कि पारमार्थिक सत्ता में तो जो आप हैं वो मैं हूं, व्यवहारिक रूप में मैं आपका दास हूं, है ना। तो ये हुआ कि व्यवहार में आपको स्वामी और दास बनना पड़ेगा, माता और पुत्र बनना पड़ेगा, माता पिता बनना पड़ेगा, ये व्यवहार होगा इससे, लेकिन पारमार्थिक में तो एक ही सत्ता है, जिसके आप पिता हैं, जो पुत्र है वो भी वही है,
1: वही है। तो ये पारमार्थिक स्वरूप है व्यक्ति का,
2: व्यक्ति का। लेकिन आदमी इसको नहीं जान पाता, तो कहते हैं कि इसका कारण तृष्णा ही है। वाल्मीकि जी सुना रहे हैं भरद्वाज को, कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होने के लिए बहुत तरह का प्रयास करता है, लेकिन जैसे आधी सले गड़े तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकनी तृष्णा ने न जाने कहां से कहां किस अयोग्य अवस्था में हमें पहुंचा दिया। ये राम जी देख रहे हैं, तो राम जी की दृष्टि है, और जिसकी भी दृष्टि ऐसी हो जाए वो समझिए वो राम जी की दृष्टि में जा रहा है। राम उससे दूर नहीं है, राम से वो दूर नहीं है।
1: बहुत ही सुंदर। अच्छा, तृष्णा का जो स्वभाव है और इसका जो स्वरूप है, इसको किस तरह से व्याख्यायित करेंगे आप?
2: तृष्णा का स्वभाव ये है कि यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नर्क में गमनागमन कराती है। अब देखिए आदमी यहाँ क्या करता है, हम लोग जो सामाजिक अनुशासन की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना, ये करणीय है, ये निषिद्ध है, अकरणीय है, ये धर्म है, ये अधर्म है, इसको करने से नरक होगा, इसको करने से स्वर्ग होगा। तो ये व्यवहारिक जो जगत है वो इसी तृष्णा से गवर्न है, अनुशासित है।
1: जी, जी, जी।
2: कि ये कहते हैं कि तृष्णा जो है धर्म अधर्म के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में गमनागमन कराती है, आगमन कराती है। तो अगर आप स्वर्ग के आकांक्षी हैं तो भी आप तृष्णा में हैं, और अगर आप नरक से भयभीत हैं तो भी आप तृष्णा में हैं। तो तृष्णा को जैसे ही आप जानेंगे, आप देखेंगे कि आपका चित्त स्वर्ग और नरक इन दोनों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य निर्वाण सत्कम में कहते हैं कि जब बंधन नहीं तो मोक्ष कहां। यानी मोक्ष और बंधन इन दोनों के चिंतन से जो मुक्ति दिलाए वो तृष्णा का सत्य उद्घाटन है, तृष्णा के सत्य का उद्घाटन है, कि जहां पर मोक्ष की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। ये है तृष्णा का स्वभाव कि आपको इस तरीके से फंसाएगी। जड़ और चेतन की ग्रंथि से जुड़ी रहती है हमेशा ही, जड़ पदार्थों से संबंध रखती है और सदा विक्षुब्ध बनी रहती है। इसका स्वभाव है कि हमेशा जड़ से ही जोड़ेगी आपको। स्वर्ग भी देखिए, आप कभी विचार करिए विभिन्न मान्यताओं में स्वर्ग में क्या है। स्वर्ग में आपने उन्हीं श्रेष्ठतम भोगों को स्थापित कर रखा है जिन भोगों के साथ आप यहाँ होना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो वहां भी जड़ पदार्थों की स्थापना हुई है।
1: जी, जी,
2: और
1: जी।
2: नर्क में भी क्या आपने स्थापित कर रखा है, उन कष्टों का अपार विस्तार कर रखा है आपने, जिन कष्टों से आप अपने आप को यहाँ बचाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो कह दिया ये नर्क है। और उसी आधार पर आप जीवन के व्यवहार को अनुशासित करते हैं। तो तृष्णा हमेशा जड़ पदार्थों से संबंध रखती है। राम जी कह रहे हैं, राम जी का चिंतन तो देखिए कि उस उम्र में 12 साल की अवस्था में, क्योंकि ये ब्रह्म का वैराग्य है, कोई सामान्य नहीं है। तो इसलिए ये देखें तो ये ग्रंथ बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है, और इस पर तो बहुत कह सकते हैं गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। तो तृष्णा का ये स्वभाव है कि जड़ के साथ संबंध रखेगी और सदा आपको विक्षुब्ध रखेगी, कभी शांति नहीं देगी।
1: अच्छा शशिकांत जी, ये जो ग्रंथ है ये क्या बताता है कि प्राणियों के नाश का क्या कारण है?
2: प्राणियों के नाश का कारण क्या है? उन्होंने साफ साफ कहा, राम जी ने कहा कि जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि तृष्णा काली नागिन के समान है, जो सहस्त्र कुटिलताओं से भरी है, जिसमें विषय सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात कर रहे हैं वो, कि विषय का सुख जहां भी आपने कल्पित किया, ये समझने की वो तृष्णा है और वो आपका नाश कराएगी।
1: जी।
2: कहते हैं विषमता रूपी विष को ही ये उगलती है, मतलब इसमें कभी भी आप समत्व नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में योग को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध है सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। उन्होंने कहा कि समत्व योग है अर्जुन। और आप कभी विचार करके देखिए तो बुद्धि क्या आपको समत्व में रहने देगी? बुद्धि हमेशा विषम भाव को खड़ा करती है, विषमता खड़ा करेगी। तो ये जो तृष्णा है ये विषमता रूपी विष ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेगी। जैसे आप विषमता रूपी विष के संपर्क में आए, आप कहीं न कहीं जो करणीय है, जो धर्म है, उसके शिकार हो जाएंगे या अधर्म के शिकार हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं आपको ये डसेगी विष का ही आपको। तो इस तरीके से ये प्राणियों का नाश ही करेगी, चाहे वो आप इसे गंभीरता से अगर देखा जाए तो चाहे वो करणीय कर्म भी अगर आपकी वासना बन जाती है, आप किसी जड़ पदार्थ के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो आपका नाश करेगा, क्योंकि जड़ पदार्थ से आप चैतन्य से तो दूर होंगे ही ना।
1: जी जी
2: जी।
1: तो हम यही समझें कि जो तृष्णा है उससे दुख ही दुख है।
2: तृष्णा से दुख ही दुख है। मैंने पहले भी कहा था,
1: यही उसका फल कहा जाएगा।
2: वैराग्य जब हुआ भर्तृहरि जी को तो उन्होंने यही तो कहा कि ये तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। है ना?
1: जी जी जी।
2: तृष्णा जीर्ण नहीं हुई।
1: अच्छा, तो मोह से आच्छादित जो चित्त है
2: जी,
1: उसको किस तरह से शांत किया जाए?
2: जी, आपने सुंदर सवाल किया कि मोह से आच्छादित चित्त को कैसे शांत किया जाए। कहते हैं इस संसार रूपी जो ये विस्तार दिख रहा है ना, इसको इन्होंने विशाल वन कहा, और इसमें तृष्णा रूपी विष की बेल फैली हुई है। ये संसार में जो व्यवहार है वो तृष्णा से मुक्त व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवहारिक जगत में आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि आपका व्यवहार कहीं तृष्णा रूपी काली नागिन के द्वारा प्रेरित तो नहीं है, जहां पर आप विषय वासनाओं के विष का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो मोह से आच्छादित चित्त होगा, क्योंकि ये तृष्णा आपके अधोपतन और उपद्रव रूपी फल को ही उत्पन्न करेगी, तृष्णा से कभी आप ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे, अधोगामी बनाएगी
0: जी जी।
2: और आपके जीवन में उपद्रव उत्पन्न होगा
0: जी।
2: तो इसका एक उपाय है कि आप इस संसार के मोह से अपने को मुक्त रखें। संसार के मोह से मुक्त रहने के लिए पहले शरीर के मोह से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर पंचभूतों से निर्मित है तो पंचभूतों की तरफ यह आकर्षित भी होगा। लेकिन आप अगर वैराग्य का दीप जल रहा है आपके अंदर, विवेक है आपके पास, तो आप ये जाने कि यह तृष्णा का प्रभाव है जो हमें अधोपतन या हमारे चित्त में चंचलता उत्पन्न करेगी और हमारा अधोपतन और चित्त को उपद्रव में ही ले जाएगी, चित्त को कभी शांत नहीं करेगी। तब जाके आप इस पर विजय पा सकते हैं या इसको समझ सकते हैं।
1: अच्छा, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि तृष्णा कैसे आती और जाती है, क्या कारण है इसका?
2: अब इसको कहा है इन्होंने कि ये तृष्णा कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है।
1: अच्छा,
2: हाँ, देख कितनी बड़ी बात है कि कुहरे के समान है जहां आपको दिखेगा नहीं और मोह के आवरण से ढकी है। इसी को हम लोग कहते हैं माया। माया जब कहते हैं, माया का दो काम है, वो आवरण और विक्षेप उत्पन्न करना। विक्षेप का मतलब साफ साफ न देख पाना, सच न देख पाना, और आवरण का मतलब ढक लेना। तो ऐसे में तृष्णा मोह उत्पन्न करती है और ये जो है विवेक का प्रकाश आपके न मिलने पाए, ऐसा इसका होगा कि विवेक के प्रकाश से आप वंचित होकर के इसके अंधकार में, जैसे कोहरे के अंधकार में आप सत्य को नहीं देख पाते, ऐसे ही आप कोहरे के समान मोह के आवरण में स्फुटित होती है और विवेक का प्रकाश छा जाने पर ही शांत होती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। ये तृष्णा इतनी इतनी प्रबल है कि जो साध्य नहीं है उसको भी ये आपका साधन बना देगी और उसमें चित्त को उलझा देगी और आप जीवन भर दुख के सिवाय, जैसे कहते हैं ना कि सुख को हम साध्य मानते हैं कि हमारे जीवन का साध्य सुख है
1: जी, जी,
2: तो ऐसे में तृष्णा के कुहरे के नाते हम सुख के स्वरूप, जो हमारा स्वरूप ही है, अविनाशी जो स्वरूप है, वो सुख का सुख राशि है, जो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सुंदर और सत्य है वो शिव है, लेकिन वो शिव एक तृष्णा के नाते आच्छादित है वो आपका, और आप मोह के शरीर के मोह में फंसकर संसार के विषय वासनाओं में ही शिव को खोजते रहते हैं। और आप विचार करके देखिए कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की शरण में भी अगर जाते हैं, तो संसार ही लेके जाते हैं, भगवान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यानी वही भगवान हमें प्रिय है जो हमारे सांसारिक जड़ कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हो। तो अंततः हम तृष्णा के ही तो शिकार हुए ना, क्योंकि तृष्णा हमेशा जड़ के साथ आपको जोड़ेगी।
1: कौन मीरा की तरह जाता है, सभी कामना लेकर जाते हैं,
2: सब जाते हैं कामना लेकर के, और कामना हमेशा संसार की ही होगी। शरीर को तो संसार की ही कामना होगी, क्योंकि ये भी जड़ है, चेतना के बिना शरीर क्या है, जड़ है। और तृष्णा कभी चेतना के प्रति आपको चैतन्य होने नहीं देगी, हमेशा जड़ के साथ आपका संबंध जोड़ेगी। तो ऐसे में हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जब हम अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं तो उस समय हमारा साध्य संसार है कि आराध्य है, तो तृष्णा क्या कर रही है, असाध्य को साधने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, जो संसार कभी सदा किसी का नहीं।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
2: संसार आज तक का आप इतिहास उठा करके देखें, चूंकि ये दृष्टि राम जी की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को विवेक की दृष्टि है, विवेक से उत्पन्न वैराग्य है। देखिए, एक बात मैं अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कई बार हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन की असफलता से प्रभावित होकर के लोग वैराग्य की तरफ बढ़ पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर देखने में
2: अक्सर देखने में यही आता है कि उनको संसार दुखद दिखा या उनके आसपास के लोगों को संसार में उन्होंने दुखद देखा, तो ऐसे में उन्होंने संसार से पलायन कर लिया, जबकि वैराग्य बिल्कुल ये नहीं है। वैराग्य एक सत्य उद्घाटित होने के बाद संसार में किया जाने वाला व्यवहार है, जिसके लिए राम जी को उपदेश हो रहा है कि तुम जीवन मुक्त की तरह व्यवहार करो। राम जी भी व्यवहार से भाग रहे हैं,
1: जी जी जी,
2: सांसारिक व्यवहार से राम जी हट रहे हैं और हट गए हैं।
1: जी
2: तभी ये गुरु उपदेश कर रहे हैं उनको,
1: हाँ,
2: है ना,
1: बिल्कुल।
2: और वो अपने चित्त की बात कर रहे हैं, उस वैराग्य को प्रकट कर रहे हैं, और गुरु उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। आप इस संसार में जब तक हैं, जब तक ये शरीर है, तब तक आप कर्म के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अब कर्म आप ऐसा करने लगो जिसमें न समाज की भलाई हो न बताने योग्य हो, तो ऐसा कर्म तो आपने उसी दिन अपने आप को मार दिया। एक ऐसा आदमी जिसका कर्म संसार में प्रकाशित होने योग्य न हो, आप क्या समझते हैं वो आदमी जिंदा कब था? किसी ने कहा भी था कि हम मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए देर से जाते हैं।
1: जी,
2: तो ऐसा अगर हमने कोई कर्म नहीं किया जिस कर्म को प्रकाशित न किया जा सके, बताया न जा सके, तो निश्चित ही हमारे जीवन पर सवाल उठना चाहिए कि वास्तव में हमने, प्रकृति ने तो हमें वो सब कुछ दिया जो सबको देती है, तभी तो हम जिंदा रहे, लेकिन हमने क्या दिया?
1: बिल्कुल,
2: हमने तो जीवन के विपरीत व्यवहार किया ना।
1: जी जी,
2: तो इसीलिए विष्णु पालन हार हैं, और इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो,
1: जीने दो।
2: यही राम जी को सिखाया जा रहा है। हाँ। ये तो लोग नहीं समझते, इसलिए समझते हैं कि तो अलग बात है, ये अलग बात है, अन्यथा देखें। हाँ। कहते हैं कि राम पहले जो वैराग्य आपका हुआ है उससे आप तो जीना सीखो, क्योंकि आप तो जीने से भागने लगे।
1: अच्छा,
2: हो ना,
1: ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब भी संसार की निस्सारता का ज्ञान भीतर उतरता है तो इंसान फिर कर्म से छूटता है, है ना, और उनको फिर से इस ज्ञान के साथ कर्म में रत करने के लिए सारा उपदेश, और यही हमें भी सीखना है।
2: मैं आपसे सुनीता जी कहूं, मनोविज्ञान आज जो तमाम मानसिक बीमारियों का अध्ययन कर रहा है, वो मानसिक बीमारियां व्यक्ति के कर्म न करने से उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है करना वो कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है उसे चाहता नहीं है। फिर वो अंदर के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में इतना उलझ गया है कि वो अपने चित्त के साथ शांत नहीं रह पाता, अपने आप को जवाब नहीं दे पाता। कहते ना कि आप अपनी नजर में गिरने लगते हैं, फिर आपको संभाले कौन? तो ऐसे में फिर वैराग्य की आवश्यकता है, और वो वैराग्य जो असफलता से नहीं, विवेक से उत्पन्न हो।

0: देखिए कि संसार में जब आप देखेंगे कि जब अभी हमने बात की कि तृष्णा हमेशा जड़ चीजों से आपको जोड़ती है, तो स्वर्ग की कामना क्या ये भी तो तृष्णा का ही हिस्सा है? तो अंत में हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना लेके बैठा है। तो राम जी की दृष्टि में तृष्णा ऐसी है, लेकिन हमारी तृष्णा तो स्वर्ग तक हमें ले जाती है। आप देखिए तो हमारे लिए ये बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शास्त्र बहुत दुर्लभ और अद्वैत ज्ञान की बात करता है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। जो आपके प्रश्नों से के साथ हम बढ़ भी रहे हैं और हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में भी आ रही होगी कि ये तृष्णा जो है यही जो है व्यक्ति के दीर्घ काल तक दुखी होने का कारण है।
1: दूसरा निवारण का मंत्र,
0: जी इसके निवारण का कहते हैं मंत्र ये है कि इसके लिए कहते हैं ना कि सत्संग करें, तो कहते हैं ये जो संतों का संग है या इस तरह का जो चिंतन है, महर्षि राम जी कह रहे हैं, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान सूरवीर सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्यों को भी यह तृष्णा एक मात्र पल भर का याचक बनाकर रख देती है। सोचिए आप, यानी आप एक प्रश्न उठता है कि व्यक्ति याचक क्यों बना हुआ है? जब हम ब्रह्म हैं, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम् पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, अपने यहाँ हर जगह पंडित पूजन में बोलते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इतना गहरा घोष कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण से कुछ भी घटाओ वो पूर्ण ही रहेगा, जो शेष बचेगा वो भी पूर्ण होगा। तो फिर ऐसे में व्यक्ति याचक क्यों है, क्यों मंदिर जा रहा है?
1: बड़ा प्रश्न है,
0: बड़ा प्रश्न है। तो ये इसलिए है कि वो तृष्णा का शिकार है। तृष्णा कुछ है नहीं, एक प्रकार की अज्ञानता है। जड़ पदार्थों से हमारा योग होने के नाते हम तृष्णा से ग्रस्त हैं। अगर हम चैतन्य का चिंतन करें, जो राम जी ने अपने वैराग्य दशा में तृष्णा की जो निंदा की है वो इसलिए की है, मतलब वो बता सकें लोगों को कि देखो ये तृष्णा किस तरीके से तुम्हें पकड़े हुए है और इस जाल में तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कर्म से सुखी नहीं हो, क्योंकि राम जी के वैराग्य का यही कारण था। उन्होंने वैराग्य किसी विषाद से नहीं लिया था, जबकि गीता में अर्जुन को विषाद से वैराग्य होता है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ राम जी ने कर्म करते हुए लोगों को जब देखा तो कहा कि किसी भी कर्म से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो फिर उनके चित्त में ये अनुसंधान, ये प्रश्न फूटा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। उन्होंने कर्म का ही त्याग कर दिया। तो कर्म का त्याग किया तो तब गुरु वशिष्ठ ने, जो गुरु वशिष्ठ मतलब उसके पहले भी शिक्षा दिए हैं चारों भाइयों को, लेकिन अब जो योग के अंतरतम रहस्यों को जो श्री राम जी के सामने विश्वामित्र जी के मांगने पर जो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी को दिया है, तब दिया है जब उनके अंदर ये विवेक से उत्पन्न वैराग्य हुआ है।
1: तो मुझे ऐसा लगता है शशिकांत जी कि इस संसार में कोई भी ज्ञान
0: जी
1: हम नहीं जानते हैं, जिस बात को एक बार बताया जाता है तो वो ज्ञान हमें सांसारिक ज्ञान हो जाता है
0: जी।
1: फिर दोबारा उसे जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती
0: जी।
1: लेकिन ये जो ज्ञान है
0: जी,
1: ये अभ्यास मांगता है,
0: अभ्यास मांगता
1: है ना, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। तो ये सत्संग हमारा आपका बना रहेगा
0: जी, जी।
1: अगले अंक में भी आज आप उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज योग संवाद कार्यक्रम में आपने सुना श्री राम की वैराग्य दशा में तृष्णा की निंदा विषय पर चर्चा। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आपके साथ मैं हूं फराज। श्रोताओं, आज बात होगी उस शायर की जिसके ना मालूम कितने शेर हमारे जहन में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। वो रचनाकार कौन हो सकता है सिवाय डॉक्टर बशीर बद्र के।
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
1: परखना मत,
2: परखने में कोई अपना नहीं,
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना।
2: वाह।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए।
0: बशीर बद्र एक ऐसा नाम जिन्हें पीढ़ियां सुनती चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही मोहब्बत से लोग उनको याद करते हैं जितना पहले के जमाने में किया करते थे।
1: और मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ।
2: वाह, बहुत अच्छे। कहाँ
0: बशीर बद्र को अगर याद किया जाए तो एक लफ्ज काफी है और वो है मोहब्बत। मोहब्बतों का शायर बशीर बद्र।
1: अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।
0: बशीर साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को हुआ और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कभी ना रुकने वाले, कभी ना थकने वाले सफर का। बचपन में उनके पिता इस दुनिया फानी को जल्दी ही छोड़कर चले गए और उसके बाद बशीर साहब पर जिम्मेदारियां आईं जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया और फिर सफ़र तय किया पढ़ाई का, तालीम का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ अरसे पढ़ाया और वो जब अलीगढ़ में पढ़ते थे उसी दौरान उनकी गज़लें, उनकी शायरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। अब इतना मकबूल और इतना मशहूर कौन हो सकता है कि जो खुद पढ़ रहा हो उसकी गजलें पढ़ाई जाती हों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।
1: खता

0: उसके बाद बशीर बद्र साहब ने रुख किया मेरठ का और फिर वहाँ कॉलेज में पढ़ाने लगे। फिर सिलसिला चलता रहा और वक्त उन्हें भोपाल ले आया और फिर भोपाल में ही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी शाम देखी।
1: मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है।
0: बशीर बद्र को बशीर बद्र बनने में यकीनन जिस तरह से लोगों को कामयाब होने में सालों लगते हैं, उनको भी कई सालों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता चला गया और बाद में न जाने कितने लोगों ने उनकी शागिर्दी में शायरी को सीखा और उसे आगे बढ़ाया।
1: मुखालफत से मेरी शख्सियत समरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता
2: हूं। वाह वाह वाह वाह, फिर दे बजूर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह।
0: कितने ही उनके शेर हैं जो लोगों को याद हैं, खास करके युवाओं को। मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। या उनका मशहूर शेर जिसने पूरी दुनिया में उन्हें मकबूल कर दिया, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये इतना मशहूर हुआ कि जब वो बहुत यंग थे तो मीना कुमारी जो मशहूर एक्ट्रेस रहीं, उन्होंने एक मैगजीन में इस शेर को लिखा था और ये कहा था कि इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता, उसकी जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं, कभी उरूज तो कभी जवाल। उस वक्त मीना जी को यह नहीं मालूम था कि यह शेर बशीर बद्र साहब का है और बाद में इस शेर को कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनके कई शेर ऐसे हैं जो लोगों को जुबानी याद हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और बहुत से शेर मैं कहां तक बयान करूं।
1: मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।
0: श्रोताओं, अगर बात की जाए जो अवार्ड्स बशीर बद्र साहब को मिले, उनमें 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया 1999 में, और इसके अलावा भी कई अवार्ड्स उन्हें दिए गए। उनकी कई किताबें शाया हुई, कुलियत, बशीर बद्र, आस और बहुत सी। इसके अलावा ये हम जानते हैं कि कई गज़ल सिंगर्स ने उनकी गज़लें गाईं, चाहे वो जगदीश सिंह हों, तलत अज़ीज़ हों। किसी भी महफिल में लोग जाते तो फरमाइश करते कि हमें डॉक्टर बशीर बद्र का कोई कलाम सुना दीजिए।
1: कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई।
2: वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है।
0: जब बात डॉक्टर बशीर बद्र साहब की हो तो उनके बारे में हम सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए हमने बात की वरिष्ठ साहित्यकार स्कॉलर जनाब डॉक्टर नोमान खान साहब से। उन्होंने अपनी यादों में कुछ इस तरह से याद किया डॉक्टर बशीर बद्र साहब को।
3: बशीर बद्र साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेशनल लेवल की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त शायर और अदीब थे, साहित्यकार भी थे, और उनकी अपनी शायरी एक आम डगर से हटकर थी। एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था उर्दू गज़ल का, और वो ट्रेंड ये था कि वो गालिब और मीर और इकबाल की तरह का ट्रेंड नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा था अमीर खुसरो, यानी कहते थे अमीर, कबीर, नज़ीर और बशीर, ये उन्होंने अपना एक सिलसिला जोड़ा था। अच्छा, ये चारों जो हैं बहुत बड़े शायर भी हैं और बहुत बड़े अवामी शायर भी हैं। तो बशीर बद्र साहब के साथ एक ख़ास बात ये थी, उनकी पॉपुलरिटी की, उनके शोहरत की, उनकी मकबूलियत की और उनकी आम पसंदीदगी की वजह ये थी कि वो आम आदमी के शायर थे, वो इंसानियत के शायर थे, वो मोहब्बत के शायर थे, वो आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, उसमें जो रोज़मर्रा छोटे छोटे वाकयात, हादसात और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको वो ग्रिप करते थे और अपने शेर में ढालते थे। वो जैसे मासूम और भोले और सादा मिजाज इंसान थे, वैसे ही उनकी शायरी भी थी। और उसमें वो बड़े यानी बड़ी से बड़ी बात जो है वो बड़े आसान लफ्ज़ों में और आसान उसलूब में या स्टाइल में वो अपने बयान कर देते थे। तो इसी वजह से उनकी बात उनके दिल से निकलती थी और उनके श्रोताओं या पढ़ने वालों पाठकों के दिल में उतर जाती थी, क्योंकि उसमें वो अपनी ज़िंदगी का अक्स या छवि देखते थे कि अरे ये तो मेरे दिल की बात है, अरे ये तो मेरे मैं इसे तो मैं रोज़ देखता हूँ, भुगत रहा हूँ, भोग रहा हूँ। अच्छा ये हमारा कवि तो वो कह रहा है जो मेरे दिल में मैं नहीं कह पा रहा हूँ, इसने कह दिया।
4: जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है।
3: तो इस वजह से शायरी तो बड़ी शायरी वही होती है, अच्छा शेर उसी को कहते हैं कि जो कि सुनते ही दिल में उतर जाए। तो एक बड़ी खूबी ये थी बशीर बद्र साहब की कि वो उनके अशार बड़े सीधे सादे होते थे। इसमें उर्दू शायरी में इस खूबी को कहते हैं सहले मुमतना। सहले मुमतना के माने होते हैं कि ऐसा अंदाज, इतना आसान अंदाज कि जैसे कि पद और गद दो होते हैं ना, नसर और नज़्म। तो जैसे कि नसर या पद गद जो है वो सीधे सादे अंदाज में जुमलों में होते हैं, सीधी सादी बात कह दी जाती है। शायरी में थोड़ा सा वजन का भी ख्याल रखना पड़ता है, फ़न का, तकनीक का, और उसके अपने दायरे और उसकी अपनी खसूसियात उस हिसाब से वो चलते हैं। तो शायरी में जब बात कही जाती है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कही जाती है। हर आदमी, वरना तो हर आदमी शायर बन जाए, हर आदमी शायर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो मौजू तबा नहीं होता, या उसका वो मुशाहिदा ऑब्ज़रवेशन वो नहीं होता, या उसका तजर्बा ऑब्ज़रवेशन नहीं बन पाता, या वो महसूस तो सब करते हैं, देख हम भी रहे हैं, आँखें हमारे पास भी है, सोच हम भी रहे हैं, अक्ल हमारे पास भी है, और ऐसा नहीं है, डिक्शन भी हमारे पास है, अल्फाज भी हमारे पास है, और हम जान समझ रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो यही तो फ़र्क है शायर और गैर शायर में, कि अगर वो शायरी के औसाफ से, उनकी फ़नी नज़ाकतों से वाकिफ़ है और उसके अंदर एक दिल गुदाख्ता जिसे कहते हैं नर्म दिल, हसास दिल, दिल सबके पास है लेकिन शायर का दिल बड़ा नर्म होता है, उसकी सोच भी बड़ी गहरी होती है, उसके देखने का अंदाज़ और सोचने का अंदाज़ भी अलग होता है। तो जाहिर है कि इसी वजह से वो जब शेर में उन चीज़ों को ढालता है, अपनी रचनाओं में ढालता है, तो वो एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो शक्ल ऐसी होती है कि कोई अनजान शक्ल नहीं होती, कोई ऐसी नहीं होती जिससे हम वाकिफ़ नहीं हों, लेकिन वो हमें सुनने में या पढ़ने में अच्छी मालूम होती है, हमारा मन मोह लेती है, हमारे दिल को मुतासर करती है, हमारे जहन की खिड़कियों को रोशन करती है, खोलती है, और हमें फ़िक्र पर आमादा करती है, और एक जिसको कहते हैं आनंदित करती है, हमें महसूस करती है, और हमारी जो अंदर के एहसास है उसको जगाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सारी बातें इनके अंदर यानी बशीर बद्र साहब के कलाम में थी, और उन्होंने कोशिश ये की कि हमारी उर्दू शायरी जो एक ख़ास डगर से चल रही थी जिसको हम कहते हैं रवायती शायरी दो किस्म की, एक तो रवायती है क्लासिकल और एक है जदीद मॉडर्न। तो उनके साथ ये था कि उन्होंने रवायत से भी रिश्ता तोड़ा नहीं, जो परंपरा शायरी की है उसको भी बरकरार रखा, लेकिन जो नई डगर है, जो नए तकाजे हैं, जो नई ज़िंदगी है, जो नई अप्रोच है, जो नई सोच है आज के इंसान की, हमारे पूर्वज का युग जो है वो दूसरा युग था, उनको इतनी सब ये टेक्नोलॉजी और ये सब सहूलतें कहाँ मुहैया थी। आज तो यह है कि एक सेकंड के अंदर मीडिया जो है वो कहाँ से कहाँ, हमें सब पूरी दुनिया का हाल हमें मालूम हो जाता है। तो ऐसे जाहिर है कि आज के का जो श्रोता है या आज का जो पाठक है उसको आपको सामने रखकर उसी के मिजाज और माहौल और उसकी पसंद और उसकी फिक्र और उसकी ज़िंदगी को सामने रखकर अगर आप शेर कहेंगे तभी आप बशीर बद्र बन सकेंगे, वरना शायर तो बहुत हैं, एक नहीं हज़ारों हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन हर शायर मकबूल क्यों नहीं होता, हर शायर का डंका क्यों नहीं पिटता, हर शायर जो है वो मुशायरा क्यों नहीं लूटता, हर शायर की किताबें जो हैं वो उसके ट्रांसलेशन क्यों नहीं होते, हर शायर का उर्दू, वो तो उर्दू के शायर थे, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, दूसरी जबानों में भी हो रहा है, हर जगह बुलाए जा रहे हैं। वो तो बेसिकली देखा जाए तो वो उन्होंने अपने करियर का आगाज मेरठ कॉलेज में एक उस्ताद की हैसियत से किया था, फिर वो शायरी की तरफ आए, फिर वो शेर कहने लगे, फिर वो शेर भी उन्होंने यही हुआ कि आम डगर से हटकर शेर कहे। तो एक ताजगी, एक नयापन, एक नया लबो लहजा, एक मुनफरिद लबो लहजा उनके यहाँ हमें नज़र आता है। उनका अपना डिक्शन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, या ये कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। और भी बहुत से अशार हैं कि जो कि ऐसे हैं कि जो जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गज़ल है। अब डिक्शन देखिए और अंदाज देखिए, गज़ल किसे कहते हैं ये उसकी डिफिनेशन देखिए कि तितली के नज़ाकत क्या है गज़ल की, कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गज़ल है, लफ्ज़ों की मीनाकारी को इल्हामी अशार न जानो। ये जो लफ्ज़ों की मीनाकारी है, पच्चीकारी है, जो उसका बनावट है, जो सजावट है, ये इसको इल्हामी मत समझो। इल्हामी माने आसमानी, ऊपर से उतरी मत समझो। ये जो है ये शायर के अपनी फिक्र और दिलो दिमाग और उसकी सलाहियतों का इजहार है। दूसरी कहते हैं कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। अब आप देखिए अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है, हिंदी के भी कर रहे हैं, उर्दू के भी कर रहे हैं, और भी मतलब उनके यहाँ, और वो लबो ले जाए जो आम इंसानों का लबो ले जाए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। या इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। या कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता, हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। या हमारा बदन धूप का बाग है, यहाँ चांदनी और शबनम कहाँ। या वो शेर जो अब बिल्कुल चरितार्थ हो गया उन्हीं के ऊपर, चस्पा हो गया वो जो है ना, कि न जाने किस गली में उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये शेर मैंने ट्रकों के पीछे भी लिखा देखा, ऑटो रिक्शा के पीछे भी लिखा देखा, सत्ता के गलियारों में भी गूंजता हुआ देखा, और इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों में भी इसको दोहराया गया, और होटलों में और आम लोगों के ज़बान पर भी। तो उनके अशार की या उनके रचनाओं की खूबी ये थी, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ज़रबुल मसल। ज़रबुल मसल मतलब जो मुहावरा बन जाए, कहावत बन जाए। जैसे कि मुहावरे का अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक पस मंज़र होता है, कोई ना कोई कहानी, कोई वाक़या उसके पीछे होता है, उसी का वो मुहावरा बनता है। कहावत का भी है ये। तो जो अब हम कभी कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत, अब इसके पीछे एक पूरी कहानी है। हम कह देते हैं, सुनने वाला सुन लेता है, समझने वाला समझ भी लेता है। तो इसी तरह उनके अशार जो हैं वो उन्होंने किस बैकग्राउंड में कहे हों, हो सकता है उनका जो है पस मंज़र या बैकग्राउंड दूसरा हो, पृष्ठभूमि दूसरी हो, लेकिन वो उसमें इतनी खासियत खूबी है कि मुहावरे की तरह वो लगता है वो हमारा तजर्बा है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो हमारी ज़िंदगी की कहानी है, वो हमारे सामने का वाक़या है। तो ये जब खूबी किसी फनकार में पैदा हो जाती है तो फनकार बड़ा हो जाता है।
1: कोई

0: मिला कर
1: कुछ आपकी आखिरी याद उनके साथ हो, कोई किस्सा हो अगर आप शेयर करना चाहें।
2: यादें तो बहुत सी हैं, अब आपने क्योंकि सवाल कर लिया है तो मैं आपको बताऊं कि असल में मेरी पहली मुलाकात उनकी उस वक्त हुई जब मैं सेफिया कॉलेज में एमए कर रहा था, 75 की बात। हमारे यहाँ सालाना मुशायरा होता था स्टूडेंट यूनियन का, उसमें शोरा को बुलाते थे, इनको पहली बार 75 में बुलाया और ये पहली बार इन्होंने ऐसा नक्श कायम किया कि हर साल बुलाए जाने लगे। अब स्टूडेंट यूनियन के ये जो स्टूडेंट्स होते, नहीं साहब उन्हें तो ज़रूर बुलाया, आप किसी को बुलाइए उन्हें ज़रूर। तो एक बात तो ये, तो मुलाकातें होती रहती थी। फिर जब वो यहाँ भोपाल में सेटल हो गए और यहीं शादी हो गई, यहीं सेटल भी हो गई, मकान भी बना लिया, तो एक बार उनका फ़ोन आया कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। अपने इशरत कादरी साहब का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, बशीर बद्र साहब। कहा कि मुझ पर एक नंबर आ रहा है बहुत बड़ा, 500-600 सफ़े तो हो चुके हैं उसके, और मैंने उसको अभी रुकवा दिया है कि अभी 2 दिन और रुक जाइए। अब आप सब बहुत बड़े बड़े लोगों के मजमून शामिल है, मैं चाहता हूँ आपका मजमून भी इसमें शामिल हो, आपका आर्टिकल भी मुझ पर। तो मैंने कहा मेरे पास तो आपके मजमू है ही नहीं सिवाय एक आमद के। तो उन्होंने अपना बैग खोला और सारे मजमू मेरे सामने रख दिए और कहा यही कि बस जल्दी करना है, इसको 2 दिन की मोहलत दी। खैर मैं बैठा, मैंने दिन रात एक करके उसको किया और जाके उनके घर दे आया। मैं 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि आज आप डिनर हमारे साथ, आपकी फैमिली विद फैमिली आप हमारे साथ। अरे भाई क्यों नहीं, बस इनकार मत कीजिए। बहुत खुश। फिर वहाँ उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की, कहा कि बहुत अच्छा मज़मून आपने लिखा, इतने कम वक्त शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा मज़मून लिखना, 20 पेज का मज़मून है। खैर छप गया। उसके बाद फिर एक बार फ़ोन उनका आया कि मुझ पर एक साहब PhD करना चाहते हैं, मैं सेफिया कॉलेज में HOD था, और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कौन हम के गाइड किसको बनाए। तो मैंने कहा नौमान खान को, मैंने वादा उनसे कर लिया है, वो मैं बात कर लूँगा, ये भी कहा। तो आपको बनना है, अब तो हुक्म था, बन गए। वो PhD हुई, अवार्ड हुई, वो काम हुआ। उसके अलावा उनकी जो मिसेज हैं राहत बदर, वो मेरी स्टूडेंट रही हैं, मैं मेरे अंडर में किया, डिसर्टेशन भी लिखा। जब वो PhD करने लगीं तो मैं तो दिल्ली चला गया था, मुझसे कहा कि आप कब आ रहे हैं। मैंने बताया कि फला छुट्टी में हूँ, हाँ तो मुझे आपके 1/2 घंटा चाहिए। मैं आया चला गया कि ये आपकी जो है शागिर्दा, ये मेरी मिसेज, ये PhD करना चाहती हैं जदीद गज़ल पे, और इसके इनकी सिनॉप्सिस आपको बनाना है। मैंने फ़ौरन उनकी सिनॉप्सिस बनाई, 10 मिनट में बना ली। उनको भी अवार्ड हुई। तो मतलब ये कि वो कदरदान थे, वो समझते थे किससे क्या काम लेना है, कि कौन किस किस उसका है सलाहियत का, ये भी उनको अंदाज़ा था। और ताल्लुकात उनके बहुत वसी थे, क्योंकि उनके चाहने वाले हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ उर्दू है और जहाँ जहाँ उर्दू बोली या समझी जाती, सभी जगह उनको मानते और जानते थे और पसंद करते थे, और डिमांड पर वो बुलाए जाते थे, क्योंकि वो मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत थे। जिस मुशायरे को वो अटेंड कर लेते थे, मुशायरा कामयाब हो जाता था। एक बात और भी थी कि वो कम लोग शायद जानते हों कि वो बहुत अच्छे नाज़िम भी थे, कंपेयर भी थे, बहुत अच्छे मुशायरा कंडक्ट करते थे। जैसे कि मलिकज़ादा मंजूर साहब, एक छाप थी मुशायरे कंडक्ट करने की, निज़ामत की, ऐसी जब वो भी करते थे तो बहुत अच्छे अंदाज में, पढ़े लिखे आलिमाना अंदाज में करते थे। बांसुरी की सी सुरीलापन था कि जो बिल्कुल दिलों को खींच लेता था अपनी तरफ। और फिर उनके पढ़ने का अंदाज, ख़ास अंदाज से पढ़ते थे। हाँ तहत हो चाहे तरन्नुम, वो कहते पहले तहत में ही पढ़ते थे, फिर आवाज़ आती थी अरे साहब तरन्नुम में भी होगी। तो वो गायक वाला नहीं था, वो अलग ओरिजिनल तरन्नुम था, अलग अंदाज होता उनका भी, अपना ओरिजिनल तरन्नुम था।

0: मैं चमक लिए बाहर खड़ा होता है। इस शख्स से मैं पहले भी मिल चुका हूं। कभी कोई डायरी लेकर आता है, कभी कोई अपना पहला शेर, कभी कोई सिर्फ इतना देखने आता है कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी के किसी मुश्किल लम्हे को अल्फाज दिए वो वाकई मौजूद है। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जुबान की खुशबू। बशीर बद्र की शायरी में उर्दू किसी म्यूजियम की जुबान नहीं लगती, वो जिंदा लगती है। इसीलिए उनके यहाँ धूप भी है, फूल भी, शहर भी, रिबन भी, लॉन भी और पुलोवर भी। वही घर है, वही रास्ते, वही शहर है और वही लॉन भी, मगर इस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। उनकी ये कोशिश रही कि जुबान आसान हो लेकिन एहसास हल्का ना हो। शायद इसीलिए उनकी शायरी में दिल का दर्द कम और दिल का दर्द ज्यादा दिखता है, और ये कोई छोटा फर्क नहीं है। ये गजल की नई शक्ल है, नया लिबास है।
1: तो आइए थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ा संगीत और थोड़ी बातचीत। मेरा पहला सवाल विशाल जी आपसे, हम सब जानते हैं कि आप बहुत सालों से बशीर बद्र साहब के साथ रहे, लेकिन एक तजस्सुस है कि सबसे पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे होती है, और जब आपने उनको पहली बार सुना तो दिलो दिमाग में क्या कुछ था?
2: कि उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में बलते हैं, उन्हें कभी ना बताना मैं उनकी आंखें हूँ, वो लोग फूल समझकर मुझे मसलते हैं। क्योंकि किताब उस वक्त डॉक साहब की, आई थिंक एक किताब थी तुम्हारे लिए, वही छपी थी हिंदी में, उर्दू में तो बहुत छपी थी हिंदी में, वो जो उर्दू में तो इकाई आसमान वगैरह वो सब थी, तो तुम्हारे लिए एक किताब थी, वो भी मिल नहीं रही थी, तो मैंने अपनी बहन के साथ में घर गया डॉक साहब के पास, और वहाँ पे सभा ने मुझे एक रात के लिए वो कॉपी दी।

ये कंडीशन देखिए शायर की, चाहे कोई मौसम हो दिन गई बहारों के फिर से लौट आएंगे, आना पड़ेगा उन्हें, ये कंडीशन है।

0: शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की शाम सिर्फ एक शायर को याद करने की शाम नहीं, बल्कि पूरी तहजीब, एहसास और मोहब्बत की उस जबान को खिराज अकीदत पेश करने की शाम रही। बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगी विशाल जी आपका, और रेखा जी आपका, और मयूर जी आपका।
2: जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेल,
3: सभी अजीजों से जिनको सुन लिया है, मेरी खुशकिस्मती कि उन्हें सुनने का मौका मिला और उनके अंदर जिस तरह से नए इम्कानात देखने को मिले, उससे जी खुश हुआ कि हमारा सफर रायगा नहीं गया, बल्कि बाद की आने वाली नस्ल इस महफिल को संभालने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह तैयार है। मुश्किल से जा पा रहा हूँ मुशायरों में, लेकिन उनका इसरार था। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि ये मुशायरा बशीर बद्र साहब के याद में था। बशीर बद्र साहब के बारे में मतलब मेरा 40-45 साल गुजरे हैं हम दोनों के साथ उर्दू स्टेज पर। इतनी बातें हैं, इतनी यादें हैं कि उनको बयान करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है।
2: क्या क्या?
3: बशीर बद्र एक शायर नहीं थे, एक शायरी का अहद थे।
2: क्या बात है।
3: करता हूँ कि मालिक तेरा करम कि बड़ी लंबी उम्र दी।
2: आहा,
3: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी, और उसमें ये कि बोझ किसी पर नहीं हुआ।
2: वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह।
3: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी, और इस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए। मतलब सुनिए, बहुत अच्छा सुना है आप, आपने वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी था।
2: वाह वाह वाह वाह,
3: आप लोग जैसा मुशायरा सुनिए, बाकी लोगों को इससे बेहतर सुन के दिखाइएगा, ताकि इन बच्चों का हौसला बढ़े, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, आपकी दुआओं से।
2: वाह वाह वाह,
3: सुनाइए, पेश करता हूँ कि कोई आवाज दे तो लौट आना, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है। गजल वालों, भोपाल वालों, गजल वालों सुनो कि ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
2: वाह,
3: ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है,
2: बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना,
3: बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
2: क्या कैफियत है जरा। हाँ,
4: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं रणजीत सावरकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
2: याद करो कुर्बानी। नमस्कार श्रोता, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, आज हम लेकर उपस्थित है कार्यक्रम और आज बातें होंगी क्रांतिकारी उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की। कलकत्ता की अदालत में क्रांतिकारी उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय के बयान चल रहे थे। उन्होंने कुछ इस प्रकार अपना बयान दिया।
3: मेरा नाम उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय है और मेरे पिताजी का नाम रामनाथ बनर्जी है। मैं सन 1871 की 6 जून को चंदन नगर में पैदा हुआ हूँ और इस समय कलकत्ता में रह रहा हूँ। मैं जब तक कलकत्ता में रहता हूँ, लड़कों को अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की शिक्षा दिया करता हूँ। मैं उन्हें यह भी बताता हूँ कि देश की स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है और उसकी दशा कैसे सुधारी जा सकती है।
2: तो श्रोताओं, इसके बाद प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चलता रहा। किस तरह के प्रश्न किए गए उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जी से, यह हम जानेंगे एक देशभक्ति गीत के बाद।

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आज बात हो रही है क्रांतिकारी उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय की। श्रोताओं, हमने आपको बताया कि उपेंद्र नाथ ने अपना बयान दिया, उसके बाद प्रश्न और उत्तर का सिलसिला जारी रहा। प्रश्न आया कि स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, क्या आप इस बात की भी शिक्षा देते हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं इसकी भी शिक्षा देता हूँ।
0: स्वतंत्रता प्राप्ति के उपाय आप क्या बताते हैं?
1: मैं यही कहता हूँ कि अंग्रेजों से युद्ध करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह भी बताता हूँ कि देश भर में हमें गुप्त समितियां स्थापित करनी होंगी, हथियार जुटाने होंगे और अवसर मिलते ही विद्रोह का बिगुल बजाकर युद्ध की घोषणा करनी होगी।
0: ये सब स्वीकार करते हुए क्या आप अपने दल का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं?
1: नहीं, मैं दल का भला ही कर रहा हूँ। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको ज्ञात है ही। मेरी स्वीकारोक्ति से निर्दोष लोग कष्ट पाने से बच जाएंगे। यदि मैं यह सब स्वीकार नहीं करूं तो न जाने आप कितने कितने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उन्हें न जाने कितनी कितनी तरह की यातनाएं देंगे।
0: अदालत ने उपेंद्र नाथ की बात सुनी, समझी और उसकी छानबीन की। कुछ दिन न्याय का नाटक चला और अंत में सन 1908 में अलीपुर बम केस में आजन्म द्वीपांतरवास का दंड सुना दिया। श्रोताओं, उपेंद्र नाथ की चर्चा आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक देश भर

0: श्रोताओं, उपेंद्र नाथ को समाज सेवी और राजनीतिक जीवन की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से मिली। उन्होंने स्वामी जी का साहित्य पढ़ा था और एक बार स्वामी जी से उन्होंने भेंट भी की थी। विचारों का जो आदान प्रदान दोनों के बीच हुआ था वो इस प्रकार का था।
1: स्वामी जी, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि राष्ट्र की सेवा किस प्रकार करूँ। आप ही कृपा करके मुझे राष्ट्र सेवा का कोई मार्ग सुझाएं।
0: उपेंद्र की ये बात सुनकर स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा, राष्ट्र सेवा का संकल्प भी राष्ट्र सेवा ही है। राष्ट्र सेवा के लिए साधन संपन्न होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। साधनों के अंतर्गत बाह्य उपकरण भी आते हैं और शारीरिक तथा आत्मिक बल भी। श्रोताओं, स्वामी जी की ये बात सुनकर उपेंद्र फिर बोले,
1: बल संवर्धन की बात तो आपने ठीक कही है, पर क्या बल प्रयोग अनुचित नहीं माना जाएगा?
0: श्रोताओं, इस पर स्वामी जी ने कहा कि सोद्देश्य के लिए बल प्रयोग अनुचित नहीं होता। राष्ट्र की मुक्ति के प्रयास सोद्देश्य के अंतर्गत ही तो आते हैं। फिर उपेंद्र का प्रश्न था,
1: राष्ट्र की मुक्ति के लिए आप हम नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: तब स्वामी जी ने कहा, नौजवानों से मेरा तो यही कहना है कि वो उपाधियां जुटाने के स्थान पर शक्ति का अर्जन करें और कार्य क्षेत्र में कूद पड़े। नौजवानों को चाहिए कि वो वादों और विवादों को छोड़कर भारत माता को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करें। उन्हें काम करते जाना है, फल तो अंततोगत्वा मिलेगा ही। श्रोताओं, उपेंद्र के लिए स्वामी विवेकानंद का यह प्रेरणा मंत्र पर्याप्त था। हम जानेंगे कि इस मंत्र को पाकर उपेंद्र स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चले या नहीं, परंतु एक देशभक्ति गीत के बाद।

श्रोताओं, उपेंद्रनाथ कर्म में जुट गए। चंद्रनगर के एक विद्यालय में वो अध्यापक का कार्य करने लगे और युवा विद्यार्थियों के दिलों में क्रांति और विद्रोह का बीज बोने लगे। उपेंद्रनाथ ने देशाटन भी किया। वो जहां भी जाते, युवकों में उग्र राष्ट्रीय चेतना भरने का प्रयत्न करते और युवाओं पर उनकी वाणी का प्रभाव भी पड़ता था। कुछ दिन पश्चात अध्यापन का कार्य छोड़कर उपेंद्र कलकत्ता जा पहुंचे। वहां श्री अरविंद के पत्र वंदे मातरम का संपादन कार्य भी किया उन्होंने। वारींद्र कुमार घोष के पत्र युगांतर का संपादन भार भी उन्होंने कुछ समय तक संभाला। श्रोताओं, उपेंद्रनाथ की लेखनी में बहुत बल था। अब वो क्रांतिकारी दल की एक नियमित सदस्य बन गए थे। कलकत्ता के मानिकतल्ला में अरविंद्र घोष का पैतृक मकान था। वही क्रांतिकारियों का अड्डा भी हुआ करता था। अपने उस जीवन की एक झलक उपेंद्रनाथ ने कुछ शब्दों में लिखी है और वो शब्द क्या है हम जानेंगे एक देशभक्ति गीत के बाद।

उपेंद्रनाथ ने अपने जीवन की झलक कुछ शब्दों में लिखी और वो लिखते हैं, तब वहां 4-5 से अधिक लड़के नहीं थे। सभी लड़के अपना घर बार छोड़कर आए थे। फिर भी उन लड़कों को कुछ मिले या ना मिले, दोनों समय मुट्ठी भर भात तो मिलना ही चाहिए। हम लोगों के खाने में ज्यादा खर्च भी नहीं होता था। दाल में ही 2-4 आलू डालकर सब्जी की कमी पूरी कर ली जाती थी। सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि वारिंद्र उस समय ब्रह्मचारी थे और मछली या प्याज का छिलका तक बगीचे में घुस नहीं सकता था। मिर्च और मसाले खाने की तो मनाही थी। तो श्रोताओं, जाना आपने कि किस तरह से उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने अपना जीवन व्यतीत किया? ये जीवन था उपेंद्र और उनके क्रांतिकारी साथियों का। देश की मुक्ति के लिए वो त्याग और तपस्या का पथ अपनाए हुए थे। अपने दल के साथ उपेंद्रनाथ ने क्रांति के क्षेत्र में बहुत सक्रिय योगदान दिया। आखिर एक दिन उन्हें पुलिस के शिकंजे में फंसना ही पड़ा। अलीपुर बम केस के नाम से फिर से न्याय का नाटक रच गया, जिसमें बयान देते हुए उपेंद्र ने स्पष्ट स्वीकारोक्ति की। फलस्वरूप आजीवन द्वीपांतरवास का दंड उपेंद्र को प्राप्त हुआ। 12 वर्ष काले पानी का द्वीपांतरवास भुगतने के पश्चात फरवरी सन 1920 में छूटकर उपेंद्र अपने घर पहुंचे।

0: श्रोताओं, उपेंद्र की लेखनी ने देश को प्रेरक और स्थायी साहित्य दिया है। आपने जाना आज उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी के बारे में।
1: याद करो कुर्बानी।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण अपने रेडियो मित्र भारती के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।
3: नमस्कार, नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुर सागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप आनंद लेंगे भक्ति संगीत का। कलाकार हैं अनुषा शर्मा। ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संत वाणी समारोह के तहत।
4: इस मंच पर पधारी श्री अनुषा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है अनुषा जी आपका। आपके साथी कलाकारों का भी परिचय आपसे हम करा दें। तबले पर श्री आशीष उपाध्याय, हारमोनियम पर श्री निखिल बाकरे, वायलिन पर श्री मनोज बमरेले और मजीरे पर श्री भावेश अनेरा। तो हम आग्रह करते हैं अनुषा जी से अपने भक्ति पद गायन का आरंभ करें।
5: नमस्कार, आज की प्रस्तुति में संत कबीर तुलसीदास जी एवं संत एकनाथ सूरदास जी, ऐसे सभी संतों की एक एक प्रस्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी।

हमको बहुत ही बड़ा एक संदेश देते हैं, भजन बिना हरि नाम बिना जय जइयो ऐसो जीवन। जो जीवन हरि के नाम के बिना हो, भजन के बिना हो, वो जीवन जीवन ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से कबीरदास जी की

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री अनुषा शर्मा जी।
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे भक्ति गायन, कलाकार थी अनुषा शर्मा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारतीय नारी ने चिरकाल से जिस आदर्श पर चलने का प्रयास किया है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार बड़ी उद्दीप्त भाषा में उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि संन्यास जीवन के समान ही नारी जीवन भी बाह्य अभिव्यक्ति की वस्तु नहीं है, इसका मूल लक्ष्य है आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाना। और भारतीय नारी ने त्याग, पवित्रता, धैर्य, दया, संतोष तथा सेवा आदि सद्गुणों का विकास करके राष्ट्र की सांस्कृतिक उदात्तता और आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को अक्षुण्य बनाए रखा है।
1: परंतु वर्तमान कालखंड में भारतीय नारी एक दुराहे पर खड़ी है। उसके सामने आज दो विपरीत आदर्श उपस्थित हैं। एक तो परंपरागत आदर्श और दूसरा आधुनिक नागरिक आदर्श। प्रत्येक सामाजिक विकास के पीछे उसका आदर्श ही उसे सक्रिय बनाता है और हर विकास की प्रक्रिया उसके आदर्श को सबल बनाते हैं। यदि भारतीय नारी को अन्य सभी देश की नारियों के साथ आगे बढ़ना है, एक अभिनव समाज गढ़ने का सपना देखना है, तो उसे ये निर्णय लेना होगा कि इनमें से कौन सा आदर्श अपनाया जाए।
0: स्वामी विवेकानंद की विविध उक्तियाँ इन दो तरह के आदर्शों पर प्रकाश डालती हैं। उन्होंने कहा है,
2: भारतवर्ष में प्राचीन काल में परिवार आदि का ही प्राबल्य रहा है। परिवार यद्यपि समाज की लघुतम इकाई है, परंतु भारतीय जीवन पद्धति में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को गढ़ने वाली सभी मार्गदर्शक एवं नियामक प्रेरणाएं परिवार से ही आती प्रतीत होती हैं। जाति की शुद्धता, विवाह बंधन की पवित्रता, मातृत्व आदि सभी विचारों का लक्ष्य है परिवार के संगठन को सुरक्षित रखना।
1: उन्होंने हमारे विवाह व्रत और मातृत्व के आदर्शों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अन्य जातियों तथा राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में वे भारत का अनुसरण करें।
2: मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए और वो विवाह को अच्छेद्य एवं पवित्र धर्म संस्कार मानने से ही हो सकती है।
0: वे अमेरिकन स्त्रियों की स्वच्छंदता देखकर अवाक हो गए थे, परंतु उनमें मातृत्व भाव की कमी देखकर उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: माता के रूप में अमेरिकन स्त्री कहाँ है? उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का जिसने हमें जन्म दिया, तुमने क्या सम्मान किया है? जिसने हमें अपने शरीर में 9 मास तक वहन किया, वो माता क्या है? जो हमारे जीवन के लिए यदि प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो 20 बार भी देने को उद्यत है, वो माता कहाँ है? कहाँ है वो जिसका प्रेम कभी नहीं मरता? मैं कितना ही दुष्ट और अधम क्यों ना हो जाऊं, हे अमेरिका की स्त्रियों, वो माता कहां है?
1: उन्हें भारतीय माताओं का दिव्य रूप ज्यादा पसंद था। माता तथा संतान में जो जुड़ाव भारत में दिखता है वो उन्हें और किसी देश में नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अमेरिकन स्त्रियों से कहा था,
2: मेरे माता पिता ने कितने दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी और व्रत रखा था कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। अमेरिका की माताओं, इस पर जरा विचार कीजिए, हृदय के अंतःस्थल में जरा सोचिए कि क्या आप सचमुच नारी होना चाहती हैं? इसमें किसी जाति या किसी देश का प्रश्न नहीं। किसी प्रकार के राष्ट्रीय गौरव के मिथ्या गर्व का स्थान नहीं। आप सबसे आज रात मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करती हैं? क्या आप माता होने के लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप ये समझती हैं कि मातृत्व प्राप्त करके आप पवित्र गौरव को प्राप्त करती हैं? आप अपना हृदय टटोलें और पूछें, यदि नहीं तो आपका विवाह मिथ्या है, आपका नारीत्व मिथ्या है और आपकी शिक्षा एक ढकोसला है। और यदि आपके बच्चे प्रार्थना के बिना जन्म लेते हैं तो वे संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे।
0: जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो वे वहां की शिक्षित, साहसी और दयालु महिलाओं को पक्षियों के समान स्वाधीन देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि वहां की स्त्रियां बड़े आत्मसम्मान के साथ अपने समुदाय के नागरिक जीवन में हिस्सेदारी निभाती हैं। विस्मय एवं प्रशंसा के साथ उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को लिखा था,
2: मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएं यहां देखी वैसी कभी कहीं नहीं देखी। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परंतु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से कहीं और दिखाई देंगी। मैंने यहां हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल हैं। आहा, वे कैसी स्वतंत्र होती हैं, सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं। यहां लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं और इसलिए ये लोग इतने सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं, और हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय एवं अपवित्र कहते हैं। फल हुआ हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए।
1: इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी ने दोनों आदर्शों की ही प्रशंसा की है, परंतु दोनों के प्रति उनकी समालोचना भी उतनी ही कठोर है। भारतीय स्त्रियों की हालत के बारे में उन्होंने एक बार कहा था,
2: अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है।
0: दूसरी ओर उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन महिलाओं को सुस्पष्ट और कठोरता पूर्वक कहा,
2: मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परंतु यदि वो चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही पा सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है उसे गुलाबों से ढककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूं। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है, नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विद्वान नहीं, परंतु वे अधिक पवित्र हैं।
1: इस प्रकार अपने देश से बिल्कुल ही अलग आदर्श पर चलने वाली महिलाओं के एक वर्ग के संपर्क में आने के बाद इन दोनों आदर्शों तथा दोनों समाजों में महिलाओं की दशा का भेद उनके सामने उजागर हुआ। कालांतर में जब उनके मन में अपने देश की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने की तीव्र आकांक्षा हुई तो स्वाभाविक रूप से ही उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भारतीय नारी किस हद तक अपने आदर्शों से समझौता करते अन्य देशीय आदर्शों को अपना सकती है। इस विषय पर स्वामी जी ने हमें जो गहन और सर्वांगीण विचार दिए हैं वे शत वर्षों से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी प्रासंगिक हैं।
0: उनका मत था कि संशोधित उपयोग दोनों ही आदर्शों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु निर्माण करेगा। उनके इस विचार को और भी स्पष्ट करते हुए उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने लिखा है,
3: वे भविष्य की भारतीय नारी को ध्यान की प्राचीन शक्ति से अलग करके कल्पना तक नहीं कर पाते थे। महिलाएं आधुनिक विज्ञान अवश्य सीखें, पर प्राचीन आध्यात्मिकता को त्याग कर नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि वही शिक्षा आदर्श होगी जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष परिवर्तन को कम से कम प्रभावित करेगी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक महिला अतीत भारत की समस्त नारियों की महानता को अपने आप में पूर्ण रूपेण मिला लेने में समर्थ होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
1: स्वामी विवेकानंद जब कभी भारतीय नारी तथा उसकी समस्याओं के बारे में बोलते थे, तब वे एक तीसरे आदर्श के बारे में भी सचेत रहते थे, और वो था आध्यात्मिक आदर्श। भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता इतनी ओतप्रोत है कि इसे एक अलग आदर्श के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अतः हम अपने राष्ट्र के सामाजिक धार्मिक इतिहास में सन्यासी एवं गृही दोनों ही प्रकार के अनेक महान विभूतियों का उल्लेख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की इस महानता को भली भांति पहचाना। उन्होंने कहा था,
2: राष्ट्र की आध्यात्मिकता के इस उच्च स्तर को बनाए रखने में महिलाओं का योगदान पुरुषों के समकक्ष ही रहा है। अति प्राचीन वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं ने अपने ढंग से इस आदर्श को जीवंत रखा है। मैत्रेयी से लेकर श्री शारदा देवी तक ये सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संसार त्याग कर वन में जाने से पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेयी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी संपत्ति का एक अंश उन्हें देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर मैत्रेयी ने कहा था, जो संपदा मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। इस पर याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। श्री रामकृष्ण ने जब शारदा देवी से पूछा कि क्या तुम पत्नी के रूप में अपने अधिकार का दावा करने आई हो, तो उन्होंने उत्तर दिया था, तुम्हें संसार में खींचने को नहीं, तुम्हारे धर्म पथ में सहायता करने आई हूं। उसी समय से वे श्री रामकृष्ण की प्रमुख शिष्या के रूप में स्वीकृत हुई।
0: स्वामी विवेकानंद के सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्त्रियों की उन्नति या स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में बराबर का स्थान दिलाना, उन्हें समर्थ बनाना। ये विचार हमेशा उनके मन में रहता। उन्होंने निवेदिता से कहा था, कभी मत भूलो, पहले स्त्रियां और फिर बाद में और लोग। इन शब्दों को हमेशा याद रखना।
1: स्वामी जी के व्याख्यान संभाषण हमेशा स्त्री उन्नति विषयक उद्गारों से भरे रहते थे। वे कहा करते थे,
2: भारत में दो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। पहली तो स्त्रियों का उत्पीड़न या पैरों तले कुचलना, और दूसरा गरीबों का शोषण यानी उनका दमन। सर्वप्रथम स्त्रियों का उद्धार करना होगा। सामान्य जन में इस बाबत जागृति लानी होगी, तभी अपने देश भारत की उन्नति हो सकेगी, उसका भविष्यकाल उज्जवल हो सकेगा। जिस देश में या जिस घर में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है, वे कष्ट में हैं, जहां उन्हें सम्मान न मिलता हो, उनका कोई उचित स्थान नहीं है, उस परिवार की या उस देश की उन्नति की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए सर्वप्रथम स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाओ, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें समर्थ बनाओ, उनमें आत्मविश्वास जगाओ, उन्हें सम्मान दो। इस कार्य के लिए शिक्षित स्त्रियों के एक आदर्श मठ की शुरुआत करनी होगी। सामाजिक उन्नति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है।
0: विवेकानंद जब अमेरिका और यूरोप गए, वहां की उच्च शिक्षित स्त्रियों से मिले, उनके ज्ञान, विवेक और विचार शक्ति से वे प्रभावित हुए। वहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं था, सभी को अपना मत प्रदर्शन करने का मौका मिलता था। स्त्रियां अकेले कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थीं। सभी सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर भागीदारी करती थीं। ये सब देखकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनका मन हमेशा भारतीय नारी की दयनीय दशा को याद कर रोता रहता था। उनके मन में भारतीय नारी को उनकी सही जगह दिलवाने की इच्छा थी।
1: उन्होंने इसका एकमात्र उपाय सोचा, स्त्री शिक्षा। शिक्षा ही भारतीय नारी की बेड़ी को तोड़ेगी, शिक्षा ही उनकी आंखों के सामने विशाल आकाश और पाश्चात्य जगत के आलोकित स्वरूप का विराट रूप खोल देगी। उन्हें लगता था शिक्षा ही वो पंख है जिसके सहारे भारतीय नारी उड़ पाएगी। स्वतंत्र विचार और भय रहित स्वतंत्र जीवन, यही सपना देखा था स्वामी जी ने उनके लिए। इसलिए उन्होंने कहा,
2: पहले स्त्रियों को उचित शिक्षा दो, फिर उन्हें इतनी स्वतंत्रता दो कि वे अपने जीवन संबंधी निर्णय खुद ले सकें। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दो, फिर वे तुम्हें खुद ही बताएंगी कि उनकी उन्नति के लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। वे अपनी उन्नति का मार्ग खुद ही प्रशस्त करेंगी। ये भी जान लो कि आज की दुखद स्थिति को खत्म करने के लिए स्त्रियों और सामान्य जनता की स्थिति सुधारना जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है स्त्रियों और सामान्य जनता को शिक्षित करना। शिक्षा के महत्व को वे खुद समझें तथा शिक्षा प्राप्ति हेतु खुद ही आगे आएं, अन्यथा समाज का पतन निश्चित है और किसी भी मार्ग से समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती। स्त्रियों की समस्याएं अनेक हैं और उनमें से कुछ समस्याएं तो गंभीर भी हैं, ये बात सत्य है, पर फिर भी सारी समस्याओं के निराकरण हेतु सिर्फ एक ही जादुई शब्द शिक्षा काफी होगा। शिक्षा के जादू से वे अपनी सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पा सकती हैं।
0: भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का भार स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को दिया था। निवेदिता भी अपने गुरु के आज्ञानुसार इसी मार्ग पर चल पड़ी थी। पथ आसान नहीं था, पर इस दुर्गम पथ पर वे अपने कुछ साथियों के साथ अग्रसर हो चली थीं। उन्होंने स्वयं इस बारे में कहा है,
3: स्वामी जी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज की उन्नति संभव ही नहीं। उनकी दृष्टि में अनेक विचारों में ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सिर्फ एक ही है, और वो है स्त्रियों को शिक्षित करने हेतु महिला शिक्षा शास्त्रियों की एक ऐसी सेना तैयार करना जो स्त्रियों की समस्याओं को समझेंगी, उनका निराकरण करेंगी। इसके अलावा उनका कार्य ही उनका घर होगा। धर्म के अलावा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। देश, जनता, गुरु और अपना कार्य, यही उनके लिए सब कुछ होगा।
0: ये कार्य उतना आसान नहीं था, पर स्कूल की शुरुआत हो ही गई।
1: स्त्रियों के लिए एक मठ की स्थापना करने की स्वामी जी की कल्पना उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एक असाध्य कल्पना भले ही लगती हो, पर राष्ट्रीय आदर्शों के प्रेरित स्त्रियों के लिए एक शिक्षा संस्था का शुरू होना यानी बुरी शुरुआत नहीं थी। और यही कारण था कि स्वामी जी को निवेदिता के छोटे से स्कूल में अगाध रुचि थी, आस्था थी। वो स्कूल अर्थात उन्हें अपने सपने साकार करने का एक साधन लगता। स्कूल, स्त्री शिक्षा और पाठशाला में होने वाले कार्यों की योजना के संबंध में वे घंटों निवेदिता के साथ विचार विमर्श करते। भारतीय स्त्रियां और उनकी शिक्षा, इस विषय पर निवेदिता के जो विचार थे, इस विषय पर वो जो भी लेखन कार्य करती थीं, उन सब पर स्वामी जी के विचारों और उनकी कल्पनाओं की छाप स्पष्ट रूप से दिख पड़ती है।
0: निवेदिता का शैक्षणिक प्रयोग अवश्य ही सफल होगा, ये स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था। इस प्रयोग की असफलता की उन्हें थोड़ी सी भी शंका नहीं थी, पर उसके लिए धन और कार्यकर्ता दोनों की आवश्यकता थी। उन्हें इस बारे में कोई आशा नहीं थी कि समाज की अविवाहित लड़कियां इस विषय में निवेदिता को कुछ मदद कर सकेंगी। अतः उनका मुख्य लक्ष्य था समाज की विधवा तथा निराश्रित अनाथ लड़कियों तथा स्त्रियों को शिक्षित करना और उनका कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य के लिए उपयोग करना, ताकि निवेदिता को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। पर इसके लिए जब तक निवेदिता अनाथ तथा विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम शुरू नहीं कर लेती, तब तक इस कार्य के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिल सकेगा। ऐसा स्वामी जी का निश्चित मत था।
1: स्वामी जी स्त्रियों को स्वनिर्भर बनाने की बात भी सोचते थे। गृह उद्योगों का एक केंद्र बेलूर मठ में स्थापित हो, यही स्वामी जी की इच्छा थी। जहां निवेदिता के स्कूल की छात्राएं अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाएं एवं इस तरह की चीजें बनाकर बिक्री हेतु बाजार में भेजें। इस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी ने निवेदिता के समक्ष रखा। स्वामी जी का यह प्रस्ताव निवेदिता को बहुत ही अधिक पसंद आया, क्योंकि वो सोचती थीं कि इस तरह के केंद्र स्थापना से लड़कियों की प्रगति और विकास के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रगति के क्षेत्र नजर आएंगे और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगी।
0: स्वामी जी ने स्वयं को आमूल चूल सुधारक घोषित किया था, पर इस सुधार का आधार आध्यात्मिक मूल्य थे और वो विकास की प्रक्रिया में से होकर गुजरता। उन्होंने कहा, मैं जिसमें विश्वास करता हूँ वो है विकास। वो आम जनता के द्वारा लाया जाना था, वो बाहर से उन पर लादा नहीं जा सकता था। उन्होंने लिखा,
2: उन स्त्रियों में विचार पैदा करना होगा, उनकी चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी, बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगी। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उसका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बंद हो जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे।
0: उन्होंने और भी कहा, इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है।
1: इसी कारण उन्होंने महिलाओं के उच्चतर आध्यात्मिक प्रशिक्षण के विरोध में उठाई गई आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी? इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों, मैत्रेयी, गार्गी आदि को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज की स्त्रियों को वो अधिकार क्यों ना रहेगा? एक बार जो हुआ है वो फिर अवश्य ही हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है, और इसीलिए वे चाहते थे कि हमारे देश की महिलाएं श्री शारदा देवी की प्रत्यक्ष प्रेरणा एवं देखरेख में त्याग एवं सेवा के राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसार जीवन गठन करें।
0: आधुनिक भारत की महिलाएं जो प्रगति के नाम पर वस्तुतः अपने रूपांतरण पर चल पड़ी हैं, उनको चाहिए कि वे प्राचीन आदर्शों के आधार पर ही अपनी उन्नति एवं प्रगति करें और साथ ही नागरिक कार्यों के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का विस्तार करें। इसके फलस्वरूप उनका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, नागरिक जीवन सहायक होगा और आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। साथ ही स्वामी जी का ये आदेश भी स्मरण रखना होगा,
2: इस देश की नारियों को वही बात कहूंगा जो पुरुषों से कहता हूं, भारत में विश्वास करो और भारतीय धर्म में विश्वास करो, शक्तिशाली बनो, आशावान बनो और संकोच छोड़ो। और याद रखो कि यदि हम बाहर से कोई वस्तु लेते हैं तो संसार की किसी अन्य जाति की तुलना में भारतीयों के पास उसके बदले में देने को अनंत

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं। रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण सेवा का सफर आज यहीं तक। कल प्रातः फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति। जय हिंद।